100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 31 मई 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नीलांबुज श्याम कूमलांग सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ो महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को हम सब प्रणाम करते हैं।

जिस प्रकार धागे में पुरी हुई सुई कभी खोती नहीं, उसी प्रकार ईश्वर के नाम और ध्यान में पिरोया हुआ मन कभी संसार के दुखों और भटकाव में खोता नहीं है। प्रभु का स्मरण ही जीवन का सबसे सबसे सुरक्षित कवच है।

परमात्मा से कुछ मांगना है तो सदैव संतोष मांगिए, क्योंकि जिसके पास संतोष है उसके पास ईश्वर की दी हुई हर छोटी चीज भी अनमोल हो जाती है, और जिसके पास संतोष नहीं वह महलों में भी रहकर दरिद्र ही रह जाता है।

आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्ने तुलसी तहा न जाइये कंचन बरसे मेह। जिस घर में अतिथि देवो भव की संकल्पना ना हो वहां से हरि भी नाराज हो जाते हैं। जिस घर में जाने पर घरवाले देखते ही प्रसन्न ना हो, जिनकी आंखों में प्रेम न बरसे, उस घर में कितना भी लाभ हो नहीं जाना चाहिए।

यतो धर्मो ततो हनुमान, यतो हनुमान ततो जय। भजन रूपी पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि में, आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

जीवन जिसकी चिंता सदैव हमें रहती है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारे प्रश्न प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। और इस जीवन में जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें ना हो तो निराश होने के बजाय हर इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समर्पण में ही सच्ची शांति है। वह प्रभु कभी भी हमारा अहित नहीं चाहेंगे।

जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। यदि आज संघर्ष है तो प्रभु की इच्छा से कल सुख का सवेरा भी निश्चित ही है। आपका कार्य सिर्फ यही है कि आपको धैर्य रखना है, अपनी सच्ची भक्ति पर विश्वास रखना है।

0: सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं इस पूरे संसार को सीता और राम के स्वरूप में अर्थात सिया राम से ओत प्रोत जानती हूँ, इसलिए अपने दोनों हाथों को हाथ जोड़कर इस संपूर्ण जगत को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार के हर प्राणी का सम्मान करना और उसमें ईश्वर को देखना ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रभु कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।
1: क्या करूं

के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों में से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंध में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के लिए समर्पित प्रयासों की भी सराहना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। जौनपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। लगातार चौथी बार परीक्षा की जिम्मेदारी झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय संभाल रहा है। प्रदेश के 72 जिलों में 1011 परीक्षा केंद्रों पर 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुल सचिव कोशलाल नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जौनपुर जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर 17,144 जबकि गाजीपुर जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर 15,340 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
3: चलते रहे
4: हमारी और आपकी साझा कहानी,
2: आपके अपने रेनबो की जबानी।
3: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
5: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
6: ये प्रूफ
7: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
2: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: भंवर से निकलकर किनारा मिला है, जीनों को फिर से एक सहारा मिला है। बहुत कश्मकश में थी ये मेरी जिंदगी, उस जिंदगी में अब साथ तुम्हारा मिला है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, आकांक्षा है आपके साथ प्रोग्राम सदाबहार गीत में। आज इस याद भरे गीतों के साथ जो हमारी यादें बने, लेकिन हमारी

यादों का एक अनूठा हिस्सा है। उन्हीं के साथ बातें भी करेंगे हम यादों पर, तो बस बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, मोहब्बत है क्या चीज़ ये तो नहीं पता, लेकिन सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी हाँ, कुछ चीज़ें यादें बन के रह जाती हैं और कुछ चीज़ें तमाम उम्र हमारा साथ देती हैं। जी हाँ, रिश्तों की बात हो रही है और यादों की बात हो रही है, जब हम इन तमाम यादों से जुड़े होते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें दिल में आकर बस जाती हैं। कई ख्वाब जो पूरे ना हुए वो भी हमारी याद बन जाते हैं, और कई रिश्ते जो अधूरे रह गए, जो ज़िंदगी के साथ चल ना पाए, वो भी एक खूबसूरत याद बन जाएं, तभी ये ज़िंदगी बेहतर होती है। जी हाँ, सदाबहार गीत प्रोग्राम में बातें यादों पर, क्योंकि हम उन गीतों को गुनगुना रहे हैं जहाँ पर एक बेहतरीन यादें बसी हैं उस ज़माने की हमारी यादों में। आपको जब ये गीत सुनाई देते हैं तो आप बेशक जो उस दौर के लोग हैं या जो आज के लोग हैं जिनसे कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, तो पूरी लिरिक्स गुनगुनाते हुए आप अपनी यादों में खो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं है या आप मुझे मेल करके बताएंगे। तो बस इन खूबसूरत गीतों के साथ अपनी आंखों को बंद करके बस एंजॉय करिए, क्योंकि आज है संडे का दिन, तो आज आप बड़े इत्मीनान से ये प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं, अपनी यादों को गुनगुना सकते हैं इन गीतों के साथ।

0: तुमने कह डाला।
1: जी हाँ, कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन कभी कभी जब अवेबिलिटी की बात करते हैं ना, कि हर वक्त एक इंसान हमारे सामने रहता हो, भले ही उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो हमारी लाइफ में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अवेबिलिटी कि वो 24 घंटे हमारी आंखों के सामने है, हमें पता है वो क्या कर रहा है, कब कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कद्र कम कर देती हैं उन रिश्तों की। जी हाँ, ये बातें रियलाइज़ होती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि अपना अपना स्पेस बना कर रखिए, ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करिए। भले आज के टाइम पर हम कहें कि बहुत ज़माना बदल गया है इसलिए ऐसी बातें होती, लेकिन ज़रूरत यही है आज की। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे ना, तो आपकी कीमत कम हो जाएगी, आपकी कद्र कम हो जाएगी, और जब कद्र नहीं होती तो दिल को बहुत ठेस लगती है। इसी बात पे किसी ने क्या खूब कहा है कि आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे अपने आप मिल जाते हैं, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों से, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

0: तड़पा लो।
1: जी हाँ, और ये दिल तड़पता है अगर वो खूबसूरत लम्हे हमारी यादें बन जाते हैं। जब आप कुछ किताबें पलटते हैं या कुछ तस्वीरों को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि यार काश काश ये वक्त यहीं पर ठहर जाता। लेकिन हर बार मैं कहती हूँ कि अगर बहुत अच्छा सबक किसी से लेना हो, कुछ सबक किसी से लेना हो, तो आप हमेशा प्रकृति की ओर निहारिए। पतझड़ क्यों आते हैं, फिर वसंत क्यों आता है, फिर थोड़ी सी रूखी हवा और फिर से पतझड़, फिर वसंत। मगर क्या आपको लगता है कि उनके पास उनकी यादें नहीं होती होंगी? तो ये तो हमें मान लेना है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, बदलाव होंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। और जो अच्छे हैं वो खूबसूरत यादें, और जो बुरे हैं उन्हें बुरी यादों में मत तब्दील करिए, उनसे सबक लीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि कहते हैं ना, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुगमे जीवड़ा, सदा न काला केश, सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाड़, सदा न विपत्ति रह सके, सदा न सुख भी होए, सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाह, ढलते ढलते ढल गई तरवर की सी छाह। तो बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और जो साथ है उसको अपने दिल में बसा कर चलते रहिए।

और एक उम्र में जब हमें ये पता नहीं होता था कि हमें कब कहाँ कैसे बिहेव करना है, किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है, तो तब पता है क्या होता था, हम सिर्फ और सिर्फ रोते थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आता था कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, खासकर ये टीनेज में होता था, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार किन बचकानी बातों पर, किन कहते हैं ना बेतुकी बातों पर हम रोया करते थे। और इन्हीं यादों को जब आप याद करते हैं तो हंसते हैं, देखिए ना कितना अजीब है ना, जिन पर हम रोए थे, जिन लम्हों को हमने ऐसे बताया था कि कितना तकलीफ है, कितना दुख है, और उन्हीं यादों को याद करके हम हंसते हैं। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें हमने जिसके साथ बिताए, जब हम मैच्योर्ड होते हैं, हमें एहसास होता है कि वो शख्स, वो पल हमारे लिए कितना कीमती था। अगर वो बीत जाए तो बेशक जिस पल हम मुस्कुराए थे, खुश हुए थे, वो पल हमें याद बनकर बहुत रुलाते हैं। और इसी पर क्या खूब किसी ने कहा है कि बहुत अजब होती हैं यादें इस मोहब्बत की, रोए थे जिन पलों में, याद कर उन्हें हंसी आती है, और हंसे थे जिन पलों में, अब याद कर उन्हें रोना आता है।

जी हाँ, जब आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपका प्यार मिलता है, वो भी ईमेल्स के ज़रिए, तो ये भी एक खूबसूरत यादों का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास बहुत ही प्यारा सा मेल आया है राम राज जी का, श्री गणेशाय नमो, सदाभार गीत, ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। और रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका, सबके नाम हैं। और सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारी तरफ से आकांक्षा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी और शुभ आशीर्वाद। क्या बात है, कुछ मेल्स ना आपका दिन बना देते हैं। जब आप बिटिया बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कह रहे हैं कि बिटिया जी, जो आप गाना सुना रही हैं बहुत ही सुपर हिट है, और ये गाने तो ईमेल करने पर भी इनको सुनने को नहीं मिलता। हमारे सारे आरजीएस कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद की ट्रैक्स प्ले किए जाएं, साथ ही साथ आपकी मेल्स को शामिल किया जाए। विजय पाल यादव जी, राजेश कुमार, कृष्ण कुमार, बबीता राव जी का भी हमारे पास मेल आ गया है। और संवाद इसीलिए ज़रूरी है, बातें इसलिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बातें ना बहुत खूबसूरत हिस्सा बनती हैं आपकी ज़िंदगी का। विजय पाल यादव जी हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपको भी, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, नई एनर्जी के साथ नए ट्रैक्स जुड़ रहे हैं, गाने अच्छे लग रहे हैं, और ये गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं, आपका भी दिन शुभ हो, सुप्रभात। राजेश कुमार इस समय खेत के पेपरमेंट की कटाई करवा रहे हैं और कितने प्यारे सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हरदोई से मेल कर रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, गुड मॉर्निंग आपको भी, और सुंदर एवं भावनात्मक रूप से किया जा रहा है प्रस्तुति, ये पुष्पांजलि की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि बहुत ढेर सारी बातें, उपदेश का तड़का लगाकर यादों की दुनिया में पहुंचा दिया, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, सुप्रभात कृष्ण कुमार जी। बबीता राव, हर बार एक खूबसूरत सा मेल, ढेर सारी कहते हैं ना स्माइली के साथ, गुलदस्ता है, एक कप चाय भी है। मैम जी, आपको 5:55 से सुन रही हूँ, पुष्पांजलि प्रोग्राम अच्छा लगा, लेकिन सदाभार गीत प्रोग्राम तो कतई जहर हो। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते। एकदम अच्छा लग रहा है, झक्कास लग रहा है, मस्त मस्त और शानदार, बिंदास, उम्दा लग रहा है। जो बीच बीच में आपके द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो तो प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती है, ऊपर से आपकी आवाज़, थैंक यू सो मच। और

0: बस ये कहते हैं ना, आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपके कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो बेहतरीन यादें बन जाती हैं। मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, और आपका मेल वाकई बड़ा प्यारा होता है, बहुत कलरफुल, बहुत लगता है कि बहुत मेहनत करती हैं आप। ब्रजलाल जी का भी हमारे पास मेल आ गया और कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग आपको भी, लवली गुड मॉर्निंग, और प्रोग्राम हमेशा की तरह इनको बहुत अच्छा लगता है। सदाबहार प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो प्रेम रोग वाला इन सॉन्ग प्ले किया गया, ये इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। बेशक जेएमएल में मिलते हैं। सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और कहते हैं ना, संवाद वहीं सुंदर होते हैं जहाँ दोनों का सही नहीं साथ होना ज़रूरी होता है। तो आपकी बातों के लिए, आपकी खूबसूरत बातों के लिए जो मेरी बेहतरीन यादें बनेंगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये सब्सक्राइब कीजिए।

7:55 मिनट और ये वक्त कह रहा है कि प्रोग्राम सदाबहार गीत से आकांक्षा को दीजिए अनुमति। जी हाँ, मिलेंगे हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में 8:15 पे। 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन

0: पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और

0: 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर किए हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है।

0: ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जवान,
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ नमस्कार सत श्री अकाल आदाब और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ। वादे के मुताबिक है आज रविवार और हाँ वादे के मुताबिक एक दोस्त जो हमेशा हमारे साथ आते हैं इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, तो क्यों ना उनकी आवाज से पहचान लिया जाए कि कौन है हमारे साथ।
1: बिल्कुल, आप सभी के संडे को बहुत स्पेशल बनाने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पर रेडियो के इस पर आप सभी के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर।
0: क्या बात है, और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ का मकसद ही यही होता है कि आपको एंटरटेन भी किया जाए साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। तो बस इस फुल पावर पैकेज डोज के लिए यहीं पर बने रहिए क्योंकि है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
2: जी हाँ, 8:22 और प्रोग्राम चला है गुड मॉर्निंग लखनऊ। आकांक्षा और स्वेक्षा है आपके साथ और एक पॉजिटिव थॉट के साथ होती है दिन की शुरुआत। तो आज की पॉजिटिव थॉट मॉर्निंग मंत्र क्या है स्वेक्षा?
3: बिल्कुल, आज का मॉर्निंग मंत्र हमसे ये कहता है कि सकारात्मक सोच सूरज की रोशनी की तरह होती है जो धीरे धीरे हर अंधेरे को दूर कर देती है।
2: क्या बात है, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट की बात ही कुछ अलग होती है। अगर आप सुबह उठते उठते कुछ अच्छी चीज देख लेना या फिर कुछ अच्छी थॉट पढ़ लें, इससे आपका दिन बन जाता है। इसीलिए तो आज मतलब कि हर रोज हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में लेकर आते हैं मॉर्निंग मंत्रा जो देता है आपको एक पॉजिटिव थॉट।

0: दिन को खूबसूरत बनाते हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन और प्यारे गीतों के साथ स्वेक्षा है हमारे साथ. मैं तो सुबह से हूँ लेकिन स्वेक्षा कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर निकलते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं जो सुन के बड़ा बुरा लगता है कि यार या देख के ऐसा लगता है कि ऐसा काश हो पाता कि हम हर किसी को समझा पाते. जैसे कि अभी मैं एक किस्सा आपसे बताऊं कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है. एक कॉलेज के बाहर मैं कुछ काम के लिए रुकी थी और वहाँ पे कुछ बच्चे या टीनेज होंगी उनकी और साथ ही साथ कुछ मैच्योर लोग जो ऑफिस के लोग होते होंगे वो स्मोकिंग कर रहे थे
1: जी.
0: और भी जो चीज़ें होती हैं टोबैको से रिलेटेड वो कंज्यूम कर रहे थे वहाँ पे. ठीक है, हम हर किसी को नहीं समझा सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे आसपास वो लोग जो इस चीज़ का सेवन नहीं कर रहे थे, इवन मैं, बहुत तकलीफ हो रही थी. ऐसा वही धुआं हम भी इनहेल कर रहे थे और इतनी खांसी आई कि मुझे प्रॉब्लम होने लगी कि भाई देखो मतलब कितना असर एक छोटी सी जगह पर हम खड़े हैं कुछ दो मिनट पांच मिनट के लिए और इतना प्रॉब्लम ये चीजें कर रही हैं तो उनकी हेल्थ को कितना इफेक्ट करती होगी.
1: वाकई जो आसपास के लोग होते हैं उनको इतना असर पड़ता है और वो तो फिर कंज्यूम ही कर रहे हैं. और साथ ही हम पब्लिक प्लेस पे बहुत ऐसा देखते हैं कि अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई भी बाइक से जा रहा है उसने ऐसे थूक दिया, पीछे वाला जो व्यक्ति आ रहा है ये भी नहीं देख रहे हैं कि उसके ऊपर गिर रहा है, उसका कपड़े खराब हो रहे हैं, कुछ हो रहा है. और साथ ही साथ कितना ज्यादा अगर हम लोग जो देखते हैं हम लोगों के मेंटल हेल्थ पे कितना वो होता है कि हम लोग को चिढ़ मचती है देखकर.
0: बिल्कुल.
1: और सामने वाला व्यक्ति उसको कंज्यूम कर रहा है और पता नहीं कैसे ये लोग ऐसे करते हैं. फिलहाल इसी इससे रिलेटेड आज का जो 31 मई का दिन है वो डेडिकेट किया गया है वर्ल्ड नो टोबैको डे.
0: जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, नो टोबैको डे है. और ऐसे कई एक्सपीरियंसेस जो थोड़े बुरे भी होते हैं, आप भले सेवन ना करते हो लेकिन आपके आसपास अगर समाज में ऐसे लोग हैं तो वो आपको तकलीफ देते हैं. ये आदतें थोड़ी बुरी हैं
1: जी,
0: इनको सुधारने की जरूरत है. तो आज का मुद्दा कुछ ऐसे ही रिलेट करता हुआ.
2: मुद्दा आज का.
0: जी हाँ, आज का मुद्दा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी कौन सी बुरी आदतों को खत्म करके उस पे जीत हासिल करी है. कभी कभी मोटिवेशन बहुत काम करता है. कुछ कहानियां जो हमें मोटिवेट कर जाती हैं,
1: बिल्कुल.
0: तो हो सकता है कि आपकी बात से, आपकी कहानी से कोई मोटिवेट हो जाए और प्रण ले ले कि हम भाई टोबैको का सेवन नहीं करेंगे.
1: बिल्कुल. और आपको लिख कहाँ भेजना है हमें, हमारी मेल आईडी FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर.

0: जी हाँ, 8:36 और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ। आकांक्षा और स्वेक्षा है आपके साथ।
1: और हमने बात की थी वर्ल्ड नो टबैको डे, एक ऐसा दिन उन लोगों के लिए जो अपनी बुरी आदत जो है उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, उन सभी को जागरूक करने के लिए कि इसका सेवन से किस किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं।
0: बिल्कुल स्वेक्षा, और कई बार हम अपनी चीजों को इग्नोर करते हैं, जैसे कि कई बार कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और इस टोबैको के सेवन से कई लोग उभर नहीं पाते हैं या फिर उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है। तो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे से लोगों को प्रेरित करने के लिए कि इस आदत को छोड़े, और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर आर ए एस कुशवाहा जी, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, इस बुरी आदत को कैसे छोड़े, और बहुत सी जानकारी और बातचीत। गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
2: थैंक यू वेरी मच मैम।
0: सर, पहले तो जैसे कि आज हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मना रहे हैं, और इस पर पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तंबाकू की जो लत है, लोग छोड़ना चाहते हैं, कई लोग ऐसी कोशिश करते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं, तो उनको कैसे ये प्रेरित किया जाए या क्या समझाया जाए कि वो इस बात पर अमल कर सकें?
2: देखिए, जैसा कि ये सभी को पता है कि आज तंबाकू निषेध दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसके हानिकारक और जानलेवा पहलुओं पर विचार करने का दिन है, और इसे निजात पाने का भी दिन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसे हर किसी को तंबाकू किसी रूप में लिया जाए, जानलेवा है, इसलिए छोड़ना जरूरी है और छोड़ना मुश्किल नहीं है। अगर कोई ठान ले तो छोड़ सकता है। पहली बात है कि मजबूत इच्छा शक्ति,
0: बिल्कुल
2: संकल्प लेना पड़ेगा, परिवार और दोस्तों और उनका भी साथ चाहिए, और इसके साथ साथ ही डॉक्टरी सलाह की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें अगर देखा जाए तो डॉक्टरी सलाह के रूप में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आजकल तो आधुनिक विज्ञान काफी आगे हो गया है, तो उसमें दवाएं भी हैं, और जो खासतौर से तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट हो, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और बहुत सारे पान मसाला और चीजें हैं, तो उसमें मूल तत्व जो एडिक्टिंग है, जो लत डालने वाला, निकोटीन है।
0: जी।
2: तो उसके लिए निकोटीन गम्स आते हैं, पैच आते हैं, इनहेलर के रूप में भी है। तो मगर ये सब ये नहीं कि एक बुराई को छोड़ के दूसरे को अपनाना है, मतलब एक डेट तय करना चाहिए कि हमें इसके बाद नहीं लेना, और इनको इनका उपयोग करते हुए धीरे धीरे कम करते हुए जीरो करना चाहिए। आजकल दवाएं भी हैं, जैसे वारनिक्लिन और बुप्रोपियान नाम की दवाएं हैं, मगर ये डॉक्टर की देखरेख में लिया जाए तो वो व्यक्ति छोड़ सकता है इन प्रोडक्ट को। तंबाकू की तलब कम करने के भी कुछ उपाय हो सकते हैं, जो घरेलू उपाय कह सकती है, लौंग, सौंफ, इलायची, जब भी तलब लगे इनका इस्तेमाल करा जा सकता है, भुने चने हैं, तुलसी के पत्ते हैं, तो ये सब घरेलू उपाय भी है। उन दोस्तों और स्थितियों से बचना होगा जो इसके लिए उकसाते हैं। तो इस प्रकार से एक प्लानिंग बना करके मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ में इसे परमानेंटली निजात पाया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये बहुत जरूरी है कि इस पर जरूर हर बंदा, क्योंकि देखिए आप ये बात जरूर समझिए, समझाना है सभी को, जन जन तक पहुंचाना है कि तंबाकू का सेवन किसी रूप में किया जाए ये जानलेवा है, ये कैंसर का कारण होता है, दिल के दौरे का कारण, ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़ों में जो सीओपीडी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, तरह तरह की व्याधियों का एक कारण है।
1: जी सर, लेकिन जैसे जो लोग कहते हैं कि उन्हें तंबाकू की लत नहीं, बस आदत है, जैसे कि एक निश्चित टाइम पर सुबह या खाना खाने के बाद तंबाकू लेते हैं, एक टाइम लेते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे छोड़ सकें?
2: जी देखिए, मैं बताना चाहूंगी, ये उनकी उनकी जो है भ्रांति है, ये गलत धारणा है कि ये आदत है, असल में ये एडिक्शन है, जो तंबाकू उत्पादों के अंदर जो निकोटीन है वो

0: नेचर का होता है। एक्चुअली जब भी तंबाकू लिया जाए तो निकोटिन सीधे ब्रेन में पहुंचता है, बहुत तेजी से पहुंचता है, और वहाँ डोपामीन नाम का एक हार्मोन रिलीज कराता है जिससे प्लीजिंग सेंस होता है, मतलब जैसे उसे खुशी जैसा महसूस होता है, प्लीजिंग सेंस होता है, तो वो एडिक्टिव होता है। और जैसे आपने बताया कि पर्टिकुलर समय पे, जैसे कि मॉर्निंग में या खाना खाने के बाद है, या टॉयलेट जाने से पहले कोई ड्राइव कर रहा है, कोई इस तरह से है, तो वो जो शरीर के अंदर से एक डिमांड उठती है, वो कंडीशनिंग है बॉडी की, इस वजह से ऐसा होता है। मगर छोड़ना आवश्यक है, अगर देखा जाए तो, अगर फ्यूचर अगर सिक्योर करना है तो बहुत जरूरी है छोड़ देना।
1: बिल्कुल सर। सर एक और बात की, जैसे कि जो तंबाकू सेवन कर रहा है उसकी स्वास्थ्य पर पे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही साथ समाज के अन्य लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, उसके परिवार मेंबर्स या कहीं सोसाइटी में वो अगर इसका सेवन कर रहा है तो उन पर कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है, कैसे इफेक्ट करता है, ये हमें बताएं।
0: देखिए मैं बताऊं, इसके कई पहलू हो सकते हैं। पहला तो जैसे अगर धूम्रपान की बात किया जाए,
1: जी
0: ठीक, सिगरेट भी और बहुत हुक्का कीलम, बहुत सारे उत्पाद हैं जो उसके रूप में लिए जाते हैं धूम्रपान, तो जो धुआं है जो वातावरण में आसपास फैलता है, जो आसपास मौजूद होता, तो जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसको भी इस धूम्रपान के पूरे खतरे उसमें भी होते हैं। जैसे अगर इंडिया में अगर आंकड़े देखा, पूरे दुनिया में देखा जाए तो करीब 80 लाख लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं, 13 लाख लोगों को जो नहीं करते उनमें भी इससे संबंधित डेथ वगैरह का है। तो जैसे मैं कहना चाहूंगा कि जो सेकेंड हैंड स्मोक है, जो वातावरण में धुआं, उसकी वजह से कैंसर, दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़ों में COPD, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, दमा इत्यादि की तकलीफ होती है। यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं उस संपर्क में, उनमें भी दमा और ये जो निमोनिया इत्यादि का खतरा होता है। इसके साथ ही जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, कोई घर में कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है, उनकी उनकी वाइफ या उनके घर में जो है प्रेग्नेंट है, तो उनमें भी इसके इसके दुष्प्रभाव नजर आते हैं, जैसे समय से पहले डिलीवरी, बच्चा कम वजन का होना, इत्यादि प्रकार के समस्या। अगर लेडी खुद ही स्मोक कर रही है तब तो ये डायरेक्ट खतरे हैं।
1: जी जी जी,
0: तो ये बात है। और
2: जी जी सर, हम लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहा है, अगर वो अचानक इसे छोड़ दे तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, और क्या ये धारणा जो है वो सही है, और ऐसी स्थिति में शरीर में किस किस तरह के बदलाव हो सकते हैं?
0: नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये भी भ्रांति है, और हर व्यक्ति को मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि तंबाकू को छोड़ना ही सबसे अच्छा उपाय है जिसमें जिंदगी सुरक्षित रहेगी। हाँ, जरूर मुश्किल क्या आती है कि शुरू में जैसे अगर जैसे छोड़ दिया जाए, जो कोई बंदा कितने दिन के लिए मेरा छोड़ दे तो करीब 20-30 मिनट में उसका हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, सब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, शरीर में हीलिंग शुरू हो जाएगी, शरीर में सुधार शुरू हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: और अगले दो तीन दिनों में उसे थोड़ी तकलीफ जरूर इस तरह की होती है कि किसी को सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, घबराहट, नींद आने में दिक्कत, कब्ज या बहुत ज्यादा तलब लगती है, तो अगर इसीलिए तो मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है।
1: जी, जी।
0: अगर करीब 24 से 72 घंटे के अंदर ये सब चीजें होती, उसके बाद जो है धीरे धीरे कम होगा। और अगर व्यक्ति उन स्थितियों से बचेगा और अपने मन को मजबूत अगर करके रखा हुआ है, तो 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से ये समझ लीजिए वो उसे छोड़ा जा सकता है और छूट सकता है। करीब 3-4 हफ्ते के बाद उसको शरीर उसका बिल्कुल कह सकते हैं रिपेयर हो जाएगा, फेफड़े अच्छी तरह से काम करने लगेंगे और निकोटीन के का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, उसे तलब भी खत्म हो जाएगी। मगर देखिए होता क्या है कि वो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जैसे कोई दोस्त है, सपोज स्मोक कर रहा, उसने एक ने छोड़ा हुआ तो वो कहेगा पी ले यार, तो फिर इस तरह से शुरू होता। वहां पे बहुत अपने को मजबूत रखना है कि किसी भी लालच में नहीं आना है।
1: जी,
0: दूसरा एक पहलू ये भी है कि जैसे जिन घरों में मैंने मतलब एक थर्ड हैंड स्मोक भी होता है, जैसे घर के पर्दे और सोफे और जो उनपे सेटल हो जाते हैं पार्टिकल, वो भी खतरनाक होते हैं। जी
1: जी बिल्कुल सर, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आपने बहुत सी ऐसी जानकारियां भी दी जो शायद हमें नहीं पता होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं।
0: देखिए अल्टीमेट संदेश यही है मेरा कि तंबाकू जानलेवा है, इसका चाहे किसी भी रूप में प्रयोग किया जाए, ये निश्चित रूप से शरीर को मौत की तरफ ले जाता है। तो ये आवश्यक है कि आज ही बल्कि संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें, विचार करें

0: क्योंकि ये तंबाकू जो है जितने प्रकार के, आप समय कम है तो नहीं सबका नाम लूंगा, ये हमारे समाज में व्याप्त बुराई के तौर पे उपलब्ध है। कई बार मेहमानों को, कई बार मजदूर को लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। ये परंपरा बहुत ही गलत है और इतना ये कहेंगे इतना सस्ता नशा है कि हर गरीब के जेब में इतना पैसा रहता है, हर चौक कदम पे मिलता है, उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो
1: बिल्कुल
0: इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। सभी को
1: जी
0: विचार करना चाहिए क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। अगर किसी को कैंसर हो जाए, किसी परिवार में जाए, तो परिवार एकदम नष्ट हो जाता है। ये समझना जरूरी है, ये नहीं सोचा जाए कि उसके साथ हो रहा मेरे साथ नहीं होगा, ये जरूरी है छोड़ देना।
1: बिल्कुल थैंक यू सो मच सर आज हमसे बात करने के लिए और लोगों को एक बेहतरीन संदेश देने के लिए।
0: थैंक यू मैम।
1: तो दोस्तों जैसा कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे और जिस पर हमने बात करी डॉक्टर आर ए एस कुशवाहा जी से, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड चीफ डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ से थे। और शिक्षा बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि देखिए आप स्मोक नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपका फैमिली मेंबर है या फिर आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं या टबैको का सेवन करते हैं तो किस तरह से वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और जो बातें ये डॉक्टर साहब ने बताई, हम सभी को अगर जो लोग इसका सेवन करते हैं, हमें लगता है कि उन्हें मदद मिलेगी इस चीज़ को छोड़ने में और एक बेहतर जीवन शैली अपनाने में भी।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbow@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: आठ बज के 52 मिनट प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, स्वेक्षा और आकांक्षा है आपके साथ।
3: और अब हमारे साथ है आप सभी के मेल्स, इतने सारे मेल्स आ चुके हैं। सबसे पहले अनुराधा कुमारी हमें मेल कर रही है लोहारा, ग्राम लोहारा से, और लिखती है कि मैं अभी सुन तो नहीं रही हूँ, लेकिन जो FM पर प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपनी पसंद का एक गाना इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो ये गाने की रिक्वेस्ट आप 2 बजे भेज सकती हैं हमें।
2: बिल्कुल, बहरहाल शिक्षा इनके लिए अच्छा लगता है सॉन्ग
3: जी,
2: कई बार इन्होंने अच्छा लगता है बोला। मोनू सेठ जी का हमारे पास मेल आ गया, आई एम निजा परु वीति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थ जो लोग उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए पूरी धरती ही एक परिवार मानी जाती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोनू सेठ जी और मेल करने के लिए। मुद्दे पर अभी कोई बात नहीं लिखी, रोशनी रावत हमसे क्या कह रही हैं
3: जी, इन्होंने गुड मॉर्निंग के साथ लिखा है, सुबह से जुड़े हुए हैं, पुष्पांजलि और सदाबहार गीत बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है, उन्नाव की रहने वाली है, चंडीगढ़ से हमारा प्रोग्राम अभी सुन रही है, और मुद्दे पर लिखा है मुझे कोई एक बार बुला लेता था तो मैं तुरंत चली जाती थी, लेकिन अब वो आदत छोड़ दी है, जहाँ जरूरी नहीं वहाँ नहीं जाती हूँ।
2: क्या बात है, और देखिए कितनी क्यूट सी आदत थी कि अब किसी ने आवाज दी बस हम चले गए। और होता है कि कुछ आदतें ऐसी होती है जिन्हें हमें लगता है कि अरे नॉर्मल चीज है, लेकिन वो बड़ी बात होती है, और उस पर जीत हासिल करी इन्होंने। और आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही था कि भाई आप कौन सी बुरी आदतों पर अपनी जीत हासिल कर चुके हैं, उसके बारे में हमसे शेयर करना था। महेंद्र दीपन का भी हमारे पास मेल आ गया है, गुड मॉर्निंग आपको भी। राजस्थान के नौगढ़ जिले रूड़ गांव से आप हमें मेल कर रहे हैं, आज नो टोबैको डे के अवसर पर ये सभी के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से। नशे एक ऐसी बुराई है जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करती है बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि मैं किसी भी प्रकार के तंबाकू या हानिकारक नशे का सेवन नहीं करूंगा। मेरा सभी से यही आग्रह है कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, इसीलिए इसे नशे की भेंट ना चढ़ाएं, और हमें अपने जीवन को अनुशासन स्वस्थ आदतों से जोड़ना चाहिए ताकि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। थैंक यू सो मच महेंद्र दीपन जी हमें मेल करने के लिए और एक बहुत ही प्यारा मैसेज देने के लिए, क्योंकि होता यही है कि कई ऐसी बुरी आदतें होती हैं जिन पे हम जीत नहीं हासिल कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन करके देखिए चीजें आसान हो जाएंगी।
3: बिल्कुल, 8:55 का वक्त हो गया है, गुड मॉर्निंग लखनऊ का जो फर्स्ट हाफ प्रोग्राम है इसको वाइंड अप करने का समय आ गया है, और 9 बजे न्यूज ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे बागवानी स्पेशल सेगमेंट। संडे स्पेशल में आप सभी के लिए छत पर गमलों में फल फूल और सब्जी उत्पादन से रिलेटेड ये जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है इसको आप सुन सकेंगे, तो इसके लिए अपने सवाल जो है वो हमें जल्दी जल्दी भेज दीजिए हमारी मेल आईडी पर fmrainbowhelpline@gmail.com पर, इस पर आपके सवालों का हमें इंतजार है, और साथ ही साथ मुद्दा तो आपको पता ही है।
2: बिल्कुल, मुद्दा है हमारा

राय कि कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिन पर आपने जीत हासिल करी है और उसके बारे में हमसे शेयर करिए। इसको आपको शेयर करना है fmakashwani@gmail.com पर। तो बागानी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उन पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय मुद्दे पर जल्द से जल्द भेजिए।

नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए लागत की 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। इस खबर को विभिन्न समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, योगी बोले, देश के दुश्मनों को हिंसा से जवाब देना ही हमारा धर्म, यही ऋषि परंपरा। हिंदुस्तान ने लिखा है, सिंदूर 2.0 के लिए सेना तैयार। वहीं स्वतंत्र भारत ने लिखा है, योगी बोले, सुरक्षा का मजबूत माहौल ही विकास की गारंटी। राज्य के कुछ जिलों में पिछले दिनों हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान कल उन्होंने वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ के डीएम व पुलिस कमिश्नरों और जौनपुर, पीलीभीत, बागपत व गाजीपुर के डीएम और एसपी को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने डीजीपी राजीव कृष्ण की मौजूदगी में सभी को अल्टीमेटम देते हुए लापरवाही पर सीधी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस खबर को विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, योगी बोले, जघन्य घटनाओं में दोषियों पर होगी कार्रवाई। दैनिक जागरण लिखता है, बड़ी आपराधिक घटनाओं पर पुलिस अफसरों को चेतावनी। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, सीएम ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, कई जिलों में हत्या और घटनाओं पर अफसरों को दी चेतावनी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली और मुंबई के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और पुलिस कर्मियों पर हमलों की साजिश में शामिल थे। आरोपी उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब और नेपाल के रहने वाले हैं। ये खबर भी आज लखनऊ से प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी बनी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, देश दहलाने की थी साजिश, 8 गिरफ्तार। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया, धमाकों की साजिश रचने में 8 संदिग्ध गिरफ्तार। वहीं अमृत विचार ने शीर्षक दिया है, दिल्ली समेत 4 शहर दहलाने की साजिश, 8 आतंकी गिरफ्तार। इसके अलावा जेई एडवांस्ड के नतीजे, कल प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी और आज से बदली बारिश, कल से पारा बढ़ाएगा तपिश, जैसी खबरों ने के भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
4: नौ बज के 4 मिनट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ चल रहा है, और चल रहा है कि इससे पहले एक घंटा में हमारा जो गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम का वाइंड अप हो चुका है, उसमें बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मुद्दा आपको बता दिया गया है, लेकिन अभी भी भाई संडे है तो फंडे किसी के लिए है, और कुछ लोग अभी भी जगे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि भाई ठीक है फिर से हम मुद्दा भी बता देंगे। और जो लोग 6 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाई बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं शिक्षक, क्योंकि आज संडे और संडे बहुत स्पेशल चीजें होती हैं
5: जी,
4: जैसे कि आज बागानी की भी बात होती है कि कैसे भाई अपनी बागानी को और सुंदर कर सकते हैं, छतों पे अगर फूल और गमले हैं तो किस तरह से उनकी देखरेख कर सकते हैं। तो हर संडे हम आपके साथ एक स्पेशल मेहमान लेकर आते हैं जो आपकी सारी समस्याओं को सुनते हैं और उनका सॉल्यूशन देते हैं।
5: बिल्कुल, और आज इस संडे भी हमारे साथ हैं डॉक्टर SR सिंह, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से। आइए इनसे बात करते हैं और आपके जो सवाल हैं उनको शामिल करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: आप सबको नमस्कार
5: जी। सर, हमारे पास पहला सवाल है राममोहन गुप्ता जी का, ये लिखते हैं, घर में लगे गमलों की मीठी नीम कैसे फले फूले ज्यादा, वर्षों से लगे पौधे सूख गए, हुआ क्या ये समझ नहीं आ रहा है।
6: उसमें गमले का जो है मीडिया है वो कॉम्पैक्ट हो गया था, आप गमले में हमेशा जो है एरेशन बनी रहे उसके लिए सही प्रपोर्शन में 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग बालू मिला करके फिर से लगाएं, और पानी पानी जो है ज्यादा न जाए रुके, उसके लिए होल को जो है उसको साफ करते रहें
5: जी।
6: आपका वो चलेगा समय समय पर, थोड़ी थोड़ी देर पर, 6-6 महीने पर, तो आधा आधा KG बर्मी कंपोस्ट उसमें मिलाते रहें तो अच्छी ग्रोथ होती रहेगी
4: जी। बिल्कुल सर, अगला मेल हमारे पास आया है घनश्याम।

0: सिंह जी का, नारायण नगर फैजाबाद रोड से हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका घर बहुत बड़ा है, तो क्या इसमें गूलर और बड़हल का पेड़ लगाया जा सकता है?
1: गूलर और बड़हल बड़े पौधे हैं, अगर नीचे लगाना है तो छत पे लगाने के लिए जो है बड़े गमले का उपयोग करें, 36 इंची से लेकर के 40 इंची तक, माने जो है 60 से 70 केजी 80 केजी तक की मिट्टी जो है उसमें हो गमला, अगर घर बहुत मजबूत होगा तभी, नहीं तो जो है उसका भार पड़ता है उसपे और जगह जगह पर जड़ें तोड़ करके इनके घर में छेद कर सकती हैं। तो गूलर गूलर या इस तरह के बड़े पौधे को घर पे जो लगाने को ऊपर लगाने के लिए एडवाइस नहीं की जा सकती। हाँ, नीचे बालकनी में अगर लगाना हो तो लगा सकते हैं।
2: जी जी, जगमोहन जी हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या अमरूद और लीची के प्लांट से कलम बनाई जा सकती है और कैसे?
1: हाँ, गुटी गुटी विधि से बनाई जा सकती है। उसमें जो है जो एक अंगुली के बराबर की टहनी 1 साल पुरानी है, इस समय समय आ रहा है 15 जून के आसपास जो है, उसमें 1 से 2.5 यानी 1 इंची जो है उसकी ताल को आराज आसानी से निकालें और ये ध्यान रहे कि लकड़ी के ऊपर का हरा भाग जिसे कैम्बियम कहते हैं वो डैमेज ना हो। उसके ऊपर जो है मांस घास या सड़ी हुई गोबर की खाद को लगा करके और उसके ऊपर जो है टाट से बांधें या उससे पाली पाली भी हल्का थीन आती है उससे लगा करके बांधें। ध्यान रहे कि इसमें नमी बनी रहे, अगर बरसात नहीं होती है तो ऊपर एक बोतल पानी रख करके जिस तरह से शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरता है, एक बोतल टांग दे उसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहे, जड़ें आसानी से आ जाएंगी। और जो है आजकल गूटी विधि से नहीं बल्कि ग्राफ्टिंग तरीके से जो है अमरूद की जो है तरीका होता है, रूट स्टॉक हमारे यहाँ से अगर लगाना चाहें तो पौधे जो है अच्छी प्रजातियों को उपलब्ध है, आप वहाँ केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थाओं से ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, हमारे पास अगला मेल है समर्थ जो हमें आलमबाग से मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है और सूक्ष्म हवाओं के कारण क्या हो रहा है कि इन्होंने जो शेड में पौधे लगाए हैं वो भी सूख जा रहे हैं, तो उनका बचाव कैसे करें?
1: ऊपर ऊपर जो है अगर है तो फागर का अगर वो इंतजाम कर सके तो ऊपर से मिस्टिंग, उसमें जब अगर शेड नेट लगाए हैं तो ऊपर से स्प्रिंकलर लगा दें और सुबह जो है एक एक दो दो घंटे पे थोड़ा सा फागर करके नमी बनाए रखें। अगर फागर नहीं है तो उस तरह से ही जो है स्प्रेयर से छिड़काव करें जो है दोपहर में या एक एक घंटे दो दो घंटे बाद, अगर जिस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उसमें नमी बनाए रखेंगे तो होगा। तीसरा तरीका है कि बड़े बड़े टब में वहां पे पानी रख दें जिससे कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है और उसमें जो है हमेशा सुबह शाम जो है पानी को दे करके मेंटेन करते रहे।
2: जी, वारिस अली जी पूछना चाहते हैं कि मैंने गमले में सूरजमुखी लगाया है, उसमें दीमक लग गया है, क्या कर सकते हैं?
1: उसमें एक दवा आती है फ्यूराडान ग्रेन्यूल, फ्यूराडान, उसका जो है 2.5 से 2.5 ग्राम मात्रा जो है आधा लीटर पानी में घोल करके उसको डाल दें, या किसी तरह का इंसेक्टिसाइड जो है जो कि उसको मारता है जैसे क्लोरोपाइरिफास है उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नीम की कली अगर है तो 20 से 25 ग्राम उस गमले में मिलाएं या नीम का तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके उसके जड़ के पास डाल दें तो दीमक का जो है प्रकोप कम हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, शिवम सिंह हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी छत पर नींबू का पेड़ है, उसकी पत्तियां सूख रही हैं, क्या करें? और सर छत पर कितने किलो का गमला रख सकते हैं?
1: छत के स्ट्रेंथ के ऊपर है, पहले जांच कर ले कितना जो है, कितना अगर नया घर है तो जो है ज्यादा बड़ा बड़ा गमला रख सकते हैं, 80 किलो तक का गमला रख सकते हैं। एक ध्यान रखें कि एक ही जगह पर गमला ना हो, उसको इधर हाँ उसको जो है थोड़ी थोड़ी देर पे जो है एक दो दो चार चार महीने पे इधर उधर मूव करते रहना चाहिए, नहीं तो जड़े जो है इनके गमले में उसमें छेद करेंगे। नीचे जो है तस्तरी प्लेट रखें जिससे पानी लीच होकर के, नहीं तो पानी से छत की सीलन आ जाएगी और घर के अंदर सीलन आने लगेगी। नीचे तस्तरी रखें या कोटिंग लगा के रखें और 60 से 70 केजी का गमला जो है उपयुक्त है। हाँ, बहुत मजबूत घर है तो जो है जितना वेट चाहे आप रख सकते हैं।
2: जी।
1: हाँ, मीडिया मीडिया अगर है तो यूज करें कोकोपीट बर्मिकुलाइट, हल्के मीडिया का यूज करेंगे तो बड़े गमले में भी जो है कम वजन से जो है आप उनके छत पे जो है दबाव कम पड़ेगा।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं के सभी सवालों का इतना बढ़िया जवाब देने के लिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
2: जी
0: तो दोस्तों, हमारे साथ थे छत व गमलों और फूल फलों सब्जी बागानी की बात करने के लिए डॉक्टर एस आर सिंह जी, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन और ICR केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से।

0: इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और जितने भी आपके सवाल थे बागवानी से संबंधित उनका उत्तर भी दिया और आशा है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
1: बिल्कुल, और अगर इस संडे आपके सवाल रह गए, आप भेज नहीं पाए हैं हमें किसी कारण से, तो अगले संडे के लिए अभी से आप सवाल हमें भेज सकते हैं fmrainbowhelpline@gmail.com। अगले संडे स्पेशल प्रोग्राम में हम बागवानी सेगमेंट में आपके मेल को जरूर शामिल करेंगे।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।

0: 9:16 और आप मना रहे हैं संडे जो कि है आपके लिए फन डे, लेकिन इस संडे को और स्पेशल बनाने के लिए हम प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिसमें
1: जी अब बारी है आप सभी के लिए मौसम की जानकारी देने के लिए, वेदर अपडेट्स के लिए, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। आइए उनसे जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहने वाला है अपने शहर का। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: जी गुड मॉर्निंग
1: सर, मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? अभी जो मौसम बीच में बदला था, तो क्या ऐसा अनुमान है कि अभी ऐसा ही रहेगा या गर्मी बढ़ेगी? अब
2: जी अगर बात करें तो लगभग आज भी कुछ इसी तरीके से मौसम रहेगा और इतना कुछ मौसम बना रहेगा। बीच बीच में बादलों की आवाज आए, जैसा की हल्की बूंदाबांदी का असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के कहें तो अभी आज कल थोड़ा मौसम कुछ नुमा रहेगा, बाकी उसके बाद
1: जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया कि भाई आज थोड़ी सी बूंदाबांदी के आसार हो सकते हैं। तो अब तक आप जो सुहाना मौसम देख रहे थे, एक दो दिन की राहत मिली थी, तो हो सकता है कि भाई आज भी आपको हल्की सी राहत मिल जाए तो आपका संडे और स्पेशल हो जाए।

0: भाई ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए क्योंकि चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग
1: लखनऊ।
0: तो बातें हो रही है बहुत ढेर सारी, बहुत ढेर सारा एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के साथ। और देखिए शिक्षा, हम हर चीज का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे लिसनर्स भाई एंटरटेन भी हों, फिट भी रहे और उनके ढेर सारी इन्फॉर्मेशन रहे। तो फिट रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए हम एक छोटी सी हमारी कोशिश होती है, हर संडे हम लेकर आते हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। जी हाँ, तो इस संडे भी देखिए क्या इत्तेफाक है कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे भी है, संडे भी है। और अभी हमने एक बात करी ही डॉक्टर साहब से कि कैसे टोबैको की आदतों को छुड़ा सकते हैं। और आज हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम में भी, जो कि हमारा 12 बजे से 1 बजे तक आता है, जिसमें आज का विषय है तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे स्टूडियो डॉक्टर जिशानुद्दीन अहमद, कैंसर सर्जन है। और टोबैको के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तंबाकू सेवन कितना हानिकारक है, इस पर जानकारी देंगे। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप भी पूछ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, हमें मेल करना होगा fmakashwanilakhnow@gmail.com। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-22-38-852, दूसरा नंबर है 0522-22-38-845।
1: ये तो बात हुई दोपहर 12 बजे की, उससे पहले 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिस पर आज पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार राय जी से सुरेंद्र राजेश्वरी जी की खास बातचीत आप सुनेंगे। याद रखिए ठीक 10 बजे।
0: बिल्कुल, तो बस भूलिएगा नहीं कि आप ये दोनों प्रोग्राम आज के मेहमान और साथ ही साथ हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम, जिसमें बहुत खास बातें हैं आपके लिए, तो बस इनको एंजॉय करिएगा और हमसे जुड़े रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।

0: दो कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर,
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
6: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: क्या बात है, बड़े प्यार से स्वेच्छा ने बना दिया आपका हैप्पी वाला बर्थडे भाई. गर्मियों की छुट्टियां, ऊपर से संडे, ऊपर से फंडे, और मौसम भी अच्छा होने वाला है जैसा कि बता दिया गया है. और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में है तो हम रोज होते हैं आपके साथ. पहले तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: बिल्कुल, आपका खास दिन है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये खास दिन बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर आए, और अगर आपकी एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं.
0: तो बिल्कुल भाई, और आपके इस खास दिन को और भी खास कौन बना रहा है ये जानना बहुत जरूरी है. तो आपको बता दें कि आज आप अपना बर्थडे मना रहे हैं भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर जी की आज जयंती है. वो एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी. उन्होंने अपने राज्यकाल में जो कुछ भी किया वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था
1: जी. और भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया जी की भी आज जयंती है. उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अभिनय से सजी फिल्म अजूबा का संगीत दिया, और साथ ही तमस, अंकुर, मंथन, मंडी, जुनून और कलयुग जैसी उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जिसमें उन्होंने संगीत अपना दिया.
0: हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशन निर्माणकर्ता और पट कथाकारों में से एक राज खोसला जी की भी आज जयंती है. वो कौन थी? 1964 में हुए मेरा साया, 1967 में दोस्ताना, और मुख्य फिल्म में मैं तुलसी तेरे आंगन की करी थी, जिसने उन्हें

0: फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिलाया था।
1: अब बॉलीवुड की बात करें तो शोभिता धुलीपाला इंडियन एक्ट्रेस और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर शोभिता का आज है हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। इनकी फिल्म्स और सीरीज की बात करें तो कुरूप, मेजर, द नाइट मैनेजर, मेड इन हेवन जैसे कुछ फिल्मों और सीरीज में इन्होंने काम किया।
0: इसी के साथ दिल्ली वैली, बदमाश कंपनी, गो गोवा गॉन जैसी फिल्म में काम करने वाले इंडियन कॉमेडियन, एक्टर एंड म्यूजिशियन वी दास जी का भी आज हैप्पी बर्थडे है। तो भाई ये सब लोग आपके बर्थडे को खास बनाते हैं, तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत ढेर सारी प्यारी प्यारी विशेष के साथ, तो क्यों ना हम वीर दास जी का भी, जो बदमाश कंपनी का ट्रैक था शिक्षा जस का, वो सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है, तो वो सॉन्ग प्ले कर दिया जाए।

0: जी हमें पता है आपको चस्का लग जाता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ का और एक आदत बन जाती है शिक्षा और ये आदत सबसे अच्छी आदत है
1: जी आप सभी हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं सभी से और इतना प्यारे प्यारे मेल्स हमारे पास जो आ जाते हैं आप सभी के भाई हमारा दिन भी खास बन जाता है स्पेशल बन जाता है और हमारे पास मेल आया है अगला आलोक कुमार जी इन्होंने फरमाइश की है तो प्लीज आप अपना मेल फरमाइशी प्रोग्राम में भेजिएगा
0: देखिए अरुण कुमार जी ने आपका नाम बदल दिया है

0: स्वेच्छा से श्वेता कर दिया है. आपको कबूल है तो कोई बात नहीं, वरना हम आगे मेल पढ़ते हैं. कुशवाहा गमोइया हरदोई से आप मेल कर रहे हैं और अरुण कुमार कुशवाहा जी हमें मेल कर रहे हैं. दोनों बिटियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार. मेरा रेडियो से बहुत पुराना नाता है, ये मेरी लाइफ लाइन है. रेडियो को मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत प्यारे आरजेज का इन्होंने नाम लिया है, जैसे कि पहले यहाँ पे नूतन मैम थी और अनुपम पाठक सर, नीना सोनकर मैम जी का भी इन्होंने नाम लिया है. ये सब इनके सबके प्रोग्राम ये सुनते थे और इनको बहुत अच्छा लगता था. और तब पत्र का जमाना था, आज नई पत्र व्यवस्था है जिसे मैंने कई दिनों से मैं सीख पा रहा हूँ, पता नहीं सीख पाया हूँ या नहीं, मेल शामिल हुआ तो सीख गया. अच्छा, ये ईमेल्स की बात कर रहे हैं कि ये आजकल की नई पत्र व्यवस्था इसको कह रहे हैं, और फिर भी अगर नहीं सीख पाया हूँ तो प्रयास जारी रहेगा. मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा कि रेडियो से ही मेरी एक आदत है, जो कि मैं इसे बुरी आदत नहीं कहूंगा मगर ये बहुत ही प्यारी आदत है. थैंक यू सो मच अरुण कुमार जी, वाकई ये बहुत ही प्यारी आदत है और इसे बरकरार रखिएगा
1: जी. सुधांशु हमें मेल करते हैं बख्शी का दर आपके पास से और लिखते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है. मुद्दे पर लिखते हैं मैं नशा नहीं करता, लेकिन बात अगर बुरी बात की है तो हमने एक बात पर जीत दर्ज की है. वो बात है कोई कुछ भी कहे उसे इग्नोर करते हुए अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि मैं अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ और मैं ना कोई नशा करता हूँ और ना ही कभी करूँगा.
0: इसी के साथ वारिस अली खान जी भी लिख रहे हैं, कभी जीत मिलती है कभी तजुर्बा मिलता है, जिंदगी में हर कोशिश का हमें फल जरूर मिलता है. बिल्कुल. और आवाज़ की दुनिया के प्यारे दोस्तों को, आकांक्षा और शिक्षा को, खान परिवार का प्यार भरा सलाम. नो टोबैको डे पर ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए. और कुछ आंकड़े बताए हैं इन्होंने कि ऐसे ऐसे लोग, इतने लोग सेवन करते हुए कितने लोगों को कैंसर होता है, हार्ट की समस्या होती है. और हेल्थ इज वेल्थ, इस बात पर आप हमेशा अमल करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
1: बबीता राव हमें गोसाईगंज से मेल करती हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और लिखती हैं कि मैं काफ़ी टाइम बाद एक साथ आप दोनों को प्रोग्राम में सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. और टॉपिक पर, मुद्दे पर कहना चाहती हैं, मेरे घर पर सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे यहाँ कोई भी शख्स किसी भी धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं. दिक्कत ये नहीं कि लोग जागरूक नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, दिक्कत ये है कि सभी को सब कुछ मालूम होते हुए भी धूम्रपान का सेवन करते हैं. अपनी हेल्थ से बढ़कर लोगों के लिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया हेल्थ इज वेल्थ. और लिखती हैं मैंने दो आदतें छोड़ी हैं, वो ये है कि मैं गुस्सा बहुत कम करने लग गई हूँ और दूसरी मैं बहस नहीं करती.
0: क्या बात है, ये आते बहुत अच्छी हैं. और इन्हें मतलब ये जिन आदतों को आपने छोड़ा है कि आपको गुस्सा आ जाता था और साथ ही साथ बहस करने लगते थे, तो इनसे कई चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है. ब्रिजेश सिंह भी हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जुड़ नहीं पाए थे बहुत टाइम से, क्योंकि इनके यहाँ श्रीमद भगवद गीता चल रही थी और उसी में व्यस्त थे. आज ही हमसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए ब्रिजेश सिंह जी.
1: जी, और हमारे पास है निधि चौरसिया का मेल, गुड मॉर्निंग के साथ लिखे हैं कि आज टॉपिक सुन नहीं पाए हैं.
0: आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमने आपसे पूछा था कि आपकी ऐसी कौन सी बुरी आदतें थी जिस पर आपने जीत हासिल करी, जिसको खत्म करके आप जीत पाए हैं, तो उनके बारे में आपको हमें बताना था. और बहुत सी बातें, आज बहुत ही खास दिन भी है, जैसे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे तो हमने बताया, वर्ल्ड पैरेट डे भी है, वर्ल्ड फोस्टर डे भी है, और इतिहास में कुछ दिलचस्प जानकारियों के साथ हम इस ट्रैक के बाद होंगे हाजिर.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: नौ बज के 45 मिनट प्रोग्राम चल रहा है, गुड मॉर्निंग लखनऊ। आकांक्षा और स्वेच्छा है आपके साथ। और आज दिन की बात, क्योंकि हर दिन अपने आप में रहता है बहुत कुछ खास। तो जैसे कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे था, हमने बात उस पर भी करी, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे दिन हैं जो इस दिन को खास बनाते हैं।
10: जी, सबसे इंटेलिजेंट पक्षी जैसे हम कहते हैं ना, पैरेट हमारे आसपास जो दिखता है, आज वर्ल्ड पैरेट डे भी है, हम सभी मना रहे हैं। और इसकी खूबसूरती और समझदार पक्षी जो है, इसके महत्व को समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
9: बिल्कुल। और साथ ही साथ भाई देखिए, अगर हम कोई दिन मनाते हैं ना, तो उसके पीछे एक मोटिव छिपा होता है कि जैसे पैरट डे है, तो पैरट को बचाने के साथ साथ और भी, भाई पैरट कैसे बचेगा जब आसपास ग्रीनरी होगी, उनकी रहने के लिए जगह होगी। तो जो पैरट आपको इंटेलिजेंट लगता है, आप उसे अपने घर में कैद करना चाहते हैं, तो वो पैरट बाहर पेड़ों पे बड़ा सुंदर लगता है। तो कोशिश करिए कि इन पक्षियों को आजाद रहने दीजिए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके।
10: और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड फॉस्टर डे, उन लोगों और परिवारों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है जो जरूरतमंद बच्चों को प्यार, सुरक्षा और एक बेहतर जीवन देने का काम करते हैं।
9: बिल्कुल। इसी के साथ, अपने परिवार का साथ नहीं मिल पाता ऐसे बच्चों को, या फिर ऐसे में कहते हैं कि वो केयर मिस करते हैं, तो सुरक्षित और अपनापन भरा माहौल देने की कोशिश करता है ये दिन। ये दिन हमें इंसानियत, जिम्मेदारी और केयरिंग नेचर की अहमियत को भी समझाता है।
10: और साथ ही साथ अब आज के दिन से जुड़ी बात हम कर रहे हैं, तो इतिहास में

0: पीछे चलते हैं 1774 में आज के दिन भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था।
1: इसी के साथ 1921 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था आज ही के दिन।
0: और 1964 में बंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम आखिरी बार आज के दिन चलाई गई थी।
1: क्या बात है, 1977 में आज के दिन भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी।
0: तो ये थी कुछ आज के इतिहास से जुड़ी बातें। आप सभी के लिए एक ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ चल रहा है। आकांक्षा और स्वेच्छा आपके साथ हैं और साथ में आपके बेहतरीन मेल्स। और कुछ मेल्स ऐसे भी हैं स्वेच्छा जिन्होंने फरमाइश करी है कि भाई ये गाना सुना दीजिए, तो आपको हम बता दें कि बिल्कुल आपकी ये जो फरमाइश है, आप जो भी विशेष कर रहे हैं कि अब मुझे आप ये गाना सुनना है, तो आप सुन सकते हैं। एक प्रोग्राम है हॉटमेल, आप उसमें आपने ये फरमाइश भेजी, आपका ट्रैक जरूर प्ले होगा।
2: और मुनेश कुमार राज हमें मेल कर रहे हैं लखीमपुर खीरी से, और इन्होंने कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने शिकायत किया कि पूरा नहीं पढ़ पाते। तो देखिए, हमारे पास जो समय सीमा होती है ना, वो एकदम निर्धारित रहती है, लेकिन आपकी जो बात है वो हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचे।
1: बिल्कुल। इसी के साथ वकील अहमद मुद्दे पर लिख रहे हैं कि भाई देखिए, पहले ये सेवन करते थे टोबैको का, तम्बाकू का, और अब इन्होंने छोड़ दिया है, तो क्या बात है। इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत ना आपकी हेल्थ को बड़ा ही अच्छा बनाती हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।
2: सुरेश शर्मा हमें मेल कर रहे हैं, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, लिखकर भेजते हैं।
1: बिल्कुल, और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आगे भी आप इस चीज का ध्यान रखें। ब्रजेश सिंह जी हमें कैसरगंज बहराइच से मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं नशा नाश की जड़ होती है, हम अपने आप से ही खुश ये अपने आप से ही खुश हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नशा ही नहीं है। और कई लोगों को इन्होंने

0: नशा छुड़वाया भी है। पता है शिक्षा, कई बार हम कोशिशें करते हैं कि हम अपने अंदर सुधार लाएं, और ये अच्छी बात है कि अगर वो सुधार आ जाते हैं, इसके साथ ही उससे भी अच्छी और बेहतरीन बात ये होती है कि अगर आप अपने आसपास लोगों में भी वो इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, तो ये एक ऐसा चमत्कार होता है ना, जो खुद पर भी विश्वास नहीं होता।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें आज हमने की, संडे स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश की, और अब जो हमारा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ है, उसको वाइंड अप करने का समय आ गया है।
0: बिल्कुल। तो आगे का सफर आप शिक्षा के साथ तय करेंगे। सुनेंगे प्रोग्राम मन की बात, इसके साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, लेकिन आकांक्षा को दीजिए यहीं से अनुमति। फिर कभी मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में कल नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में कल नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय नौसेना की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त मानदंडों के कार्यान्वयन और निगरानी को मजबूत करना है। ये पहल शैक्षणिक संस्थानों द्वारा स्वमूल्यांकन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। इससे तंबाकू मुक्त दिशा निर्देशों के पालन की सटीक निगरानी हो सकेगी। जिला कारागार लखनऊ में कल समर्थ योजना के तहत 45 बंदियों को रेशम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह और जेल अधीक्षक आर के जायसवाल ने बंदियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस दौरान प्रत्येक बंदी को 30 दिन के प्रशिक्षण पर 5100 रुपए का मानदेय भी मिला। वहीं नारी बंदी निकेतन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और लाइफ एंड लिबर्टी फाउंडेशन ने महिला बंदियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर लगाया, जिसमें महिला बंदियों को व्यक्तिगत परामर्श दिया गया। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार राय जी की सुरेंद्र राजेश्वरी जी के खास बातचीत।
1: नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेहमान कार्यक्रम में। चिट्ठियों में सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें रिश्तों की धड़कनें बसती हैं। भारत का डाक विभाग केवल पत्र पहुंचाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि देश की भावनाओं, उसके संस्कृतियों और संबंधों को जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु है। गाँव की पगडंडियों से लेकर महानगरों की ऊँची इमारतों तक भारतीय डाक विभाग ने सदियों से लोगों की सुख दुख, आशाओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का पवित्र कार्य किया है। हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे मेहमान इसी पवित्र भाव से डाक विभाग में बड़ी ही लगन और श्रद्धा भाव के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरी मुराद है भारतीय डाक सेवा के लखनऊ परिक्षेत्र के PMG यानी पोस्ट मास्टर जनरल श्री सुनील कुमार राय साहब। सुनील कुमार जी, सबसे पहले हम आकाशवाणी के सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपका आबाई वतन यानी कि आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ की है।
2: देखिए, मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर के नाम से। जब बनारस आप जाएंगे तो बनारस से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे,
1: जी जी,
2: पूरब दिशा में बिहार से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में पर बाउंड्री बिहार से लगी हुई है। वहीं गाजीपुर में एक जमानिया तहसील है
1: जी,
2: और उस तहसील में एक सोनहरिया नाम का गांव है, उसी गांव की मेरी पैदाइश है।
1: ये कौन सा सन होगा?
2: जी, मेरा जन्म 1975 में हुआ था और संयोग से आज जब आप मुझे बुलाए हैं तो यही महीना था, 21 मई को मेरी जन्मतिथि है।
1: क्या बात, वाह,
2: इसी महीने में मैं पैदा हुआ हूँ।
1: बहुत सौभाग्य का महीना है। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई?
2: देखिए, पिताजी मेरे तब का मध्य प्रदेश था और अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। फादर हमारे 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड SECL साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर होता था बिलासपुर
1: जी जी,
2: और वहीं एक जगह थी चिरमिरी नाम की, तो उस समय वो सरगुजा जिले में आता था। अब वो जिला सरगुजा भी दो भागों में बट गया, एक सरगुजा और दूसरा कोरिया जिला हो गया, तो कोरिया जिले में वो क्षेत्र

0: आज की डेट पे आता है और वहीं चिरमिरी से ही सरस्वती शिशु मंदिर से हम लोगों की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई और उसके बाद फिर मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गया था।
1: जी, ये कहाँ तक हुई एजुकेशन आपकी?
0: जी, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब मैं आया तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तीन विषयों में था मेरा, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास और दर्शन शास्त्र। और जो स्नातकोत्तर मैंने किया तो वो प्राचीन इतिहास विषय में मैंने किया है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, दिस वाज माय सब्जेक्ट। और हिस्ट्री से ही मेरा जेआरएफ भी था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैंने क्वालिफाई किया था, मैं पीएचडी अपनी कर रहा था, लेकिन उसी बीच में भारतीय डाक सेवा में मेरा रिकमेंडेशन हो गया तो पीएचडी जो है थोड़ा बीच में छूट गई। पर इस समय वर्तमान में मैं पुनः, चूंकि मेरी वो पीएचडी की लालसा बनी हुई थी, तो मैंने आईआईएम लखनऊ से पीएचडी में अभी दाखिला लिया हुआ है।
1: अच्छा।
0: जो मैं परसों कर रहा हूं। जी।
1: अच्छा, ये बताइए कि इलाहाबाद के लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का हर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की हो या बाकी जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, उनमें अपना सिलेक्शन के लिए इलाहाबाद जाता है। तो क्या ऐसी खास बात देखी आपने इलाहाबाद में, ऐसा क्या है वहाँ?
0: देखिए, दो बातें हैं। एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुआ और देश के जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा नाम था और बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ से हुई हैं, जी एन झा, ए एन झा, फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन। तो एक लंबी श्रृंखला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो चाहे साहित्य का क्षेत्र रहा हो, सिनेमा का क्षेत्र रहा हो, विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, राजनीति का क्षेत्र रहा हो। जैसे राजनीति में भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे माननीय चंद्रशेखर जी जो बलिया से आते थे वो थे, भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे वो थे। तो एक लंबी श्रृंखला थी विश्वविद्यालय में विद्वानों की, वैज्ञानिकों की, राजनीतिज्ञों की, तो हर तरह की प्रतिभा वहाँ निखरी। और इलाहाबाद के बारे में एक बड़ा खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद शहर अब वर्तमान समय में तो हमारी सरकार ने उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया
1: हो गया। जी जी जी।
0: लेकिन जब हम लोग गए थे तब वो इलाहाबाद था और आज भी जो पुराने लोग हैं जब आप उनसे बात करेंगे तो उसे इलाहाबाद के नाम से ही वो बात करते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे प्रोफेसर आर पी त्रिपाठी, एक बार बीबीसी पे उनका इंटरव्यू, मार्क टुली साहब इंटरव्यू उनका ले रहे थे, दैट टाइम आर पी त्रिपाठी साहब लंदन में थे।
1: अच्छा।
0: तो मार्क टुली साहब ने उनसे पूछा कि इलाहाबाद के बारे में आप बताइए कि इलाहाबाद कैसा आपको लगता है। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि देखिए, इलाहाबाद शहर समुद्र में चलने वाले उस जहाज की तरह से है और हम लोग उस जहाज के किनारे उड़ने वाले उस पक्षी की तरह से हैं जो बार बार चाहे जितनी दूरी तय कर लें लेकिन फिर से जाके उसी जहाज पे बैठने का मन करता है। तो इलाहाबाद शहर के बारे में प्रोफेसर आर पी त्रिपाठी साहब ने ये बात कही थी। तो आज भी इलाहाबाद शहर का नाम सुनते ही एक नॉस्टैल्जिया, मतलब ये एक ऐसी इच्छा है कि ऐसा लगता है कि हम फिर से वहां पहुंचे। और चूंकि हम लोगों का तो पूरा जो युवावस्था का काल था वो उसी शहर में गुजरा, उसी शहर ने लिखना सिखाया, उसी शहर ने बोलना सिखाया, उसी शहर ने अभिव्यक्ति दी, उसी शहर ने यहां तक पहुंचाया, तो उस शहर का हमारा जो व्यक्तित्व है उसको सेव करने में, उसको एक दिशा देने में उस शहर का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए उस शहर को भूलना एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि आप अपनी माँ को भूल गए, आप अपने पिता को भूल गए, कुछ उस तरह का, कि आप अपनी जन्मदात्री को ही भूल जाएं, उस तरह की बात होगी। तो इसलिए इलाहाबाद शहर को भूल पाना असंभव है।
1: निश्चित रूप से हर हिंदुस्तानी का, हर विद्यार्थी का एक सपना होता है कि उसकी शिक्षा जो है वो इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं,
0: आप जानते होंगे उसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के रूप में भी जाना जाता है।
1: जी जी।
0: आज भी हम लोग अगर कैंपस में घुसते हैं तो मन पूरा रोमांचित हो उठता है कि ये वही जगह थी जहाँ से हमने सब कुछ पाया। जी,
1: वो यादें आज भी संजोए हैं आप।
0: जी जी।
1: अच्छा, इस दौरान आपके किसी कोई साहित्यिक हस्ताक्षर से, किसी कवियों से, किसी बड़े शख्सियत से आपकी मुलाकात भी हुई इस दौरान आपकी वहाँ
0: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? देखिए, उस समय चूंकि हम लोगों का कुल फोकस होता था पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई के क्रम में बड़े बड़े जो हमारा जो जैसे एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट था या फिलोसफी डिपार्टमेंट था, तो जो बड़े स्कॉलर्स थे उनसे अक्सर करके, अब फिलोसफी डिपार्टमेंट में डी एन द्विवेदी एक बड़ा नाम हुआ करता था, जैसे एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था तो हम लोगों के प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर बी डी मिश्रा साहब थे, या हमारी एक टीचर थी जो हम लोगों को पैलियोग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ाती थी, प्रोफेसर अनामिका राय थी। तो ऐसे मतलब इतिहासकारों से, दार्शनिकों से इतनी मुलाकातें हुई हैं और उस समय चूंकि हम लोग विद्यार्थी थे

0: तो वो अवसर जैसे कभी कहीं कोई कवि सम्मेलन या मुशायरा या कुछ उस तरह से हो रहा है तो हम लोग भीड़ का हिस्सा होते थे, उधर से बैठ के देखते थे, तब मंच साझा करने का कोई अवसर नहीं था। तो इस रूप में इलाहाबाद का जीवन जो है काफी हद तक निकला।
1: अच्छा, आप जब भारतीय डाक सेवा में पहली बार जब आपकी नियुक्ति हुई, वो कौन सा शहर था, कौन सी जगह थी जहां आपकी पोस्टिंग हुई?
0: देखिए, भारतीय डाक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जितनी नौकरियां दी जाती हैं उसमें एक नौकरी ये भी है, भारतीय डाक सेवा। और भारतीय डाक सेवा में रिकमेंडेशन के बाद हम लोगों का जो स्टाफ कॉलेज है जहां हमारी ट्रेनिंग होती है वो गाजियाबाद में है, पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद के नाम से हम उसे जानते हैं। पोस्टल स्टाफ कॉलेज में आने के पहले हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स होता है जो मसूरी में होता है, कॉमन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक कॉमन आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे फाउंडेशन कोर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें लगभग यूपीएससी द्वारा ऑफर की जाने वाली 18-20 नौकरियां हैं, उन सारी नौकरियों के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, वो आते हैं। तो वहां से करने के बाद सबसे पहले तो मैं आ गया था वहीं गाजियाबाद, और गाजियाबाद से जो ट्रेनिंग हुई फिर वो कई शहरों में हुई। तो एज ए ट्रेनी मैं हैदराबाद भी ट्रेनिंग किया हूँ, हरियाणा में मैंने ट्रेनिंग की है, और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन के लिए मैं अपने पुराने शहर इलाहाबाद में भी अपनी ट्रेनिंग किया।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो इन 3-4 जगहों पे मिला करके ट्रेनिंग हुई मेरी, और फिर उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी कानपुर शहर में हुई थी। तो मैंने भारतीय डाक सेवा अधिकारी
1: की शुरुआत वो कानपुर से। अच्छा, पढ़ाई के दौरान हमने ये देखा कि ज्यादातर विद्यार्थी रेडियो का सहारा लेते थे, गाना सुन रहे हैं, गाना चल रहा है और इधर पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में भी कुछ इस तरह का रहा है क्या?
0: हाँ, हम लोगों के लाइफ में था, और मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा मैं मतलब पैसा इकट्ठा करके उस समय करीब 550 की एक रेडियो मैंने खरीदी थी। शाम को बीबीसी का समाचार आता था 7:40 पे।
1: जी जी जी।
0: वो हम लोग नियमित रूप से 1 घंटे का कार्यक्रम होता था जिसे सुनते थे। तो उससे जो देश विदेश की खबरें थी, जो एक विश्लेषण करने की क्षमता थी, उसका विकास होता था बच्चों के, उसमें एक अप्रोच आपका डेवलप होता था बीबीसी के समाचार सुनने से। और जैसा आपने फरमाया, तो निश्चित रूप से जब भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता था या पढ़ाई का मन नहीं, तो फिर हम लोग रेडियो में गाने लगा करके और जो पुराने गाने होते थे वो सुनना बड़ा पसंद करते थे हम लोग।
1: अच्छा, कोई गाना ऐसा बताएं जो आपको अभी भी याद हो और जो आपकी पसंदों में भी है और यादों में भी है।
0: देखिए, पुराना तो गाना, जैसे मैंने बताया कि मैं पूर्वांचल के जिले से हूँ, तो एक भोजपुरी में मूवी आई थी विदेशिया नाम से।
1: जी जी जी।
0: उसका एक बहुत पुराना गाना है जिसे महेंद्र कपूर साहब ने गाया है, हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा अपना बसेरे परदेश।
1: क्या बात है।
0: तो ये गाना जो है मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं इसे सुनना।
1: तो आप कहें तो फिर अपने सुनने वालों को
0: जी,
1: ये गाना
0: बिल्कुल सुनवाएं।
1: लीजिए, गाना सुनिए दोस्तों।

0: ये बहुत बड़ी बात है कि यूपीएससी की परीक्षा के बाद भारतीय डाक सेवा में आपकी सेवा की शुरुआत हुई, तो जाहिर से बात है तमाम चैलेंजेस रहे होंगे। उस दौरान की जो वर्किंग थी, आप जब पहली बार गए उस वक्त अंदाजा नहीं होता है तमाम तरह के, एक जो आखिरी आपके विभाग का बंदा है उससे लेकर के पूरे स्टाफ को मैनेज करना बड़ा कठिन कार्य था
1: जी,
0: तो कैसे आपने सबको मैनेज किया?
1: देखिए, 2 साल प्रोबेशन के दरमियान हम लोग काफी कुछ चीजें सीख जाते हैं, लेकिन एक हिंदी का बड़ा पुराना मुहावरा है, आप जानते होंगे, कहा जाता है कि बिना मरे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठते हैं तब तक आपको चीजों की समझ नहीं होती है। आपको अपने दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, और कोई भी ऐसी पत्रावली अगर आ रही है, कोई भी इस तरह का विषय आया जिस पे आपको निर्णय लेना है, और जैसे कोई कर्मचारी बड़ा इसमें है कि सर इसे अभी करना है, तुरंत ही भेजना है, तो उस तरह की पत्रावलियों में निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा अपने को होल्ड कर लेना चाहिए। उसे आराम से देखिए, आराम से करिए, समझ के। और हर व्यक्ति, आप जो भी सिस्टम में है, जो भी किसी भी विभाग में है, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी निर्णय में। आप देखेंगे कि सामूहिक जो निर्णय है, कोई भी निर्णय हुआ तो उसमें कई लोग शामिल होते हैं उस निर्णय की प्रक्रिया में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके पास एकदम एब्रप्ट तरीके से एकदम गलत आ जाएगा या कोई वैसा उस तरह का प्रोड्यूस कर देगा कि आप जो है, तो चूंकि सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी, इसलिए वो दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप हमेशा ये मान के चलिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता है, लोग करते क्या है कि अपने मिलने के दरवाजे, मिलने की जो चैनल्स हैं उसको बंद कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए किसी भी अधिकारी को। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों को सुनेंगे, वो चाहे कर्मचारी डी स्तर का हो, सी स्तर का हो, बी स्तर का हो, या यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कॉमन मैन आता है, आप किसी भी मिलने वाले को उसकी बात को फीडबैक के रूप में लीजिए। जब उसकी बात आप सुनेंगे और समझेंगे, तभी निश्चित रूप से आप उसके सम्यक समाधान की ओर पहुंच पाएंगे।
0: आपने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय डाक सेवा में अपनी नौकरी की शुरुआत की, कानपुर से आपकी नौकरी की शुरुआत हुई। जाहिर सी बात है एक अच्छी खासी नौकरी है, समाज में उसका बड़ा रुतबा है, एक रुआब है। माँ बाप सोचते होंगे कि भाई लड़का बड़े अच्छे पद पर आ गया है, जाहिर सी बात है चिंता होती है कि शादी कर ली जाए, विवाह कर दिया जाए इसका
1: जी।
0: तो उस वक्त क्या सीन रहा, माता पिता की तरफ से कोई प्रस्ताव आया या आपके मन में कोई ऐसा ख्याल था?
1: देखिए, शादी विवाह को लेकर के शुरू में तो मेरे दिमाग में था कि विवाह नहीं करना है। अच्छा। प्रारंभिक जब मैं तैयारी शुरू किया था, और इनफैक्ट अच्छा। मैंने जीवन में पहला इंटरव्यू यूपीएससी का ही दिया, 2000 में मैंने पहला इंटरव्यू यूपीएससी का दिया, तो उस समय मेरे दिमाग में ये चलता था कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो शादी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि लगातार मैं इंटरव्यू दे रहा था, रिजल्ट में मतलब हर बार रिजल्ट जो है अनसक्सेसफुल का हो जाता, तो तब हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो जब 4th अटेम्प्ट हुआ मेरा, उसके पहले हमारी जो अभी वर्तमान में पत्नी है वो भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही, और वो वहीं से, वो भी PhD कर रही थी। सिलेक्शन के बाद चूंकि मेरा प्रीवियस कमिटमेंट था, तो जो प्रीवियस कमिटमेंट था वही मैंने अपने अभिभावकों के सामने ये प्रस्ताव रखा, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, तो मैंने बिना किसी डाउरी के, बिना किसी, लोग तो बातें करते हैं ना कि हम दहेज नहीं लेना चाहिए या नहीं ले।

0: और तो मैंने उसे साबित किया है, मैंने किसी तरह के बिना किसी डाउरी और इसके जो मेरा प्रीवियस कमिटमेंट था उसी शादी को, और हमारे अभिभावकों को भी उस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे पिताजी ने बड़ा ही सहज तरीके से इस बात को स्वीकार किया, तो शादी हुई। आज दो बच्चे हैं मेरे, दोनों पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा 12th कर चुका है, छोटा बेटा अभी 9th में है।
1: जी देखिए, परिवार की धुरी हैं आप, परिवार को संगठित रूप से रखना, परिवार को खुशहाल रखना एक पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें घर की जो माता है, घर की जो पत्नी है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और वैसे ही डाक विभाग, आप ये देखिए कोई घर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में क्या बल्कि पूरे विश्व में, हर आदमी कुछ न कुछ सुबह इंतजार करता है। उस जमाने में तो अलावा डाक विभाग के कोई ऐसे और माध्यम थे भी नहीं कि पत्र आ रहे हैं, या टेलीफोन का जमाना भी कम था, कभी कभी कुछ कुछ हुआ करते थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डाक विभाग की सबसे बड़ी भूमिका क्या है?
0: देखिए, डाक विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आप ये समझिए कि 170 वर्षों से ज्यादा समय से ये विभाग सेवा दे रहा है, और ये एक सेवा विभाग है। सेवा कैसी करते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि उस दौर में कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन होता
1: जी,
0: था
1: जी।
0: और कम्युनिकेशन के साधन के साथ साथ इसमें जैसे जो छोटे निवेशक थे, जो छोटी बचत करने वाले लोग थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट पे 1,65,000 करीब डाकघर हैं पूरे देश में, जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और इन 1,65,000 डाकघरों में लगभग 90% जो डाकघर हैं वो रूरल एरिया में हैं। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई एक विभाग अपनी सच्ची सेवा दे रहा है तो वो डाक विभाग है। और डाक विभाग का जो डाकिया था उसने ना केवल सेवा दी है, बल्कि आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे उसने सामाजिक आर्थिक क्रांति करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है डाकिया ने। कैसे, आपको याद होगा कि पहले जब पत्र आया करते थे तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे वो कहते थे कि अरे भैया पढ़ के सुना दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो डाकिया ये बात कहता था कि जो आप हमको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए कि आपका पढ़ के मैं सुना दूं, तो आपके इस पत्र में क्या क्या लिखा होगा मैं भी जानूंगा,
1: मैं भी जान जाऊंगा,
0: तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ लिख लेते हैं। तो एक तरीके से उसने शिक्षा को प्रमोट किया, और वो जैसे हमारा जो विभाग है और आम आदमी के बीच सबसे बड़ा इंटरफेस हमारा डाकिया है। सिर्फ इस बात को उसने प्रमोट नहीं किया, उसने सेविंग बैंक, किसी का आरडी का खाता खुलना है, किसी का सेविंग बैंक का खाता खुलना है, ठीक है, किसी का आज की डेट पे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलना है, किसी को NSC करना है, किसी को KVP करना है, तो डाकिया न केवल उस सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन का माध्यम बना, न केवल उसने शिक्षा को प्रमोट किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी उसने भूमिका निभाई। इसलिए हमारा जो विभाग है वो सेवा विभाग है, और लगातार अपनी सेवा के माध्यम से देश के नागरिकों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है।
1: अच्छा, डाक विभाग जो है इतना विश्वास कैसे कर लेता है जो आम जनता है? सुनील राय
0: जी,
1: आपके डाक विभाग में इतने वर्षों से आपने एक विश्वास अर्जित किया है, जीता है
0: जी।
1: इसका मूल कारण क्या है?
0: देखिए, इसका मूल कारण ये है कि हमारे यहाँ जैसे आप आर्थिक मामलों में, आप ऐसा नहीं है, यहाँ 1 रुपए की भी अगर चोरी किसी कर्मचारी ने की, किसी सपोज करिए कि कोई खाता धारक है और आपने गलती से भी कुछ उसमें इधर उधर हेर फेर करने का प्रयास किया, तो वो निश्चित रूप से उसे 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, 3 हफ्ता लगे, महीने दिन लगे, वो पकड़ा जाएगा और लोग उसके लिए दंडित होते हैं, आर्थिक रूप से दंडित होते हैं, बहुत बार तो लोगों की सेवाएं तक चली जाती हैं। तो इसलिए कर्मचारी उस तरह की हिम्मत करने से पहले डरता है, तो एक जनता में ये विश्वास का माहौल है। और दूसरी बात, अगर किसी कर्मचारी ने किया तो उसमें जनता की कोई गलती नहीं, जैसे हम लोगों के पास भी केसेज आते हैं तो जो केस एकदम जेन्युइन है, जो निवेश हुआ है, वो चाहे जितना बड़ा कोई गबन का मामला आ जाए या कुछ, लेकिन जनता प्रभावित नहीं होती, हम वो भुगतान जनता का करते ही करते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ पता नहीं ये स्थिति क्या रहती है, वो ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन सरकार में अब जैसे मैं मेल की बात कर रहा हूँ, आज की डेट पे आप चले जाइए लखनऊ GPO में, चले जाइए चौक में, चले जाइए किसी और पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, तो आपने एक कंसाइनमेंट बुक किया, सपोज करिए कि आपने स्पीड पोस्ट बुक कर दिया और आप चाहते हैं कि ये स्पीड पोस्ट यहाँ से दिल्ली चला जाए, कलकत्ता चला जाए, बेंगलोर चला, आपने बुक किया। बुक करने के बाद अगर आप ये कहेंगे कि ये आर्टिकल मुझे वापस चाहिए, हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि एक बार जब आपने कंसाइनमेंट बुक कर दिया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई, वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, उसे कंसर्न जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक ही शर्त पे वापस दे सकते हैं कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि मुझे ये पत्र वापस चाहिए, गलती से इसमें ये कंटेंट चला गया है।

0: या इस तरह की बात
1: जी,
0: हो
1: जी,
0: गई है,
1: जी, जी,
0: आप अपनी गलती स्वीकार करेंगे तब हम उसे, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। और प्लस कहीं भी कोई भी आर्टिकल आपने बुक किया तो वो इतने पॉइंट्स पे स्कैन होता है, इतने पॉइंट्स पे उसकी एंट्री होती है कि उसके मिस होने का चांस है ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि जीरो एरर सिस्टम है हमारा। आप कोई भी कंसाइनमेंट बुक किए वो कंसर्न डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये जो काम करने का तरीका है इसने लोगों में एक अद्भुत विश्वास विभाग के प्रति पैदा किया है।
1: सुनील जी, आपने जिक्र किया कि एक जो डाकिया होता है या डाक विभाग का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो एक नई क्रांति को भी जन्म देता है शिक्षा के लिए, खासतौर से आपने जिक्र किया। आकाशवाणी का भी एक प्रयास होता है कि शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन के जरिए अपनी आम जनता जो कि आखिरी पायदान में खड़ा है वहां तक आकाशवाणी की आवाज पहुंचती है अपने गीतों के माध्यम से। अपने तमाम विभिन्न जो कार्यक्रम हम लोग तैयार करते हैं उसके माध्यम से आकाशवाणी सौभाग्य से 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इस 90 वर्षों की यात्रा को, जाहिर सी बात आपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना है, आकाशवाणी में कई बार आप आई भी हैं और उसने निश्चित रूप से एक नई क्रांति को जन्म भी दिया है, इस 90 सालों के सफर को आप किस रूप में देखते हैं?
0: देखिए, आकाशवाणी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपने स्थापना के समय से। जैसा आपने बताया कि 90 वर्षों से आप जो भी सकारात्मक संदेश देते हैं यहाँ से, आपके यहाँ जो भी कलाकार आते हैं, जो भी विद्वान आते हैं, मैं अभी आपकी गैलरी से घुस रहा था तो मैंने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिराक गोरखपुरी, उसके बाद बेगम अख्तर, इस तरह की तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मैंने एक स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तस्वीरें सर इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि ये लोग कभी ना कभी यहाँ आए हैं और इन्होंने अपने कार्यक्रम दिए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए इन लोगों को पढ़ना, इन लोगों को समझना बड़ा आवश्यक है। और अगर वो यहाँ आकर के आपके माध्यम से संदेश उनका प्रसारित हो रहा है, प्रचारित हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से एक बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में आकाशवाणी का जो प्रयास है, जो आकाशवाणी का योगदान है, वो सराहनीय है।
1: अच्छा, अगर हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट कहते हैं, डाक विभाग कहते हैं
0: जी,
1: तो एक पुराने दौर की एक तस्वीर दिमाग में रहती है
0: जी।
1: आज जमाना बदल गया, तकनीकी बदल गई है, तो डाक विभाग कैसे अपने आप को नई तकनीक के साथ जोड़ रहा है?
0: देखिए, डाक विभाग जोड़ नहीं रहा है, डाक विभाग ऑलरेडी जुड़ चुका है। ये जैसा आपने कहा कि एक पुरानी इमेज और वैसा उभरता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इस वर्तमान सरकार ने एक व्यवस्था शुरू की, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे सपोज करिए कि आज की डेट पे आपका कोई खाता है और चेन्नई में है, आपने चेन्नई में एक अकाउंट खोला, वो अकाउंट बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड है। अब आप ये चाहते हैं कि लखनऊ के किसी, सपोज करिए कि मलिहाबाद के किसी गांव में बैठ करके आप भुगतान लेना चाहते हैं, तो हमारा पोस्टमैन आपके डोर स्टेप पे जाएगा और आपका जो खाता है उसको कोई विड्रॉल फॉर्म नहीं चाहिए, आपका अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, आपका सिग्नेचर नहीं चाहिए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। वो पोस्टमैन आपके घर पे जाएगा और एक डिवाइस लेकर के वो आपके अंगूठे से आपके अकाउंट को बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट करेगा और आपके डोर स्टेप पे 10,000 रुपए आपको डिलीवर कर सकता है। तो ये छोटी मोटी सुविधा नहीं है। हम लोग शहरी जीवन में हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक कार्ड है, हम कहीं से भी एटीएम स्वाइप कर लिए, पीओएस मशीन पे पेमेंट कर दिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है। आज की डेट पे कोई व्यक्ति घर पे बैठे हुए, घर पे बैठ करके आप आराम से, सपोज करिए कि आर्टिकल बुक करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो फैसिलिटी भी डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। और हमारा एक व्यक्ति जाएगा, उसको आपके प्रिमाइस से कलेक्ट कर लेगा। आप एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने जो पेंशनधारी हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट उनको बना करके और हर साल देना होता था पेंशन के लिए, उन्हें देना, ये बात प्रमाणित करनी होती थी कि मैं जीवित हूँ, और वो अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए कंसर्न विभाग को जाते थे। आज की डेट पे 70 रुपए मात्र दे करके आपके डोर स्टेप पे पोस्टमैन जाएगा और वो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करता है। वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाएगा, एक एनआईसी को चला जाएगा और एक हमारे पास रहता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। 70 रुपए आज की डेट पे आप अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करेंगे तो हो सकता है एक बार आने जाने का किराया हो जाए। तो इससे मतलब बेहतरीन सेवा मुझे नहीं लगता कि आज की डेट पे कोई उपलब्ध है, और विभाग इसे अपने नागरिकों को प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग इसे बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पूरे लखनऊ परिक्षेत्र में प्रदान कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से इससे जनता की न केवल सेवा हो रही है बल्कि उसको सुविधा भी प्राप्त हो रही है सही तरीके से। अच्छा, जब आप दिन भर की थकान से कार्यालय से वापस घर जाते हैं
0: जी,
1: तो जब आप अकेले होते, तन्हा होते हैं, तो तब आप क्या करते हैं?
0: मैं आज भी पुराने गाने सुनना पसंद करता हूँ।

0: अच्छा
1: तो जब भी मुझे मौका मिलता है
0: अच्छा
1: तो मैं निश्चित रूप से, मुझे किशोर कुमार, लता मंगेशकर,
0: अच्छा
1: आर डी बर्मन साहब, हाँ मतलब ये पुराने गाने मैं आज भी सुनता हूँ।
0: अच्छा कोई गीत बताएं जो हमारे सुनने वालों तक हम उनको पहुंचा सकें।
1: एक फिल्म आई थी आंधी, मुझे जो अभी ध्यान आ रहा है,
0: बहुत सुपरहिट रही है। जी जी,
1: तेरे बिना जिंदगी से कोई सिखवा तो नहीं,
0: क्या बात है।
1: ये गाना मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है,
0: तो आप कहें तो सुनने वालों तक पहुंचा जाए।
1: बिल्कुल सुनवाए।

0: दोस्तों आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रद्धेय सुनील कुमार राय साहब, जो कि भारतीय डाक सेवा के लखनऊ परिक्षेत्र के पीएमजी है, यानी कि पोस्ट मास्टर जनरल हैं। सुनील जी, समाज में रह करके इंसान को तरह तरह के झंझावातों से भी जूझना है, क्योंकि पहले हम व्यक्ति हैं, उसके बाद फिर हमारा परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र प्रथम की बात है, राष्ट्र की सेवा पहले है, उसके बाद हमारा परिवार भी सुरक्षित रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आपको लगता है कि आज भी लोग इस डिजिटल युग में, इस व्हाट्सएप की दुनिया में, इस सोशल मीडिया के दौर में चिट्ठियां लिखते हैं, लोग चिट्ठियां लिखना भूल गए हैं, आपको लगता है कि आज भी उसकी खुशबू जिंदा है?
1: जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से जिंदा है। मैं आपके माध्यम से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो पर्सनल लेटर्स होते थे, जो व्यक्तिगत पत्र होते थे, जो आपको ध्यान होगा, हमें भी ध्यान है कि हम लोग जाते थे, अंतरदेशी लेकर के आते थे, पोस्ट कार्ड लेकर के आते थे, और जो पत्र आया होता था उसका रिप्लाई पैरावाइज बनता था।
0: जी जी जी।
1: और वो शुरू होता था, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते। उन पत्रों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसका एक नकारात्मक पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। ये पत्र जो बच्चे नहीं, ये नई पीढ़ी को सिखाना चाहिए, नई पीढ़ी को इन पत्रों को लिखवाना चाहिए। उसके फायदे क्या हैं? देखिए, वो पत्र जो थे ना, वो इमोशंस डिलीवर करते थे। वो पत्र जो है बच्चों की कैलीग्राफी इम्प्रूव करते थे। वो पत्र बच्चों की अभिव्यक्ति मजबूत करते थे। वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन आप यदि इससे हट करके बिजनेस मेल देखें, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 करोड़ आर्टिकल पर मंथ इंडिया पोस्ट केवल स्पीड पोस्ट के बुक करता है। मैं केवल एक डाटा आपको बता रहा हूँ स्पीड पोस्ट के, और उसमें से आज की डेट पे 90 से 95% आर्टिकल ट्रैकेबल है, पॉइंट टू पॉइंट। आपने लखनऊ से बुक किया, और सपोज करिए कि उसे औरंगाबाद में डिलीवर होना है, आपने लखनऊ से बुक किया, उसे नोएडा में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, तो वो पॉइंट टू पॉइंट आपको स्कैन होता है, आपको पता चलेगा। आज की डेट पे अब वो दौर नहीं रहा कि आपने चिट्ठी डाल दिया और करना, आज की डेट पे आपने पोस्ट किया है तो आपको पता चलेगा कि अब आपका आर्टिकल लखनऊ में रिसीव हो गया, अब आपका आर्टिकल नोएडा में पहुंच गया, आप डिलीवरी के लिए आउट हो गया, आप डिलीवर हो गया, और अब उसके बाद फिर आपको मैसेज आएगा कि आपका आर्टिकल डिलीवर कर दिया गया, डिलीवरी अपडेट होती है। तो काफी तकनीक के माध्यम से काफी सारे सुधार लाए गए हैं, और लगातार अभी हम लोगों का जो जोर है वो पार्सल पे, इंटरनेशनल मेल्स पे, कि इन सेवाएं जो ये सेवाएं हैं, इन सेवाओं को भी और बेहतर और मजबूत तरीके से जनता के बीच में लेकर के हम लोग आए है ऑलरेडी, मतलब इनकी गुणवत्ता और बेहतरीन हो और सुधार हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके, ये विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।
0: सुनील जी, जिन बातों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो शहरी रियाज है वहाँ निश्चित रूप से सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष गाँव में बसता है, जहाँ थोड़ा सा अभी शिक्षा की कहीं ना कहीं थोड़ा कमी भी है, लोग समझ नहीं पाते हैं, टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ पाते हैं, सिस्टम में अब डिजिटल की दुनिया है, वो सारे संदेश नहीं पढ़े जा सकते हैं, तो गाँव में आपका डाक विभाग किस तरह से सेवाएं दे रहा है?
1: गाँव में जो हमारा पोस्ट ऑफिसेस 3 तरह के हैं, शाखा डाकघर, उप डाकघर और प्रधान डाकघर या जीपीओ। तो गाँव में जो डाकघर है वो शाखा डाकघर के नाम से जाने जाते हैं, और शाखा डाकघर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं वो हेड करते हैं, लेकिन ब्रांच पोस्ट मास्टर जो हमारा शाखा डाकघर है, वो आप ये समझिए कि गांव के हर व्यक्ति से उसका व्यक्तिगत संबंध होता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे बताया, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ आप ये कहेंगे कि गांव में क्या होता है कि आपकी कोई चिट्ठी आई तो वो होल्ड करके रखता है, आज की डेट पे तो सबके पास वो बता देगा कि भैया फलाना वहां से आपकी एक चिट्ठी आई है, मैं अभी होल्ड करके रखा हुआ हूं। अगर कोई नहीं भी है गाँव में तो वो

0: रोक करके रखेगा और वो जब तक डिलीवर नहीं कर देगा तब तक होल्ड करके
1: तब
0: रखता है।
1: तक होल्ड करके रखता है जी।
0: इतना ही नहीं करता वो बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं इसको आपको ऐसे बता रहा हूं कि अपने जेब से, जैसे कभी किसी ने बताया कि साहब हमारा मनी ऑर्डर चला है और अभी तक आया नहीं, तो कभी कभार अपने जेब से भी आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको 1,000-2,000 रुपए दे दिया, 5,000 रुपए दे दिया कि ठीक है भैया जब आपका मनी ऑर्डर आ जाएगा तो हमारा वापस कर दीजिएगा। तो वो इस तरीके से लोगों की शैक्षणिक और आर्थिक मदद करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो लगभग गांव के हर व्यक्ति से परिचित होता है, उसका जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है वो बेमिसाल है, और अपने विश्वास को बनाए रखते हुए वो विभाग को लगातार नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है।
1: सुनील जी, हमने कई बैंक्स में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखा कि आजकल संगीत का भी सहारा ले रहे हैं, हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, काम चलते जा रहा है
0: जी, जी।
1: वहां पर भीड़ भी हो रही है तो लोगों को बुरा नहीं लगता है
0: जी।
1: तो क्या ऐसा कुछ डाक विभाग भी सोच रहा है कि अपने कार्यालय में कुछ मधुर सा संगीत लगाया जाए?
0: हम लोग करते हैं, पर मुख्य हमारा प्रयास रहता है कि कार्य त्वरित तरीके से हो। जैसे अभी मैं एक छोटा आपको उदाहरण बता रहा हूँ, अभी जीपीओ में हम लोगों ने सुपर आधार सेंटर लगभग 15-20 दिन पहले शुरू कराया। 8 काउंटर सुबह से लेकर शाम तक ऑपरेट होते हैं, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है काउंटर हमारा, और रात के 7-8 बजे तक, जब तक अंतिम व्यक्ति का आधार हम बना नहीं देते, अपडेट नहीं कर देते, तब तक लोग बैठे रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं किया हमने, संडे के दिन भी आधार बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। जैसे आप सपोज करिए कि यहाँ बैठे हैं, पूरे वीक डेज में आपको टाइम नहीं मिल पाया कि आप अपने बच्चे का आधार बनवा पाएं, अपडेट करा पाएं, तो हमने कुछ चुनिंदा डाकघरों में संडे को भी ये सेवा शुरू करा दी है पूरे लखनऊ रीजन में। और जीपीओ में 4 काउंटर सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम के 4 बजे तक संडे को भी काम हो रहा है। तो हम लोगों का कुल फोकस ये है कि अधिक से अधिक काम हो, जनता की सेवा हो, संगीत तो हम लोग घर पे भी आके सुन लेंगे।
1: आज रविवार का दिन है
0: जी।
1: और हो सकता है आपकी इस बात को हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे सुनने वाले बाकायदा बड़े प्यार और शिद्दत के साथ में सुन भी रहे हैं
0: जी।
1: और मधुर संगीत की बात हो रही है तो कोई ऐसा गाना बताइए अगर वो लाइन पर लगे हो तो गाना सुन भी सके।
0: देखिए, लता जी का एक गाया हुआ बड़ा ही अच्छा गाना मुझे लगता है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग,
1: क्या बात,
0: एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं,
1: क्या बात।
0: तो ये गाना बड़ा मेरा पसंदीदा है, अगर इसे आप चाहें तो इसे भी सुनवा सकते हैं।
1: तो दोस्तों, सुनील जी की पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।

0: सुनील जी, जी तो नहीं चाहता कि बातचीत को यहीं रोका जाए, क्योंकि बहुत बेहतरीन और बड़ी सार्थक बात आप अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। मसला चिट्ठी का है, संदेश का है, मसला भावनाओं का है, और कला और संस्कृति का है, शिक्षा का है, सारी जिम्मेदारियां डाक विभाग निभा रहा है। आपके जीवन में कभी कोई मलाल अभी है क्या कि काश ऐसा होता तो?
1: नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड इनफ, जो भी है और जितना भी है ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ बहुत बेहतरीन है। जीवन ऐसे ही चलता रहे, गुजरता रहे, और हम लोग राष्ट्र की सेवा में लगे रहें, और हिंदुस्तान को एक ऐसे देश के रूप में हम विकसित कर पाएं जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात पे गर्व कर सकें कि हमारे पूर्वज एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के गए हैं जो जीने लायक है, खुली हवा में सांस लेने लायक है, एक यहाँ धार्मिक सहिष्णुता का माहौल है, सामाजिक सहिष्णुता का माहौल है, और ऐसा राष्ट्र बने जहाँ एक दूसरे के लिए परस्पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना हो, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो, तो एक उस तरह का राष्ट्र अगर हम बना पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मैंने देखा है कि लगभग हर कर्मचारी हमारा बड़ा ही अपने ईमानदारी से, मेहनत से और पूरी निष्ठा से लोग अपना काम करते हैं, और आपके माध्यम से मैं देखिए नई पीढ़ी को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे APJ कलाम साहब थे, तो आज की जनरेशन, दो बातें मैं बताऊंगा आपको आज की जनरेशन के लिए, चूंकि आपने मुझे बुलाया है कि मैं कैसे रिकमेंडेशन हुआ और क्या हुआ। तो बच्चे आजकल थोड़ा सा डेविएटेड रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता उनके जो सलाह दे रहे हैं वो सही नहीं है, उन्हें लगता है सोशल मीडिया से जो हमें ज्ञान मिल जा रहा है या जो हम इधर उधर से चीजें सीख पा रहे हैं। किसी भी बच्चे के जीवन में माता पिता की बड़ी भूमिका है, पिता और माता ये मात्र ऐसा संबंध है जो बच्चे का कल्याण ये चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर करे। इस रिश्ते के अलावा दुनिया में और कोई नहीं चाहता। जैसे आपने एक मूवी आई थी 3 Idiots, उसमें देखा होगा आमिर खान का एक डायलॉग है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। तो माता पिता किसी भी बच्चे का कभी अहित नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, APJ कलाम साहब ने कहा था कि देखिए सपने खुली आंखों से नहीं देखे जाते, सपने वो नहीं होते हैं जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, और सपने वो भी नहीं होते हैं जो आप मतलब नींद में आप सो रहे हैं, और वो सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो बच्चों को वैसे सपने देखने चाहिए कि उसको अचीव करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अनुशासित जीवन जिएं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ईमानदारी से एक निर्णय लें, उस निर्णय के प्रति निष्ठावान रहें और एकदम कंसिस्टेंट होकर के उसके लिए मेहनत करें, तभी उनका लक्ष्य उनको हासिल हो सकता है। क्योंकि जीवन में निर्णयों का बहुत महत्व होता है। आप मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, उन्होंने जीवन में एक निर्णय लिया, आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, जानकारी है नहीं, ही वॉज सिंपली एन अकाउंटेंट, एक क्लर्क की नौकरी करते थे वो कलकत्ता में, बट ही डिसाइडेड कि मुझे

0: बॉलीवुड चलना है और क्या करना है, अभिनय करना है। आज की दुनिया में अभिनय के बेताज बादशाह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक निर्णय उन्होंने लिया 1915 में कि मुझे हिंदुस्तान चलना है और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़नी है। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो बहुत अच्छे वकील थे दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई लिखाई की थी। वो एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे थे, वो बैरिस्टर थे, गुजरात के व्यापारियों का केस लड़ रहे थे, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे थे। लेकिन उनके साथ जो एक घटना घटी साउथ अफ्रीका में कि उन्हें ट्रेन से धक्का दे करके बाहर कर दिया गया और रात भर स्टेशन पे पड़े रहे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब चलना है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए। 45 वर्ष की उम्र में वो आए, जब वो लौटे थे तो उनकी उम्र 45 वर्ष की थी। आज की डेट पे उनका एक निर्णय, आज महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, उन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में निर्णय का बड़ा महत्व है। आप जो निर्णय लीजिए, बच्चे जो भी निर्णय लें, आज देखिए, अब वो करियर वो नहीं है कि आप दो केवल करियर आपका रह गया कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, ऐसा नहीं है। आप अच्छा खेलते हो, आप अच्छा म्यूजिक बजाते हो, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा तैराकी करते हैं, आप अच्छा नाचते हैं, आप अच्छे धावक हैं, आप अच्छा भाला फेंकते हैं, गोला, व्हाटएवर, इतने सारे करियर्स हैं। आप जहां पे भी हैं एक्सेल करिए, जिस भी जगह हैं अपना बेहतरीन प्रयास करिए, और यदि आप बेहतरीन प्रयास करते हैं, आप शिखर पे पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी पहचान की कोई संकट नहीं है।
1: सुनील जी, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी यादगार मुलाकात रही आज के इस प्रोग्राम में, और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल के सुनने वालों से बातचीत की, सुनने वालों से अपने निजी पलों को साझा किया, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही सुंदर सा संदेश भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे भारतीय डाक सेवा के लखनऊ परिक्षेत्र के PMG यानी पोस्ट मास्टर जनरल श्रद्धेय सुनील कुमार राय साहब। भारतीय डाक विभाग सेवा समर्पण और विश्वास का ऐसा संस्थान है जिसने समय के हर परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी प्रासंगिकता बनाई रखी है। ये विभाग केवल संदेश नहीं पहुंचा बल्कि दिलों को जोड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुरेंद्र राजेश्वरी को अनुमति दीजिए आज के मेहमान कार्यक्रम से। फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार राय जी की सुरेंद्र राजेश्वरी जी से खास बातचीत।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से

0: टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
14: नमस्कार सर। नमस्कार।
15: नमस्कार सर।
13: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
14: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल

0: के आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सेलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कहा भी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे

0: करना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं,

भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों,

इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।

मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों

0: तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे वज़ीर-ए-आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी से मन की बात। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है मन की बात प्रोग्राम का उर्दू तर्जुमा।
3: मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे लोग कौमी मफाद और समाजी भलाई के लिए ऐसी शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जब इनके बारे में सुनते हैं तो हमें एक नई तरगीब मिलती है। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं एथलेटिक्स में मुल्क की एक ऐसी कामयाबी से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबला मुनक्कद हुआ जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में

0: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदरवीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तो बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम ऑल टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी, अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरे प्यारे हिम्मतों, इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, इस मौसम में अपनी सेहत का

रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए और अगर धूप में निकलना जरूरी हो तो एहतियात के साथ निकलिए। इस सिलसिले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जारी करदा हिदायत को भी जरूर याद रखें। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी का मुकाबला करने का एक तरीका कई दफा बावर्ची खाने में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खानों और मशरूबात का अंदाज भी बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगती है और कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी मशरूबात का दौर। देसी मशरूबात से आप भी वाकिफ हैं, अगर आप शुमाली हिंदुस्तान जाएं तो आपको आम पन्ना मिलेगा, कच्चे आम का मज़ा और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ तकरीबन हर खाने की साथी बन जाती है। बिहार, झारखंड और मशरकी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोकण और गोवा में कोकम शरबत और सोल कढ़ी। जनूबी हिंदुस्तान में पानकम, नीरमोर और संबारम, जबकि ओडिशा में बेलपन्ना सिर्फ मशरूबात नहीं बल्कि मकामी सकाफत और रिवायत का हिस्सा है। इन सब में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी नजर आती है। और एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी रसोई से निकली हैं, हमारे खेत खलियान से निकली हैं। इनके पीछे कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं बल्कि नस्लों का तजर्बा और दानाई इसमें शामिल है। आप भी गर्मियों में इन देसी मशरूबात का भरपूर लुत्फ उठाइए। साथियों, गर्मियों के साथ ही घर में एक और चीज का जिक्र शुरू हो जाता है और वो है आम। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर हो जहां गर्मियों में आम का जिक्र न होता हो। हर इलाके का अपना आम, अपना जायका और अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोकण का हापुस अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आम रस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास बात होती है, पकने के बाद भी इसका रंग अक्सर सब्जी रहता है। बिहार का जरदालू अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। जनूबी हिंदुस्तान जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर और उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का स्वर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका जायका भी बदल जाता है। और साथियों, आम का ये सफर गांव से आलमी मंडियों तक पहुंच रहा है। आज मन की बात के जरिए मैं आम की काश्त से वाबस्ता अपने किसान भाई बहनों की तारीफ करूंगा। आप मुल्क की जरिए मीशत के लिए एक आम किसान नहीं, बहुत खास हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मियों के इन दिनों में वैसे तो छुट्टियां होती हैं लेकिन मैं एक ऐसी क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका दाखिला लेने का मन करेगा। साथियों, जरा तस्वीर कीजिए एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हों, नौजवान भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, न कोई बड़ी इमारत, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे दिलचस्प बात वहां क्लास दरिया में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी कोशिश है। केरलम के आलवा में साजी वाला शिरिल नामी एक शख्स ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहा है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैराकी सीख चुके हैं। साजी जी ने माजूर बच्चों को भी तैराकी सिखाई है। इस कोशिश के पीछे एक दर्दनाक वाकया भी छुपा है। चंद साल पहले एक किश्ती हादसे में कई तलबा जान की बाजी हार गए थे। इस वाकये ने साजी को अंदर तक झिझोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि अगर इन बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जातीं। बस यहीं से शुरू हुई उनकी ये मुहिम। साथियों, साजी वाला शेरिल जी की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। खिदमत के लिए हमेशा बड़े वसाइल की जरूरत नहीं होती, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और मुसलसल कोशिश। इसी जज्बे के पल पर हजारों लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। मेरे प्यारे हमवतनों, गुज़श्ता दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का मौका मिला। वहां मैं कई मीटिंगों में शरीक हुआ। इसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने हर हिंदुस्तानी को फख्र से भर दिया। नीदरलैंड में मुनक़द खसूसी तकरीब में चौला दौर की कदीम तांबे की तख्तियां भारत को वापस सौंपी गईं। इस तकरीब में नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। इन तांबे की तख्तियों की वापसी पर मुझे मुल्क

इसे चलते फिरते अस्पताल की तरफ तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को महफूज रखने के खसूसी इंतजाम हैं, ऑक्सीजन की सहूलत है, खसूसी स्ट्रेचर और बचाव के जदीद आलात मौजूद हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन जख्मी हो जाए, नहर में फंस जाए या दरिया से कट जाए तो फौरी तौर पर उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो सिर्फ एक जानवर या एक नस्ल को नहीं बचाते, बल्कि गंगा की हयातियाती तनव्व, पूरे दरियाई माहौलियाती निज़ाम और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुदरत की एक अनमोल मीरास को भी महफूज बनाते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, आप में से बहुत से लोगों की यादें दरियाओं, तालाबों या कुओं के पानी से ज़रूर जुड़ी होंगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे पर खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें पूरी ज़िंदगी दिल में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को महफूज रखने की एक मुतासिर कुंदास्तान उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी की हालत देखकर बहुत अफसरदा होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ सुथरा और जिंदा देखा था, वक्त गुजरने के साथ प्लास्टिक और कचरे से आलूदा हो चुकी थी, गंदगी बढ़ती जा रही थी। जनाब आकाश ने फैसला किया कि वो सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत कुछ बदलने का आज़म। ये नौजवान दरिया में उतरते थे, आबी घास निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक ही दिन में 50 से 60 किलोग्राम तक कचरा निकाला गया। आहिस्ता आहिस्ता मनोरमा नदी का वो हिस्सा दोबारा साफ नजर आने लगा। इस काम ने आसपास के लोगों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कराई और सफाई के बारे में अवामी शऊर में इजाफा हुआ। साथियों, ऐसी ही एक मुतासिर कुन कहानी गोवा से सामने आई है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी एक रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन माशरे के लिए काम करने का उनका जज्बा आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तालाब इलाके में पानी की किल्लत बहुत परेशान करती थी। उन्होंने इस मसले के हल के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे में अहम किरदार अदा किया। इससे कई घरों तक पानी पहुंच सका। जिन खानदानों को रोज पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत साबित हुई। साथ ही गुज़िश्ता महीने मुझे एक बहुत अच्छा तजर्बा हासिल हुआ। इसका ताल्लुक मन की बात से भी है, इसलिए आज मैं इसका जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। तकरीबन 3 दहाइयां पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ नौजवान तलबा भी उनके साथ मौजूद थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी तकरीबन 15 स्कूल चलाती हैं। उनमें चेन्नई का जयगोपाल गाडोया हिंदू विद्यालय खास तौर पर नुमाया है। उनकी उबल वतनी का जज्बा हर हिंदुस्तानी के लिए बाइस तहरीक है। उन्होंने मन की बात से मुतासिर होकर मुल्क के फौजों के लिए ताउन का आज़म किया। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम स्कूलों के तलबा को भी तरगीब दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह हमारे बहादुर फौजों के लिए रोज़ाना 1 रुपया अतिया करें, यानी 1 साल में हर तालिब इन की तरफ से 365 रुपये जमा हुए। इन छोटे छोटे अतिया से तकरीबन 40 लाख रुपये जमा हो गए। गिरिजा मजी ने इस पूरी रकम का चेक मुझे पेश किया। उनसे गुफ्तगू के दौरान मैंने महसूस किया कि मादर वतन भारत के लिए उनकी मोहब्बत और वाबस्तगी कितनी गहरी है। गुज़िश्ता साल ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने क़याम के 50 साल मुकम्मल किए हैं। मुल्क में तालीम और सकाफती विरसे के फ़रोग में इस स्कूल नेटवर्क का किरदार वाकई काबिल तारीफ है। मैं इससे वाबस्ता तमाम अफराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उन तलबा की भी खसूसी सताइश करता हूँ जिन्होंने अपने बहादुर फौजों के लिए ये ताउन पेश किया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तहरीक देता है। कई दफ़ा ऐसे कामों की ज़्यादा तशहीर नहीं होती, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं तो ये यकीन और मजबूत हो जाता है कि मुल्क अपने लोगों की ताकत से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द होने वाली ऐसे मुसबित कोशिशों को ज़रूर देखें। जो लोग माशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनसे सीखिए और अगर मुमकिन हो तो खुद भी किसी नेक काम का हिस्सा बनिए। अगले महीने

0: मन की बात में मजीद ऐसे ही मुतासिर कुन कहानियों के साथ मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात का उर्दू तर्जुमा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
2: हम आकाशवाणी

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने झारखंड के रांची में आयोजित हुए नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन का जिक्र किया। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग आयोजन में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुदविंदर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार ने अलग अलग वर्ग में नए रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री ने इन सभी खिलाड़ियों को कार्यक्रम में बधाई दी। मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने बस्ती जिले के आकाश गुप्ता द्वारा अपने गांव के समीप स्थित मनोरमा नदी की स्वच्छता में किए उनके उल्लेखनीय योगदान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाश गुप्ता के द्वारा किए गए कार्यों ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा और लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस पर बात करते हुए कहा कि जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: नमस्कार, लखनऊ के आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में मैं समरीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूक करना है। तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि अनेक गंभीर और जानलेवा बीमारियों की जड़ है। कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, स्ट्रोक्स और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं
3: का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल
2: विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जिशानुद्दीन अहमद, कैंसर सर्जन, चरक 300 बेड वाली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि तंबाकू हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है।
4: तंबाकू सिर्फ खराबी ही पैदा करता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे ही हम टोबैको को स्मोक करते हैं वो मात्र 10 सेकंड के अंदर दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमें कुछ वक्त के लिए अच्छा लगता है। जैसे वो नाक में जाता है वो नाक की नसों को बंद कर देता है जिससे हमारी सूंघने की और स्मेल करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसी तरह जब वो हार्ट में जाता है, ब्लड में थ्रू जाता है तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड फ्लो कम कर देता है, उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है जो हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पैदा करती है। वही कुछ कण स्मोक का पेट में भी जाता है जिससे पेट में भी दिक्कतें आती हैं।
2: जी रुक साहब, हम इस प्रोग्राम में न सिर्फ आपसे तंबाकू से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी लेंगे बल्कि हमारे कॉलर्स भी इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। हमारे कॉलर्स को हम बता दें वो मैजिकल नंबर जिससे आप हमसे इस प्रोग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, 0522-223-8845-2982377 वो नंबर हैं जिस पर आप हमें फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप हमें fmakashwani@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। पहला कॉलर डॉक्टर साहब हम लेते हैं अपना। हेलो हेलो हेलो, शायद हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई है। जब हम कैंसर की बात करते हैं और तंबाकू निषेध की बात करते हैं तो आपस में इन दोनों का क्या संबंध है या किस प्रकार से ये घातक हो सकता है तंबाकू का सेवन हमारे लिए?
4: मैम, कोई भी चीज़ जो कैंसर पैदा करती है वो एक अल्टीमेटली एक क्रॉनिक इरिटेशन पैदा करती है हमारी बॉडी में। तंबाकू किसी फॉर्म में हो, चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे गुटके के फॉर्म में हो
2: जी,
4: चाहे किसी और फॉर्म में हो, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे जहाँ जहाँ शरीर में बदन में जा रही है वो क्रॉनिक इरिटेशन पैदा कर रही है। अगर हम स्मोक ले रहे हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्रॉनिक इरिटेट कर रही है। टोबैको ले रहे हैं तो गुटके के फॉर्म में, पान मसाले के फॉर्म में मुंह के अंदर इरिटेशन पैदा करी, और ये जब इरिटेशन काफी वक्त तक होती रहती है तो हमारे शरीर के अंदर संरचना थोड़ी सी बदल जाती है और वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है।
2: जैसे कि आपने तंबाकू का जिक्र किया तो गुटखा, खैनी, पान मसाला और भी बहुत सारे ऐसे तंबाकू के उत्पाद हैं जो हमें नुकसान करते हैं। धूम्रपान भी उसी का एक हिस्सा है। ज्यादा खतरनाक क्या है हमारे लिए?
4: खतरनाक तो सारे ही है, वो डिपेंड करता है आप कितनी मात्रा में उसका सेवन कर रहे हैं।
2: अच्छा,
4: हर सिगरेट आप जो पी रहे हैं कम से कम एक मिनट आपका जीवन से वापस ले रही है, कम कर रही है आपका जीवन। उसी तरह गुटखा अगर आप खा रहे हैं तो मुंह के अंदर गंदगी पैदा होती है, सामने वाला देखने वाला आपको पसंद नहीं करता है, बगल में आपके बैठना पसंद नहीं करता है।
2: जी जी।
4: जब आप गुटखा खा के बातें करते हैं, आप जब बातें करते हैं निकलता रहता है, कितना गंदा लगता है। और धीरे धीरे करते मुंह में सिकुड़न आ जाती है, मुंह खुल नहीं पाता, आप नॉर्मल खाना नहीं खा पाते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर को हम ले लेते हैं। हेलो
5: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
2: गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, सवाल पूछिए।
5: संजय तिवारी बोल रहे हैं फ्रॉम लखनऊ।
2: जी जी संजय बताइए।
5: डॉक्टर गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून सर।
5: डॉक्टर हमको ये आपसे पूछना है कि जैसे बहुत लोग मसाला खाते हैं, पान पराग खाते हैं, कोई बहुत लोग सादा भी मसाला खाते हैं तो क्या उससे भी कैंसर होने का कॉज होता है? और दूसरा है कि जैसे बहुत लोग लौंग वोंग डाल के मुंह में सो

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है जैसे

0: रात भर जो है क्या उससे भी कैंसर होता है। और तीसरा एक प्रश्न ये है कि जहाँ तक कैंसर हर तरह के होते हैं, जैसे किडनी का होता है, प्रोस्टेट का होता है, क्या हार्ट रिलेटेड भी कोई कैंसर होते हैं?
1: हार्ट रिलेटेड पहले तो आपको बता दूं, तंबाकू किसी भी तरह हो, चाहे टोबैको फॉर्म में हो, नॉन टोबैको फॉर्म में हो, वो नॉन निकोटीन हो या निकोटीन हो, हर तरह ही नुकसान करता है। जितना ज़्यादा आप मात्रा में लेंगे, जितना आप टोबैको लेंगे, निकोटीन लेंगे, उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। चाहे सादा पान मसाला हो, चाहे पान मसाला नॉर्मल मसाला हो, नुकसान वो ही पैदा करे। कोई ये कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको फ़ायदा करे, सिर्फ ये केमिकल्स का एक का मिक्सचर होता है जो आपको नुकसान पैदा करता है। दूसरी चीज़ आपने बताया लॉन्ग का, मैंने आपको शुरू में बताया कैंसर पैदा होता है क्रॉनिक इरिटेशन से। कोई भी चीज़ को आप लगातार एक चीज़ रगड़ते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और जहाँ तक अपने हार्ट का, हार्ट से कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्मोकिंग या टोबैको से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उल्टा नहीं है
2: जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमने एक लंबे अरसे तक कंज्यूम की है टोबैको और ख़तरा है कि आगे कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या वो ऐसे लक्षण हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो भी, और अगर हमने स्मोकिंग या तंबाकू छोड़ी है तो भी हमें कीनली किस तरह से अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए, लक्षण क्या होते हैं?
1: लक्षण देखिए, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो COPD पैदा कर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पैदा करता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तो जो इन्फेक्शन को साफ करने वाली जो सिलिया होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती हैं, तो इन्फेक्शन बार बार पैदा होता है। तो उससे आपको बार बार खांसी आएंगी, बलगम वाली खांसी आएगी, कभी कभार खून की खांसी भी आ सकती है। उसी तरह अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो मुँह खुलना बंद हो जाएगा, मुँह का जो प्लास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगा, मुँह खुलना कम हो जाएगा, आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, आपका लार बनना कम हो जाएगा, कुछ छाले पैदा हो सकते हैं, और पेट में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। टीबी अगर है आपको हल्का फुल्का तो स्मोकिंग से वो बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आप भूलने लगे, आपका रक्तचाप बढ़ने लगे, ये सारी लक्षण होते हैं कैंसर के।
2: जी डॉक्टर साहब, तंबाकू निषेध के दिन आज हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं अगर आप तंबाकू के कंजम्पशन पर हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि 0522238845 2982377 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwadilakhnau@gmail.com पर। लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: आप जरा नेटवर्क में आके बात करिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, और तो एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। आवाज पहुंच रही है लेकिन सवाल अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है।
1: मेरा सवाल है
0: जी,
1: तो
0: आपने जब पूछा ना कि आपका सवाल है तब आवाज एकदम साफ आई, तो आपने जहां से ये सवाल पूछा है प्लीज उसी लोकेशन में आ जाइए, वहां नेटवर्क है, या पोजीशन फोन की आप ऐसे करके पूछे कि क्लियर आपका सवाल आ पाए।
1: आवाज आई?
0: हाँ जी, आवाज आ गई आपकी, बताइए क्या सवाल है।
1: मेरा सवाल है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं
0: जी,
1: गुटखा खाते हैं, मंजन होता है, फिर मंजन आता है मैम
0: जी जी जी
1: वो करती हैं, तो क्या बच्चे पर भी असर कर सकता है
0: जी? डॉक्टर साहब शायद ये पूछना ये चाह रही हैं कि
2: जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जो गुलमंजन का इस्तेमाल करती हैं, देखिए बच्चा जब संरचना होती है बच्चे की गर्भ में तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, तो सबसे खराब और सेंसिटिव एरिया टाइमिंग होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने, उस समय पे अगर आपने इन चीज़ों का सेवन किया तो इस पे भी कार्सिनोजेंस होते हैं, ये शरीर में जाएंगे आपके खून के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर भी जाएंगे, तो ये बच्चों की संरचना को खराब कर सकता है, हाथ पर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, दिमाग में असर पैदा कर सकता है, बच्चों में काफी सारे विकार आ सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। किसी से प्रकार का गुल मंजन हो चाहे कुछ और गुल हो, आपको उसका सेवन नहीं करना है
0: जी। डॉक्टर साहब इस बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी बताइए।
3: गुड आफ्टरनून
2: गुड आफ्टरनून मैम।
3: सर मेरा सवाल ये है कि जो ये आटा तम्बाकू आती है इसको जैसे सुबह सुबह खाली पेट खाने से क्या कैंसर हो सकता है?
0: खाली पेट खाने से क्या कैंसर होने के चांसेस हैं? इन्होंने कोई स्पेसिफिक तंबाकू के बारे में पूछा है डॉक्टर?
2: मैम खाली पेट लीजिए, भरे पेट लीजिए, किसी भी पेट लीजिए, नुकसान करेगा
0: जी,
2: ठीक है मैम नहीं खाना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर हम जब तंबाकू का सेवन लगातार लंबे अरसे से करते आ रहे हैं और उसके बाद उसे छोड़ते हैं, तो फिर जो समस्याएं आना शुरू होती हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है या इस प्रक्रिया को कैसे आसान किया जा सकता है?
2: जी मैम, जब जो भी व्यक्ति बहुत वक्त तक इसका सेवन करता है तो उसके पे डिपेंडेंट हो जाता है, और एकदम से अगर उसने छोड़ दिया तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो वो कभी नशे में जा सकता है, बेहोश हो सकता है,
0: अच्छा,
2: हाथ पैरों में झंझनी आ सकती है, कपकपी आ सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना होता है और वो आपको कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे, हो सकता है कभी आपको एडमिट भी करें और उसके आपको इलाज बताया जाए।
0: तो प्रॉपर आपको डॉक्टर की देखरेख में
2: ही इलाज लेना है।
0: ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है। हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद आज के मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 0522-223-8845 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं fmakashwadi@gmail.com। टोबैको को कहिए ना, पर हमारी ये जो चर्चा है ये जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड दुबग्गा।

0: पता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM रेनबो लखनऊ में, जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ एंड फिटनेस, और बात हो रही है तंबाकू के दुष्प्रभावों की कि अगर आप सेवन करते हैं तो क्या कुछ शारीरिक दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब बैठे हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपका कोई दोस्त अहबाब या परिवार का कोई सदस्य इस समस्या से जूझ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8845 पर, और इसके अलावा आप हमें मेल भी भेज सकते हैं।

0: fmakashwani@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे एक लिसनर ने ये सवाल पूछा है कि देहात में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तंबाकू खाने से मेरा पेट साफ रहता है और मेरे दांतों में पायरिया भी नहीं होता, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या कुछ नुकसान होते हैं, क्या इस तरह के जो मिथ हैं हमारे जहन में, ये सही हैं या गलत हैं?
1: ये एक पूरी तरह से मिथ्या है। और तंबाकू खाने से बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार तंबाकू मुंह में रखे रहते हैं, उससे ना टार्टर या स्केल्स जमा हो जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा ही रिप्रोडक्शन होता है, नंबर्स उसके बढ़ जाते हैं। नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर अराउंड 100 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन जिन लोग के अंदर टार्टर जम जाता है तो उनके अंदर ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ प्रति ग्राम टाटर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो इतने इन्फेक्शन की वजह से आपको पायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मसूड़े आपके दांतों को छोड़ देते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं, दांतों के बीच में जगह आने लगती है, सुराख हो जाता है बीच बीच में, तो वो नुकसान ही करता है।
0: जी सर, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए आपका, क्या सवाल है?
2: ये जानना था कि तंबाकू से मेन क्या नुकसान होता है?
0: मेन क्या नुकसान होता है?
1: मेन नुकसान तो देखिए, सबसे पहले तो आपने मुंह में खाया, आपके मुंह में गंदगी आई, पेट खराब हुआ आपका, इन्फेक्शन हुआ, ज्यादा वक्त तक खाया तो मुंह खुलना कम हो जाता है, फाइब्रोसिस, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है। आप ढंग से बड़े निवाले नहीं खा सकते, हमेशा छोटे छोटे निवाले खाने पड़ेंगे आपको, अंत में कभी ना कभी कैंसर भी हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो हुई कि तंबाकू से हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा अगर हम तंबाकू छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी आप हमें बताइए, और कितने दिनों में ये फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं?
1: मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही आपने स्मोकिंग छोड़ी, मात्र 10 से 15 मिनट में अंदर आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, जो सीलिया होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जो म्यूकस पैदा करते हैं और गंदगी को आगे बढ़ाते हैं, झाड़ू की तरह काम करते हैं, वो 1 महीने से 2 महीने के अंदर वापस से पैदा होने लगते हैं, जो मर जाते हैं टबैको की वजह से।
0: अच्छा,
1: तो आपकी जो गंदगी होती जल्दी साफ होती है।
0: और ये मरते कितने दिनों में है डॉक्टर साहब? जैसे आपने कंज्यूम की टबैको, तो कितने दिनों में आपका?
1: सर, ये जो सीलिया होते हैं मैम, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेलुलर लेवल पे काम करते हैं ये।
0: अच्छा,
1: तो कुछ मिनटों में कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं ये।
0: ओ, और पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है, आपका फेफड़ा पूरा क्लीन हो जाए अगर आप बहुत ज्यादा आपने स्मोकिंग की है, तो अगर फेफड़ा पूरा क्लीन हो सकता है तो कितना वक्त लगता है?
1: मैम, कुछ चीज ऐसे होती है जो कभी भी क्लीन नहीं हो पाएंगी।
0: अच्छा,
1: कभी भी क्लीन, जो टार जम गया है, जो हैवी मेटल्स जम गए हैं, वो कभी भी साफ नहीं हो पाते हैं।
0: सर्जरी से भी नहीं?
1: इतने सूक्ष्म होते हैं, वो कभी सर्जरी भी नहीं हो सकती है, अंदर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन काफी हद तक ये साफ हो सकता है, लेकिन उसमें लगता है कम से कम 10 साल
0: 10 से 15 साल
1: लगेंगे, तब आप जाके उस रिस्क पे पहुंचेंगे जो एक नॉर्मल आदमी है जिसने कभी भी सिगरेट का सेवन नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट 10 साल लग जाते हैं आपको नॉर्मलाइज होने में। और नॉर्मलाइज का मतलब ये 100% नहीं होता है, 90-95% हम नॉर्मलाइज होते हैं, 100% आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
0: रुक सर, एक कॉलर हमारे साथ और कनेक्ट हुए हैं, और शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं, रुक सर, आपसे जानना चाहेंगे, मुंह के कैंसर ज़्यादातर तंबाकू जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं स्मोक के अलावा, उनके मुंह के कैंसर के मामले जो हैं उनमें क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि अब आप उस घेरे में आ गए हैं जहां आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है?
1: सबसे पहले तो आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है।
0: अच्छा,
1: फिर एक सफेद तरह के चकत्ते मुंह में पैदा हो जाते हैं जो रगड़ने से भी निकलते नहीं, इसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। उसके बाद और खराब आता है एरिथ्रोप्लेकिया, जो लाल कलर के चकत्ते होते वो भी निकलते नहीं है। अल्टीमेटली फिर आपके कभी दांत गिर रहे हैं, दांत ढीले पड़ जा रहे हैं, या एक अल्सर पैदा हो रहा है जो महीने भर तक भी हील नहीं कर रहा है दवाओं के बावजूद, तो ये सिम्टम्स होते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक महेंद्र दीपन करके हमारे पास मैसेज आया है राजस्थान से, पूछते हैं कि मैं कुछ वर्षों से गुटके की लत से परेशान हूँ, मैंने इसे छोड़ने की कई कोशिशें की लेकिन अब स्थिति यह है कि मैं 2 घंटे भी इसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यवहारिक उपाय बताएं जिससे मैं किसी तरह सिर्फ शुरुआती 72 घंटे यानी कि 3 दिन जो है वो निकाल सकूँ, मेरा

0: मानना है कि यदि मैं 72 घंटे पार कर लूंगा तो मैं अपनी इच्छा शक्ति को आगे की लड़ाई से जीत सकता हूँ, इच्छा शक्ति से आगे की लड़ाई जीत सकते हैं।
1: सर सबसे अच्छी बात तो आपने बताई कि आप इच्छा शक्ति रखना चाहते हैं, जब तक आप मन से नहीं छोड़ना चाहेंगे तब तक आप छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसी आप स्थिति आप मुझे बता रहे हैं, इसके लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, वो आपको कुछ दवाएं देंगे, हो सकता है कुछ एक आध दिन दो दिन के लिए एडमिट भी करें, उसी से आप बेहतर हो पाएंगे। फोन पे बताना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आज।
0: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, सवाल पूछिए। हाँ जी, आपका सवाल साफ तौर पर नहीं आया, एक बार फिर से पूछिए।
2: जी हम ये कहना चाहते हैं, जैसे पहले हमारे भाई गुटखा और तम्बाकू सब चीज खा रहे थे, गुटखा तो छूट गया है, तम्बाकू नहीं छूट रही है, इसके लिए क्या किया जाए?
0: गुटखा तो छूट गया डॉक्टर साहब, तंबाकू नहीं छूट रही है, इसके लिए
1: सर,
0: क्या
1: दोनों
0: किया
1: ही भाई बहने हैं गुटखा और तंबाकू। ठीक है, उसका भी आप छोड़ने का छुड़वाई उनसे है, बात करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छे लोगों की संगति में जाइए, ठीक है, योगा करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, बस यही बताऊंगा।
0: यही उपाय हैं जिसके जरिए आप इस तंबाकू के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और सब एक मेल हमारे पास आया है चंद्रमोहन मिश्रा का, लिखते हैं, मैं चंद्रमोहन मिश्रा नौरंगपुर लखीमपुर से, सबसे पहले आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, आज आपसे हमें एक ऐसा सवाल पूछना है जो हर तंबाकू खाने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तंबाकू खाने से मुंह का छोटा होना संभव है या सिर्फ गुटके से होता है, और अगर छोटा होता है तो उसका इलाज क्या है? छोड़ना ही इलाज है मेरे ख्याल से डॉक्टर
1: जी। अभी आप वो जो बता रहे हैं वो OSMF होता है जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है।
0: अच्छा।
1: बार बार जब इरिटेशन होता है तो हमारी जो मुंह की मसल्स होती हैं, टेंडन्स होती हैं, वो फाइब्रोस होने लगती हैं, तो
0: अच्छा।
1: जो उसकी प्लास्टिसिटी होती है, जो लचीलापन होता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे कि मुंह का खुलना बंद हो जाता है। और इसका इलाज या तो कुछ इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग हर महीने महीने पे, छह महीने तक लगाते हैं, उससे कुछ फायदा मिल जाता है, कुछ दवाइयां भी देते हैं उससे फायदा नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता इन सारी उपायों से, उसके बाद एक छोटा ऑपरेशन किया जाता है जिससे कि आपका मुंह खुलना दोबारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने दोबारा खाया तो वापस से बंद हो जाएगा।
0: ओहो, एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, नाम बताइए, अपना जगह का नाम बताइए और सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मुनेश कुमार राज बोल रहे, भानपुर हटोबा जिला लखीमपुर खीरी से। मैम
0: जी, सवाल क्या है आपका?
3: डॉक्टर साहब से सवाल हमारा ये है कि आज के दौर में गुलमंजन के काफी जो है महिलाएं भी बच्चे से लगाकर बूढ़े तक शिकार इसका होने लगे हैं, तो इसका आगे चल के दुष्प्रभाव भी हो सकता है, इसको छुड़ाने के लिए मतलब बचाव से कैसे इससे बचा जा सके बताने की कृपा करें।
1: मुनेश जी, टोबैको किसी भी फॉर्म में ख़राब होता है, चाहे वो गुलमंजन हो, चाहे गुटखा हो, चाहे सादा पान मसाला हो, चाहे पास पास हो, चाहे चुटकी हो, हर तरह से ही ख़राब है। बस इसका सेवन को ही आप रोकथाम करें और जितना अच्छा हो सके, जितनी जल्दी हो सके उसे ख़त्म करें।
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं और किशोरों पर तंबाकू का जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत क्या अधिक गंभीर हो सकता है?
1: गंभीर तो मैम हर चीज़ हर उम्र के लिए ही है।
0: जी जी,
1: ठीक है, लेकिन यह है कि महिलाओं में, किशोरावस्था में लोग दूसरे को दिखाने के लिए काफ़ी बार इस सब चीज़ का सेवन करते हैं कि देखो मैं कितना कूल लग रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो अच्छी चीज़ तो नहीं। अब मैं यही चाहूँगा, ख़राब चीज़ है, बच्चे लोग इसलिए आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई एक आदमी नहीं है जिससे इसका कोई फायदा मिला हो।
0: एग्जैक्टली, कूल लगना है तो आप फिटनेस पर काम करें,
1: फिटनेस पर काम करें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें।
0: जी जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक लेंगे हम कॉमर्शियल ब्रेक और उसके बाद तंबाकू के दुष्प्रभाव पर चर्चा जारी रहेगी।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: 12:55 और 42 सेकेंड। और जैसे कि हमने आज पूरे प्रोग्राम में चर्चा की कि तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव हैं, जिसके जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने दी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया, उनके उपायों के बारे में बताया। जाने इससे पहले डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर कश आपकी सेहत का दुश्मन है
2: जी।
3: आपका आज का संकल्प आपके परिवार का कल सुरक्षित कर सकता है।
2: वाह, बहुत सुंदर बात। और इसी के साथ प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाज़त। आज का लिया गया एक सही निर्णय आपके आने वाले जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। हेल्थ एंड फिटनेस के जरिए हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। अगले अंक में नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, लेंगे आपसे सेहत से जुड़ी जानकारी। धन्यवाद।
4: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ।
4: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इसे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा है कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सोंधी होती है। श्री मोदी ने कहा कि आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व प्रसिद्ध लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से स्थानीय लोगों में विशेष खुशी देखी गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान लोगों ने मन की बात को समाज में सकारात्मक सोच और जनभागीदारी बढ़ाने वाला प्रभावी माध्यम बताया। मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे वीडियो का खंडन किया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट डाक सेवा गिफ्ट योजना के तहत उपहार या इनाम दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है। पीआईबी ने नागरिकों से अपील की कि वो किसी भी संदिग्ध लिंक या वेब पेज पर क्लिक ना करें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, ओटीपी या आधार नंबर कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: 1:10 और मैं हूं आपके साथ समरीन। प्रोग्राम शुरू हो चुका है होटो पे तेरी बात, इसमें आज हम बातें करेंगे।
6: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी के मौजूदा मौसम में बेहद एहतियात बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ज्यादा मकदार में पानी पीने और धूप से बचाव के तरीके इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मियों के साथ साथ आम का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी के लंगड़ा के साथ हर इलाके के आम का जायका अनोखा और उसकी महक सूंधी होती है। उन्होंने कहा कि आम हमारी ज़रई मईशत के लिए भी बहुत खास है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मुहिम के तहत बनाई गई हिंदुस्तान की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें खुसूसी रोल अदा किया है।
7: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है, इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते।
6: वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया।
7: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गए।
6: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप सभी अपने आसपास की जा रही ऐसी कोशिशों को जरूर देखें और जो लोग मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सताइश कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। फर्टिलाइजर के तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एक महीने की खेत बचाओ मुहिम कल से शुरू होगी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इस मुहिम को कौमी मुहिम बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुहिम का खास मकसद फर्टिलाइजर का तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल, मौसम के चैलेंजेस के मद्देनजर किसानों को वक्त पर मशवरा, पंचायत सतह पर किसानों की शराकत दारी और गाँव को बराए रास्त इसकी के फायदे पर मरकूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। जनाब वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और दीगर खसूसी मादनी और एडवांस्ड अशिया का प्रोडक्शन कर रहा है। पूरी रियासत में आज उत्तर प्रदेश मुश्तरका बीएड दाखिला इम्तिहान 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में 72 इजला में कायम 1011 इम्तिहान मराकज पर कुल 4,44,958 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ये इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हो रहा है। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इम्तिहान के मद्देनज़र इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं।

अमन मराकस की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% एडिशनल फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नाफिस करने का फैसला किया है। अगले महीने सार्फीन को अपने बिजली बिल में 10% ज्यादा अदायगी करनी होगी। आज आलमी नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से आलमी सेहत तंजीम के जरिए शुरू की गई खसूसी आलमी पहल का हिस्सा है। इस साल का मौजू है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। और रियासत के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने और बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और आवाम को गर्मी से निजात मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक और बारिश होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 56 अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन अजला में खसूसी तौर से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बरेली, हमीरपुर और महोबा शामिल। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

होटो पे तेरी बात पे मैं समरीन आप सभी का स्वागत करती हूँ. 1:16:29 और आज हम बात करेंगे यादों की. वो यादें हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं, लेकिन कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती. पहली कमाई भी उन्हीं में से एक है. चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, उस कमाई में अपने सपनों की खुशबू होती है, अपनी मेहनत का सुकून होता है और प्राउड होता है आत्मनिर्भर बनने का. आज हम बात करेंगे उस दिन की जब पहली बार आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो आपके हाथ में आई थी, उस एहसास की, उस खुशी की, उस याद की, जिसे याद करके आज भी दिल मुस्कुरा जाता है. जैसे मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी, उस दिन पहले दिन ही 70% सैलरी मैंने ख़त्म कर दी थी लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने में. आपके हाथ में जब आपकी पहली सैलरी आई तो आपने क्या महसूस किया, या उस पहली सैलरी का आपने क्या किया, हमें बताइएगा ज़रूर. और ये बताने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड

0: start reporting.
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
3: 1:24 और 21 सेकंड बात हो रही है होटो पे तेरी बात पे पहली कमाई के बारे में. जब पहली बार आप अपने जो ढेर सारे सपने आपने सजो के रखे थे ना उन 30-31 दिनों में कि सैलरी आएगी तो ये करेंगे उसके बारे में आपको हमें मेल करना है fmakashwadilakhnow@gmail.com पर. बताना है हमें कि आपने पहली सैलरी ले जाकर इमोशनल होकर अपनी माँ के हाथ में रखी थी या फिर उससे कुछ खरीदा था या एक कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे लेना है वो किया था. चले कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं उन्हें शामिल करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी पहली सैलरी का क्या किया था. ओके सुधाकर जी लिखते हैं होटो पे तेरी बात. पहली सैलरी के बारे में मैंने पहली बार महाराष्ट्र शासन के वित्त विभाग में उप कोषागार अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया था और मैंने अपनी पहली सैलरी जो मुझे मिली थी वो थी 12,000 रुपये. और पहली सैलरी अभी तक मेरे को याद है क्योंकि पहले मैं मजदूरी करता था और मजदूरी का हर दिन 7 रुपये मिलता था और अब मैं जून 2023 में रिटायर हुआ हूँ. मैडम दीदी पहली सैलरी में बहुत कुछ ख़रीदा था मैंने और अभी के शायरी में वेजेस कुछ अच्छा अभी की सैलरी में जो है वो कुछ खास मज़ा नहीं आता शायद उनको अब, लेकिन जो पहली सैलरी का जो फील था वो उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है. विजयपाल यादव लिखते हैं दीदी जी आज का विषय तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हमारे मतलब का नहीं है क्योंकि हमारी सैलरी साल में एक बार ही देखने को मिलती है जब गन्ना बिकता है. जब हमें गन्ने का पैसा मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है. साल भर में कोई की गई मेहनत और थकान सब भूल जाते हैं. विजय जी बात हो रही है कि पहली बार सैलरी ज़रूरी नहीं है, जब पहली अर्निंग आपकी आई, जब आपने मान लीजिए पूरा साल खेती की और खेती को जब बेच कर पहली बार आपके हाथ में पैसा आया, याद है आपको वो वक्त? उस बारे में उस मेमोरी को हमारे साथ शेयर करना है तो जल्दी से हमें बताइए कि क्या किया था आपने. रामराज लिखते हैं श्री गणेशाय नमो होटो पे तेरी बात जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से. रामराज राजू भानु शंकर भैया और मधु बजरंगी काका सबसे पहले हमारी तरफ से प्यारी प्यारी बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे. और आपने जो सवाल पूछा है हम समझ नहीं पाए इसलिए हमारी गलती को माफ़ करना और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद. देखिए रामराज जी सवाल ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो उस दौरान कभी हम कोई व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं या फिर खेती करते हैं जिस भी जरिए से हमारे हाथ में जब पहली अर्निंग हमारी आती है हमारा पहला सैलरी कह लीजिए उसको इनकम कह लीजिए आय कह लीजिए आती है तो जब आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ था तो आपने उसका क्या किया था इस बारे में आज हम इस कार्यक्रम होटो पे तेरी बात पे चर्चा कर रहे हैं. मोनू सेठ लिखते हैं सबसे पहली कमाई मैंने अपनी मम्मा जी को दी थी और उससे पहले दिन कमाई से मैंने भगवान का फोटो खरीदा था और कुछ आसपास के लोगों को लड्डू खिलाया था. वाह तो पूरी तरह से आपने खुशी सब में बांटी थी अपनी. और इसके अलावा सुधाकर जाधव जी का हमारे पास मेल आया है. सुधाकर जी ने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए हम इनका इस प्रोग्राम में ये मेल शामिल नहीं कर रहे हैं लेकिन नाम ज़रूर हम बता दे रहे हैं. सुधाकर जी ने हमें मेल भेजा है और अब सुनाते हैं और आपको एक बेहतरीन सा गाना विनोद राठौर की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर गिर रहा

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया।

0: 75 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: होटो पे तेरी बात चल रहा है प्रोग्राम और मैं हूँ आपके साथ समरीन और बात हो रही है कि जो पहली सैलरी आपके हाथ में आई उस दिन को याद करते हुए बताइए क्या किया उस दिन, मम्मी को दिया या फिर अपने शौक पूरे किए या फिर मोहल्ले में मिठाई बांटी। हर पहली अर्निंग के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी तो होती है, संघर्ष होता है, इंतजार

को दिया या फिर अपने शौक पूरे किए या फिर मोहल्ले में मिठाई बांटी, हर पहली अर्निंग के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी तो होती है. संघर्ष होता है, इंतज़ार होता है, मेहनत होती है और ये याद उम्र भर हमारे साथ रहती है. हमारे साथ कई मेल्स जो हैं वो आ चुके हैं, लिसनर्स लगातार हमें मेल्स कर रहे हैं. आइए शामिल करते हैं. पहला मेल रोशनी रावत जी का आया है. इस ब्रेक के बाद लिखती हैं, समरीन दीदी जी आप कैसी हैं, 12 बजे से जुड़े हैं आपके साथ, मैं बहुत खुश हूं आपके आने से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा नाम रोशनी रावत, पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूं. मुझे याद नहीं अपनी पहली सैलरी क्या किया था, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी होता है सब मम्मी को दे देती हूँ, देने के बाद फिर अपने लिए उनसे पैसे मांगती हूँ. हाउ स्वीट. हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी लिखते हैं कि बहन जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ. मैं पहली बार, मुझे जब अपनी पहली सैलरी मिली थी बहुत खुशी हुई थी, अपने घर परिवार के साथ लेकर मैंने ख़रीदारी की थी, मिठाई की, खूब इंजॉय किया था अपनी सैलरी को. मेरे दोस्त हैं कुलदीप उधौली से और आकाश जी मुरारपुर से, और मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो इसी तरह से अगर आपकी भी कोई याद है, मेमोरी है, तो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं. सुधाकर जी लिखते हैं कि होटो पे तेरी बात प्रोग्राम में, मेरी जो आपने टॉपिक लिया है कि पहली सैलरी के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ के पास मैंने अपनी पहली सैलरी दी थी और माँ की आंखों में आंसू भी आ गया था, क्योंकि मेरे माँ बाप मजदूरी करते थे और मैंने भी मजदूरी की है कुछ दिन, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया था. तालिबन सारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम समरीन मैम जी, आज भी अपने पापा को देता हूँ मैं पहली सैलरी. हाउ स्वीट. प्रवीण लिखते हैं, मेरी अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगी तो मैं एटीएम से पूरी सैलरी निकाल कर घर ले आऊंगा. ज्यादातर लोग जो है वो अपने घर में सैलरी दे रहे हैं. वकील अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ आंधी और बारिश हो रही है, हम खुश हैं, और हमारे जितने किसान भाई, वकील अहमद मंसूर कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, एमन नवाब को ये इन्होंने नाम मैंशन किए हैं इन सब के. टॉपिक से रिलेटेड आप मेल भेजें, अदरवाइज मेल शामिल नहीं होगा, सिर्फ नाम शामिल होगा. सुधांशु लिखते हैं, राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ के से कार्यक्रम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है. अच्छा, आप लोग जैसे फ्लो में फ़ोन पे बोलते हैं ना अपना एड्रेस पूरा, वो फ्लो हम लोग का आ गया है. आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में ग्रेजुएशन का छात्र हूँ. सैलरी तो नहीं, परंतु जब मेरी स्कॉलरशिप आई थी तो मैंने अपने घर पर बताया और दोस्तों के साथ पार्टी किया, क्योंकि मेरे दोस्तों की स्कॉलरशिप भी आई थी. ओके. जावेद अख्तर लिखते हैं, गुड आफ्टरनून समरीन बाजी, कार्यक्रम होटो पे तेरी बात में आपकी आवाज़ को सुनकर बहुत ही खुशी मिल रही है. जब हम छोटे थे तब बनारसी साड़ियों का हुनर सीख रहे थे, जब हम पूरी तरह से उसके कारीगर बन गए तो पहली बनारसी साड़ी को तैयार किया और मार्केट में उसे ले जाकर बेच कर जब मुझे पहली सैलरी मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, और मन ही मन सोच रहा था कि इन पैसों से कौन सी चीज़ें घर के लिए लेकर जाएं. तो हमने बच्चों के लिए खिलौने और बाजार से आम लिए और बचे हुए पैसे पापा को दे दिए. रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर. तो आई एम श्योर आप सब कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेट कर रहे होंगे. जिनकी सैलरी अभी आनी है, नहीं मिली है, वो सोच रहे होंगे कि जब सैलरी आएगी तो क्या करना है, और जिन्हें सैलरी मिल चुकी है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपने जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो ज़रूर साझा करें, और हम इसी दौरान आपको सुनाते हैं एक अच्छा सा बेहतरीन सा ट्रैक. बने रहिए हमारे साथ.

संघर्ष मूवी से सोनू निगम की ये आवाज में गीत था जो कि कभी मेरा बहुत पसंदीदा गाना हुआ करता था और ये चंद ऐसे प्रोग्राम है जिसमें हमें ये आज़ादी मिलती है कि हम अपने पसंद के गाने आपको सुनवा सकें और इस आज़ादी का मजा ले सकें। होटो पे तेरी बात प्रोग्राम चल रहा है, मैं हूँ आपके साथ समरीन और आपके मेल्स हमारे आज के टॉपिक पे भर भर के हमारे पास आ रहे हैं। बाबू अंसारी लिखते हैं, एक बार टॉपिक आपको बता देते हैं मेल्स पढ़ने से पहले, आपकी पहली

ली सैलरी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या किया आपने, कितने ख्वाब बुने थे, कितने ख्वाब पूरे कर पाए और कितने अधूरे रह गए। बाबू अंसारी देवकली अहमद बाजार अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम समरीन मैम, कैसी हैं आप। टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अब्बू की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और मैं वहीं पर काम करता हूँ और सीख रहा हूँ। कभी कभी मुझे खर्च करने के लिए पैसे मिल जाते हैं, अब्बू दे देते हैं, लेकिन मैं अभी सैलरी जो है वो पूरी तरीके से वो मुझे नहीं मिल रही है। कभी कभार पैसे मिलते हैं और मैं उन्हें खर्च कर देता हूँ। कोई बात नहीं आगे मिलेगी सैलरी आपको। आनंद कुमार शुक्ला लिखते हैं महमूदाबाद श्यामदासपुर से, मैम नमस्ते, हमने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट टीचर ज्वाइन किया था। पहली सैलरी जब आई तो मैसेज आया, यकीन नहीं हो रहा था कि पैसे सच में आए हैं। फिर एटीएम से निकाला, हाथ में लिया और वो खुशी मैं बता नहीं सकता। फिर सैलरी से रामचरितमानस का पाठ किया था और पूरे गांव में लड्डू बांटे थे, है ना। बहुत ही अमेजिंग और नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जब आपकी अर्निंग में पहला वो वक्त जब आप याद करते हैं जब आपने अपनी सैलरी से खुशियाँ बांटी थी सबके साथ। रोशनी रावत लिखती हैं दीदी गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं और स्पेशली मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। थैंक यू रोशनी, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। रामेश्वर जी लिखते हैं होटो पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, बहन समरीन जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं बहन समरीन को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब बहन समरीन कार्यक्रम में आती हैं तो चार चांद लगा देती हैं। हमने पहली कमाई अपने बच्चों को कपड़ा खरीद कर दिए थे और अब तो मेरी कमाई खेती है, मैं खेती पर निर्भर करता हूँ। मेरा सड़क हादसे में एक पैर खराब हो गया था। अच्छा खेती आप करते हैं तो आप हमें बताएं कि अभी आपकी जो भी फसल है वो तैयार है या अभी आपने बोई है और कैसी रही इस बार की फसल, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो बहुत अनसर्टेन हो गया है, कभी तेज़ धूप तो कभी तेज़ बारिश। आई एम श्योर आपकी इस उम्मीद के साथ कि आपकी फसल जो है वो बेहतरीन खेत में लहलाए और खूब अच्छा आप खेती में भी करें, खूब ज़्यादा कमाएं। आगे लिखते हैं रामेश्वर कटेरिया, उमा कांति कटेरिया, कमलेश कटेरिया, पुत्र बद्धू निशा कटेरिया और प्रज्ञा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया, बेद बाबू कटेरिया, इन सब के नाम ले लीजिएगा प्रोग्राम में। आनंद कुमार शुक्ला लिखते हैं महमूदाबाद श्यामदासपुर से, नमस्ते मैम, आपका मेल मैंने शामिल कर लिया है आनंद जी। महेंद्र देपान लिखते हैं सप्रेम नमस्ते, मैं महेंद्र देपान राजस्थान के ज़िला नागौर से आपका बेहद खास श्रोता हूँ, आपका प्रोग्राम होटो पे तेरी बात सुनकर और आज का विषय पहली कमाई जानकर मेरी अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और आगे लिखते हैं कि साल 2010 की बात है जब मैं 10वीं कक्षा पास करने के बाद पहली बार मुंबई गया था, वहाँ मेहनत की तो मेरी पहले महीने की कमाई 1500 रुपये आई थी। मैंने लगातार 8 महीने तक कड़ी मेहनत की और पैसे जोड़कर जब गांव लौटा तो मेरे पिताजी ने मुझे एक कीपैड वाला मोबाइल लेकर दिया था। आज भी वो मोबाइल मेरे घर पर रखा हुआ है, हालांकि अब वो ख़राब हो चुका है, लेकिन वो फ़ोन मेरे लिए सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि पापा के प्यार और मेरी पहली कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी है। वो मोबाइल आज भी मुझे मेरे संघर्ष भरी शुरुआत की याद दिलाता है। अच्छा ये हमारी और आपकी कॉमन है, मैंने भी अभी आपसे शेयर किया था कि जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैंने उस सैलरी से 70% पैसों से लोगों के लिए गिफ्ट लिया था और उसी में मैंने अपने लिए भी एक गिफ्ट लिया था, वो भी कीपैड वाला फ़ोन था। तो ये मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ और अब बारी है एक बेहतरीन से गीत की।

होटो पे तेरी बात सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त समरीन के साथ. और देखते ही देखते वक्त ख़त्म हो गया है और हमारे जो आज का टॉपिक था यानी कि आपकी पहली सैलरी का आपने क्या किया वो याद हमारे साथ साझा कीजिए. बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किया है, उनके नाम मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. हमारे साथ पहला मेल जो आया था इस प्रोग्राम की शुरुआत में वो आया था 1:09 पर सुधाकर जी का. फिर मोनू सेठ, रामराज, विजयपाल, रोशनी रावत, हिंदुस्तानी, ब्रह्मेश और तालिब अंसारी. इन्होंने टॉपिक से रिलेटेड तो बात नहीं की थी लेकिन मेल किया था. प्रवीण, विजयपाल, वकील अहमद, जावेद अख्तर, महेंद्र दीपान, आनंद कुमार शुक्ला, रामेश्वर, बाबू अंसारी, रोशनी रावत और गुलफशाह सिद्दीकी और शैलेश कुमार, मोहम्मद रिजवान का मेल आया.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है। श्री मोदी ने कहा कि आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाला वीडियो का भी हवाला दिया और उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। और केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल का मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन 3 बजे प्रसारित होगा।

2:09 और पूरे 9 सेकंड. अब आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हॉटमेल शुरू हो चुका है. कुछ यादें तस्वीरों में ही नहीं बसती बल्कि अल्फाजों में भी बसती हैं. वैसे ही कुछ बातें मुलाकातों में नहीं बल्कि खतों किताबत या मेल के जरिए भी होती हैं.

तो ये वही प्रोग्राम है जिसमें आप मेल के जरिए हमसे साझा करते हैं अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी जिंदगी के अनमोल किस्से जो हम आप तक यानी कि दूसरे लिसनर्स तक पहुंचाते हैं। तो तैयार हो जाइए कुछ दिल को छू लेने वाली बातों के लिए, कुछ मुस्कुराती यादों के लिए और कुछ अनकहे जज्बात से हम आपसे रूबरू कराएंगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमसे टू वे कम्युनिकेशन में आते हैं, जहां सिर्फ हम नहीं बोल रहे होते बल्कि आप भी हमसे मुखातिब होते हैं। तो सही वक्त है, आप हमें मेल करना शुरू कर दीजिए fmakashwani@gmail.com पर। और प्रोग्राम से पहले ही आपसे माजरत चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जो स्पेशली हॉट मेल और जो मेल से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं कि हम शामिल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्लीज़ नाराज़गी मत रखिएगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स को हम शामिल करें। नरेश जी लिखते हैं, नमस्कार जी, आपको मान्य योग आरजे जी, दीदी जी प्लीज़ पूरा नाम पढ़िएगा, फिल्म राजपूत से मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ, ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का, और हमारा मेल ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। आपका मेल शामिल हो चुका है। संजय ढिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया और संजय ढिंगिया ने हमें ये मेल किया है। शाहरुन नूर अंसारी लिख रहे हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। आर कुमार लिखते हैं, नमस्कार वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरोड़ा, पंजाबी नाहकर, आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवांकर, निर्मला नवांकर, विशाल नवांकर और सोपान तायरे, इनको इन्होंने इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया है। अनिल वर्मा लिखते हैं, फिल्म कसूर से कोई भी गीत सुनवा दीजिए, सदर बाजार कुरावली से इन्होंने भेजा है। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। अच्छा, इन्होंने गाने की फरमाइश भी मेंशन की है, कसूर मूवी से, जो मेरी रूह को चैन दे। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि जब भी हमें मौका मिले तो हम आपका ये गीत ज़रूर सुनवा दें। अगला मेल हमें भेजा है पूनम गगनेजा ने, लिखती हैं, आपका मेल नहीं ओपन हो रहा है। साई गायकवाड़ लिखते हैं, हॉट मेल सादर करने वाली दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, आप कैसी हो दीदी, फिल्म इससे आप हमें गाना सुना दीजिए, सिंघम से, गीत के बोल हैं साथिया साथिया, गायक श्रेया घोषाल, अजय गोगावले और रेडियो श्रोता संघ कॉलोनी नादेंड महाराज से इन्होंने हमें मेल किया है। हनुमंत शिंदे लिखते हैं, प्रस्तुतकर्ता नमस्कार, शिरटे जिला सांगली, हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, और इन्होंने फरमाइश की है, मैंने प्यार किया मेरे रंग में रंगने वाली। रशीद हुसैन अंसारी लिखते हैं, हॉटमेल प्रोग्राम, प्यारी सिस्टर आरजे, आपको हमारा प्यार भरा आदाब, हॉटमेल प्रोग्राम हमारे दिल की धड़कन बन चुका है, जब इस प्रोग्राम को सुन लें तब खाना नहीं पच, जब तक इस प्रोग्राम को ना सुन लें खाना नहीं पचता है, फिल्म खानदान बोल ये मुलाकात एक बहाना है। मैं जल्दी से मेंशन कर लेती हूँ, आगे ये लिखते हैं, इन नामों को जरूर मेंशन कर दीजिएगा, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरैन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। नवी हसन लिखते हैं, आपको प्यार भरा मेरा नमस्कार, आप खैरियत से हैं, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए और ये नाम जरूर ले लीजिएगा, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद फारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, आपकी बहुत मेहरबानी हो गई मेरा मेल शामिल करने के लिए। और दिलीप रामेकर लिखते हैं, नमस्कार प्रसारक जी, आकाशवाणी लखनऊ, हॉट मेल, फिल्म पत्थर के सनम बोल हैं, कोई नहीं है फिर भी मुझको, अमरावती महाराष्ट्र से मैं ये मेल लिख रहा हूँ। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार का नाम जरूर ले लीजिएगा। सरिता अभिजीत से लिखती हैं, आपकी पसंद का सदाबहार गीत सुनाने का आप कष्ट करें, आदरणीय आर्य जी नमस्कार, वैशाली शैली।

देश गांवकर, प्रिंस एकांश सुमित, कुमार ध्वनि यानी कि परी, इन्होंने शॉर्ट में लिखा है, और मेहरे नगर उमेड़खड़ महाराष्ट्र, अभिजीत, सरिता, प्रणीता और लाडला टुक। नेक्स्ट मेल हमें भेजा है लालगिरी से, प्रोग्राम हॉटमेल पेशकर्ता आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, कोई भी सॉन्ग हमें सुनवा दीजिए। और अब आपकी इस फरमाइश में हम पहला गीत जो शामिल कर रहे हैं वो दिलीप कुमार जी का है, इन्होंने लिखा है, जो जिस भी गीत की इन्होंने फरमाइश की है वो आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

तजुर्बे को आगे तक लोगों तक पहुंचाना, अनुभव को साझा करना बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आगे ये अपनी फिल्म का राज मूवी से मुझे गाना सुनवा दीजिए। और ये गाने की फरमाइश है, ये शहर है अमन का, डेडिकेट करना चाहते हैं संध्या और सुभाषिनी को। बाबू अंसारी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून समरीन मैम, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए, फिल्म सपने सजन के गाने के बोल हैं, ये दुआ है मेरी रब से। नसीम अंसारी, मुन्नान अंसारी, कुलदीप गुप्ता, फैज़ अंसारी, बाबू अंसारी को ये सुनवाना चाहते हैं। रामेश्वर लिखते हैं, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन समरीन जी को सप्रेम नमस्कार, हम भी आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हॉटमेल बराबर सुनते रहते हैं, हमारा भी मेल शामिल कर लीजिए तो मेहरबानी होगी, हमें फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत सुनवा दीजिए। गीत के बोल हैं, मोरे अंग लग जा बाल माँ, प्लीज़ बहन जी ज़रूर सुना दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने रिक्वेस्ट की है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको सुनवा दें, और लेकिन अगर आपका गीत नहीं प्ले हो पाता है तो हमारी भी मुश्किल को आप ये समझें कि एक घंटे का ही वक्त होता है और मेल की संख्या इतनी होती है कि सारे शामिल भी नहीं हो पाते, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन वादा नहीं है। एमन लिखती हैं, हेलो डियर समरीन अपी, आज दोपहर में मेल्स की आई बाढ़ को समेटने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एमन को आइडिया है कि इसमें जो है बाढ़ आती है मेल्स की हॉटमेल पर। जय लिखते हैं, हमारा नंबर कब आएगा जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म झूम बरामर झूम के गीत हैं बोलना हल्के हल्के। अच्छा, ये सारे नाम से मैं वाकिफ हो चुके हैं हम पढ़ते पढ़ते मेल्स। सुरेश नारायण लिखते हैं, खिलते हैं गुल यहाँ मिलके बिछड़ने को, बहुत ही प्यारा गीत है, आपसे अनुरोध है कि आप इसे प्ले कर दीजिए। सहारनपुर से अनु, मोना, अलका, विक्की, आशा, सोनाली, एस के नारंग, गीत सुनवा दीजिए, मैं आपका गीत लिख लेती हूँ और जल्दी ही आपको ये सुनने को भी मिलेगा। और अगला मेल शामिल कर लेते हैं, ये मेल था सुरेश नारंग का। सतीश अनेजा लिखते हैं, नमस्कार सिस्टर जी, वेलकम टू द प्रोग्राम, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन विच एनहांसेस द प्रोग्राम, सॉन्ग पन्ना की तमन्ना है, किशोर लता का ने गाया है और चंडीगढ़ से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा को ये डेडिकेट करना चाहते हैं। और सुर संगम रेडियो श्रोता लिखते हैं, प्रिया आरजे नमस्कार, वीर मगाम गुजरात, अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और फिल्म नाइट इन लंदन, गीत नज़र ना लगे किसी की। और मुजम्मिल अहमद लिखते हैं, प्रोग्राम बहुत खूबसूरत जा रहा है और पेशकश भी लाजवाब है समरीन जी, फिल्म एक नारी दो रूप, दिल का सूना सास तराना ढूंढेगा, देखिए कोशिश पूरी रहेगी, वादा नहीं है जैसे कि मैंने आपसे कहा था। मल्होत्रा टीडी मोहाली, तुमको भी है खबर मुझको भी है पता, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इन्होंने इनके नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। मोहम्मद सादिक खट लिखते हैं, मोहतरमा जी आपको दिल से आदाब, आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत फरमाइश करते हैं, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री। और अब आपकी पसंद का ये ट्रैक राज मूवी से इस गाने की फरमाइश हुई थी आपके रेडियो सेट पर, ये रहा।

0: जाता है
1: तो क्या करूं?
0: कॉल उठाओ फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: कण कण में राम, क्षण क्षण में श्याम, हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन, हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

0: 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।

0: पुष्पांजलि, हर सुबह 6 से 7 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ

0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

2:35 और 51 सेकेंड होटो पे तेरी बात प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त समरीन के साथ. भेज रहे हैं हमें आप वो मेल्स जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, वो बातें जो पॉसिबल नहीं हो पाती और सारे प्रोग्राम्स में, क्योंकि वन वे प्रोग्राम्स ही होते हैं. हम ही बोल रहे होते हैं, हम ही आपके लिए गाने प्ले कर रहे होते हैं, हमारे पसंद के ही गाने होते हैं. लेकिन इस प्रोग्राम में आपको यह आज़ादी मिलती है कि आप हमसे मेल्स के ज़रिए बातचीत भी कर सकते हैं. सुनील पाठक जी ने लिखा है कि प्रस्तुतकर्ता मैडम जी सादर प्रणाम, पंजाब से इन्होंने हमें मेल भेजा है और ये इस प्रोग्राम में नाम लेना चाहते हैं. सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का. मुकेश की आवाज़ में कोई भी गाना सुना दीजिए. होस्ट मैडम जी, हमने 2 बजे भी मैसेज किया था, गया नहीं शायद. अब दूसरा मैसेज भेज रहा हूँ, प्रोग्राम में शामिल कर लीजिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए, कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों के मेल्स जो हैं वो नज़रअंदाज ना हो. संजय ढींगिया लिखते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से. संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नमस्कार जी, प्रोग्राम पसंद आ रहा है. शानदार गीत, लाजवाब प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हमें मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेहर अरोड़ा लिखते हैं पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से. मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, मूवी आंधी तुम आ गए हो नूर आ गया है, मेरा भी पसंदीदा गीत है ये. गुरमीत लिखते हैं मीता साउथ एक्सटेंशन से, इन्होंने हमें ये मेल भेजा है. आगे भी कुछ लिख देते. वारिस अली जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने फ्रॉम द मूवी महल. देवानंद एंड आशा पारिक, एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से इन्होंने हमें यह मेल भेजा है. मोहम्मद सादिक खत्री लिखते हैं आपको दिल से आदाब मोहतरमा जी, आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज है. ना जाने कौन दुआओं में याद करता है, जब मैं डूबने लगता हूँ तो दरिया उछाल देता है. पसंद करता है वैष्णव कॉलोनी संवाद से मोहम्मद सादिक खत्री, रहमान बाबा पान, हाजी कयूम प्रिंस, हाजी अयूब शेरी और इन्होंने आगे हमें मेल भेजा है. अब्दुल गफ्फार ने, प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, आपकी अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए. और नाचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, ज़ियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी. दीपेश वर्मा लिखते हैं ग्राम पीपरलोड सरगावा छत्तीसगढ़ से. दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, फिल्म खुदा गवा, ना तू ना जा मेरे बादशाह, उन्होंने गाने की फरमाइश की है. संदीप मक्कर लिखते हैं फिल्म चांदनी सॉन्ग से तेरे मेरे होठों पे सुनवा दीजिए. ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल साहनी पिंगवा वाला चौक गोराया जालंधर से इन्होंने हमें मेल किया है. अब्दुल गफ्फार लिखते हैं प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब, किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए. ताज मोहम्मद लिखते हैं आदरणीय प्रसारक नमस्कार जी, आप हमारी फरमाइश के किसी भी गीत के साथ, आप हमारी फरमाइश को किसी भी गीत के साथ शामिल कर लीजिए, तहे दिल से शुक्रिया. ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, राही महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है. दिलीप रामेश्वर, इन्होंने हमें मेल कहां से किया है, महाराष्ट्र से, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है जो हम अभी आपके साथ साझा भी करेंगे. सतीश अनेजा लिखते हैं नमस्कार सिस्टर जी, वेलकम टू द प्रोग्राम, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन विच एनहांसेस द प्रोग्राम, थैंक यू सतीश जी. जय लिखते हैं हमारा नंबर कब आएगा, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, आपका नंबर आ चुका है. पीएस नावकर लिखते हैं आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार, फिल्म लाट साहब से स्वर आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, और आगे ये सुनवाना चाह रहे हैं पीएस नवांकर को निर्मला.

नवांकर को, विशाल नवांकर और सुपान ताइडे को। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये बेहतरीन सा ट्रैक, जिसकी शुरुआत में ही जो मैंने मेल पढ़ा था उन्होंने इसकी फरमाइश की है।

रही हूँ, आपके जो मेल्स हैं वो लगातार मेरे पास आ रहे हैं और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हर मेल को इस प्रोग्राम में शामिल करें. पहला मेल ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डीके जी का आया है, न्यू दिल्ली से. कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, फिल्म सत्या का सॉन्ग सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है. एम के राज लिखते हैं, शायरी दो लाइन, रेडियो की धुन में बसी है आपकी आवाज़, भानपुर से लखनऊ तक गूंजे हर रोज़. आरजे जी को शुभ दोपहरिया, कार्यक्रम है रेनबो हॉटमेल. मुनेश कुमार राज लिखते हैं, ग्राम भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी, शुभ दोपहरिया. आप कैसी हैं, आपकी आवाज़ और कार्यक्रम की प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब रहती है. मैं हर घंटे हर रोज़ लाइव प्रोग्राम सुनता रहता हूँ. 1990 के दशक की यादगार फिल्म दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर हम आपके हैं कौन, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है और करण अर्जुन, सच्ची मोहब्बत और रिश्तों का ज़माना पर्दे पे दिखता था अपना ही अफसाना. ये जो इन्होंने फिल्म दी है शायद इससे ही कोई गीत सुनना चाह रहे हैं. ब्रजेंद्र विश्वकर्मा लिखते हैं, हॉट मेल, आदरणीय प्रसारक जी सुप्रीम नमस्कार, किसी भी गीत में जो है मेरा ये मेल शामिल कर लीजिएगा. ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, इन्होंने हमें मेल भेजा है. डीके राज रेडियो से, प्रिय आरजे नमस्कार, फिल्म सागर का गीत चेहरा है या चांद किला, और राजकोट से जैमिन जैन, हेतल और कृष्ण जैन को ये सुनवाना चाहते हैं. मोहम्मद रिजवान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर मुनप्पी, मोहम्मद रिजवान संडीला हरदोई से ऑनलाइन ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ. यूएई से भी सुनता हूँ, आपके प्यार में हम सवरने लगे गाना सुनवा दीजिए. तेजबान लिखते हैं, हेलो मैम जी, गुड आफ्टरनून, आलापुर कुंडा प्रतापगढ़ से प्रोग्राम सुन रहा हूँ. मैम जी कोई प्यारा सा सॉन्ग सुनवा दीजिए, मैं रेडियो बहुत दिन से सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है. शुक्रिया तेजबान जी. और आगे लालगिरी जी लिखते हैं, नमस्कार दीदी जी, आज आपकी आवाज़ बहुत सुंदर लग रही है, प्रस्तुति बहुत पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, कोई भी सॉन्ग हमें सुनवा दीजिए, आपके साथ हम लाइव बने हुए हैं. क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास तो हम आपको सुनवाते हैं, इतनी देर से जो लगातार दो तीन लोगों ने गाने की फरमाइश की है उसे आप तक पहुँचाते हैं.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और देखते ही देखते हमारा हॉटमेल प्रोग्राम भी इख्तिताम पर आ चुका है. अब हम आपसे इस प्रोग्राम से लेंगे विदा, लेकिन जाते जाते एक मेल जो मैं शामिल करना चाहूँगी रोजी दी कैस्ट्रो का, लिखते हैं होस्ट दी वी ऑल्सो लिसनिंग योर प्रोग्राम विद फैमिली सो प्लीज़ रीड माई मेल ऑल्सो. जानकीपुरम सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, इन्होंने हमें मेल भेजा है और गाने की फरमाइश की है जो अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे. लेकिन जाने से पहले आप सभी का बहुत

बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और बहुत माजरत जो मेल प्रोग्राम में वक्त की कमी के चलते और ढेर सारे मेल्स की वजह से रह गए हों। और 3 बजे के बाद आपके साथ मैं होंगी सतरंगी दुनिया में। आज कुछ इंटरेस्टिंग और बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर सतरंगी दुनिया में आपसे फिर मिलूंगी। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक, और उसके बाद आपसे फिर मुलाकात।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी के जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। लखनऊ में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सुना। लखनऊ के कैन विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 में बृजेश पाठक ने भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का प्रसारण सुना। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मन की बात न सिर्फ जनता से सीधा संवाद है, बल्कि ये कार्यक्रम विकास, संस्कृति और राष्ट्रहित के मुद्दों पर जन जागरण के महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम को सुनकर उत्साह व्यक्त किया और प्रधानमंत्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस महीने के 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए हैं। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए हैं और महाराष्ट्र गुजरात के बाद देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां अब तक 6,00,000 से अधिक छतों पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। भारत की राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 दवा फॉर्मुलेशंस के खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं। यह कदम आम दवाओं को सस्ता और किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 27 मई 2026 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार इन दवाओं में विटामिन D3, ओरल सॉल्यूशन, कैल्शियम विटामिन D3 के साथ मिथाइल कोबालेमिन और प्रिसोपोलोल कॉम्बिनेशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और संक्रमण की दवाएं भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित होगा।

0: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आंखें बंद होती हैं तो एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं जहां ना कोई सीमा होती है ना कोई नियम। कभी हम आसमान में उड़ रहे होते हैं तो कभी बरसों पुराने लोगों से मिल रहे होते हैं, और कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो हकीकत में कहीं मौजूद ही नहीं है। नींद और सपनों की ये दुनिया जितनी आम है उतनी ही रहस्यमय भी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सतरंगी दुनिया में। मैं हूं आपके साथ समरीन, और आज सतरंगी दुनिया में हम आपको ले चलेंगे नींद और सपनों की उस अनोखी दुनिया में जहां विज्ञान भी है, रहस्य भी है, और हैरान कर देने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स और तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, वो सब आपको पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक।

सतर्कनी दुनिया में आज बात हो रही है ख्वाबों की. वो ख्वाब नहीं जो आप जगती आंखों से देखते हैं, बल्कि वो ख्वाब जो आप सो जाने के बाद देखते हैं. क्या आपको पता है कि आप अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोते हुए गुजारते हैं? जी हाँ, जरा सोचिए, आपकी उम्र 60 साल की है तो उसमें आपने लगभग 20 साल सोते हुए गुजारे होंगे. यानी नींद सिर्फ आराम नहीं देती है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक लगभग बड़ा हिस्सा जो है वो सपनों में गुजरता है. और दूसरी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें सपने नहीं आते, लेकिन सच्चाई ये है कि सपने सबको आते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जागने के बाद उन्हें भूल जाते हैं और कुछ लोग उन्हें याद रख पाते हैं. लगभग हर व्यक्ति रात में एक सपना नहीं बल्कि कई सपने देखते हैं. तो ऐसे ही नींद से जुड़े, सपनों से जुड़े फैक्ट सतरंगी दुनिया में आप आज मुझसे सुनने वाले हैं. और फिलहाल आपको सुनाते हैं ये गीत.

0: हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

सतरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ समरीन। प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ख्वाब किस तरह से हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं और उनके फैक्ट्स क्या हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम सपनों में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, और आप देखेंगे, गौर करेंगे, कभी भी आपका सपना कोई नया चेहरा नहीं करता, कोई ऐसा चेहरा नहीं करता जो आपने कभी देखा ही ना हो। हर चेहरे की रिजेम्बलेंस होती है। हर जो भी व्यक्ति आपसे ख्वाब में मिलता है, आप उसे कहीं ना कहीं पहले मिले होते हैं। और इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सपने, आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं, लेकिन सपने आपको याद नहीं रहते, बल्कि ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि उनको लगता है कि उन्होंने ख्वाब देखा ही नहीं, लेकिन ख्वाब आप देखते हैं, बस आपको याद नहीं रहता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ख़ास है हमारे सपनों के बारे में, नींद के बारे में, ख्वाब के बारे में, तो आज सतरंगी दुनिया में मैं आपको बता रही हूँ। सोते वक्त ऐसा लग सकता है आपको कि सब कुछ ठहर गया हो, हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन इस वक्त आपके दिमाग में ढेर सारी गतिविधियाँ हो रही होती हैं। REM स्लीप के दौरान आपका दिमाग बहुत सक्रिय होता है और इसी दौरान आप सबसे जीवंत सपने देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स लेके आएंगे अगले लिंक पे। अभी सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन ट्रैक।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: गुड मॉर्निंग डैडी।
2: वेरी गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग टीचर।
4: गुड मॉर्निंग बेटा।
5: गुड मॉर्निंग बॉस।
6: गुड मॉर्निंग मम्मा।
7: गुड मॉर्निंग।
8: गुड मॉर्निंग।
9: गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग।
11: गुड मॉर्निंग।
0: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर सुबह 8:15 से ओनली ऑन रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

उधर नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट। हाँ, यू टर्न करो और वापस जाओ। चलो चलो

सतरंगी दुनिया में आज आपसे बात हो रही है सपनों की दुनिया की। जी हाँ, अगर आप नींद की कमी को झेल रहे हैं और नींद में आपको उतने डीप स्लीप नहीं आ रही है, तो ये आपके फैसले लेने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। तो अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, इनसोमनिया आप फील कर रहे हैं, तो आप इसका इलाज ज़रूर करें। और अगर आप लगातार कम नींद लेते हैं तो आपकी याददाश्त और आपके फैसले लेने के निर्णय दोनों प्रभावित होते हैं। साथ ही आपको क्या पता है इस बात का कि जानवर भी सपने देखते हैं? जी हाँ, अक्सर जानवर भी सपने देखते हैं। आपने कुत्ते को या बिल्ली को सोते में आवाज़ें निकालते सुना होगा, तो आप सोचें कि उस वक्त शायद वो कोई ख्वाब दिख रहा है। अच्छा, वहीं एक फैक्ट ये भी है कि कुछ लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं। अब क्या होता है ये ल्यूसिड ड्रीमिंग? कल्पना कीजिए कि आप सपना देख रहे हों और आपको पता हो कि ये सपना है, इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सोकर जगते हैं और उसके बाद अपना ख्वाब बताने के लिए किसी को जाते हैं और दिमाग से ख्वाब वाइप हो जाता है। विद इन 5 मिनट्स आप अपना सपना भूलना शुरू कर देते हैं और आधे घंटे के बाद आप सपना भूल जाते हैं। तो थे ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सपनों से जुड़े हुए, और भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि बहुत थक गए होगे, जाओ रेस्ट कर लो, आराम कर लो, एक नींद ले लो और तुम्हारे शरीर को आराम मिल जाएगा। तो नींद लेने से सिर्फ हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता बल्कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हटाने का काम भी करता है। और साथ ही साथ नींद में के दौरान जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर भी हो रही होती है। ऐसा लगता है कि जब तक आप 8 घंटे या 6 घंटे की नींद नहीं ले लेते, आपकी बॉडी का वो जो साइकिल होता है जिसमें रिपेयरिंग चल रही होती है, बहुत सारी मसल्स बन रही होती हैं, ख़त्म हो रही होती हैं, आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से काम कर रहा होता है, उस दौरान 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। लेकिन चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो 4 घंटे में भी प्रॉपर नींद का, जो डीप स्लीप का जितना उनको वक्त चाहिए होता है वो होता है। तो थे आज के सतरंगी दुनिया में ये ख्वाब से रिलेटेड, जहन से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमने आपके साथ साझा किए। और अब हम साझा कर रहे हैं एक सुंदर और बेहतरीन गीत आपके रेडियो सेट पर।

और इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाबों की दुनिया अक्सर हसीन होती है लेकिन कभी कभी खौफनाक भी होती है. जहन में क्या चल रहा है नहीं पता होता और वही रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके ख्वाबों में. तो यकीनन आपने सतरंगी दुनिया का हमारा आज का ये एपिसोड इन्जॉय किया होगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चले. इनफैक्ट बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मेरे लिए भी नई थी. इसी के साथ सतरंगी दुनिया से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाज़त. फिर मुलाकात होगी, होगी बातचीत कुछ इंटरेस्टिंग और बेहतरीन गानों के साथ. आप सुनते रहिए FM Rainbow.

नमस्कार। अब सुनिए मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सुंदर होती है। श्री मोदी ने कहा कि आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने, साझा सैन्य अभियान चलाने तथा विकास और उत्पादन कार्य मिलकर करने के अवसरों सहित रक्षा उद्योग में सहयोग पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार ये संवाद द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत करने, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे वीडियो का खंडन किया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट

डाक सेवा गिफ्ट्स योजना के तहत उपहार या इनाम दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है। पीआईबी के ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या वेब पेज पर क्लिक ना करें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, ओटीपी या आधार नंबर कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। वाराणसी में कृषि मंत्रालय और भारत कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देशों के तहत 1 से 30 जून 2026 तक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी द्वारा देशव्यापी खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान IIVR के वैज्ञानिक किसानों के खेतों का दौरा कर मिट्टी स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कीट प्रबंधन, प्राकृतिक खेती तथा कृषि योजनाओं की जानकारी देंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 5 बजे।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते के जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: Hi, hello, what's up? शाम के 4:04 और ठीक 10 सेकेंड्स। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे हैं यूथ वेव सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर। और हमेशा की तरह आज का यूथ वेव भी होने वाला है बहुत खास, सो स्टे ट्यून्ड।

0: तो सुनिए, आज के दिन,
1: आज का मतलब कौन सा दिन पता है आपको? आज के दिन हम बात करते हैं संडेज को एआई या फिर साइबर सिक्योरिटी की। तो ये जो सेगमेंट हमने रखा है, ये सोच करके रखा है कि आप यानी हमारे डियर डियर लिसनर्स हमेशा सेफ रहें, हमेशा अपडेटेड रहें। ऐसे थोड़ी नाम कहते हैं कि स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो आपको थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए सिक्योरिटी के बारे में, आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। ऑलराइट, बिल्कुल बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन पहले ये ब्यूटीफुल सॉन्ग।

4:11 और ठीक 17 सेकंड्स आप सुन रहे हैं यूथ वेव एफएम रेनबो पर आज ज्योति मिश्रा के साथ। अच्छा सच सच बताइए, आजकल सुबह सुबह आँख खुलने के बाद आप सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं या फिर मोबाइल हाथ में उठाते हैं? भाई देखिए, झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है, दोस्तों से झूठ थोड़ी ना बोला जाता है। मैं जानती हूँ खूब जानती हूँ कि सबसे पहले आप उठाते हैं मोबाइल, अलार्म बंद करते हैं, फिर व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और फिर आप रियल दुनिया से कनेक्ट करने को तैयार हो पाते हैं। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाई, आज हमारी दोस्ती, पढ़ाई, शॉपिंग, गेमिंग, बैंकिंग सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए हमारी ये जो डिपेंडेबिलिटी है हमारे फोन के ऊपर या फिर साइबर दुनिया पर, ये बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है और बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है ये कि क्या हम सिर्फ यूजर्स बनकर रह गए हैं या फिर हम हैं स्मार्ट यूजर्स? तो चलिए कोशिश करते हैं आज साइबर स्मार्ट बनने की। नो बोरिंग लेक्चर, नो स्कैरी स्टोरीज, केवल फन फैक्ट्स एंड फुल ऑन अवेयरनेस। सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज का यूथ वेव आपको बनाने वाला है और भी स्मार्टर।

एक बीमारी आजकल बहुत तेजी से फैल रही है, नाम है ओवरशेयरिंग सिंड्रोम। एयरपोर्ट पहुंच गए, स्टोरी डालो। न्यू कैफे, स्टोरी डालो। बर्थडे, स्टोरी डालो। एग्जाम हॉल के बाहर, चलो फिर से स्टोरी डालो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खाना आने के बाद पहले फोटो लेते हैं और

0: फिर उसको हाथ लगाते हैं। और कुछ ऐसे भी है कि अगर उनके बर्थडे की स्टोरी उनके फ्रेंड्स ने शेयर नहीं की तो बुरा मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जो जानकारी आपके दोस्त देख रहे हैं उसे कोई स्कैमर भी देख सकता है। सो लोकेशन, ट्रैवल प्लान्स, फोन नंबर, मुझे नहीं लगता कि ये सब पब्लिक होना चाहिए। गोल्डन रूल, शे मोमेंट्स नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये है नथिंग एल्स बट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम।
1: तुझे तक तक

बनाने की। अब से थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे रोजगार समाचार के लिए, और उसके बाद फिर से हमारा ये स्मार्टनेस वाला सेशन कंटिन्यू रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए हमारे साथ ही, क्योंकि अभी भी मेरी किटी में आपके साथ शेयर करने को काफी कुछ है।

नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्य

0: इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। प्रधान पद्धति विश्लेषक एक पद, भर्ती का तरीका रहेगा प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.caomod.nic.in। टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी एफ, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, पल्मोनरी मेडिसिन, चिकित्सा अधिकारी ई, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, चिकित्सा अधिकारी ई, यूरो ऑन्कोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी पैथोलॉजी कैंसर साइटोजेनेटिक प्रयोगशाला, वैज्ञानिक अधिकारी डी, गुणवत्ता, प्रभारी अधिकारी डिस्पेंसरी, वैज्ञानिक अधिकारी एस बी, वैज्ञानिक अधिकारी एस बी समुदाय ऑन्कोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी एस बी सूक्ष्म जीव विज्ञान, वैज्ञानिक सहायक ग चिकित्सा ग्राफिक्स, वैज्ञानिक सहायक ग न्यूक्लियर मेडिसिन, सहायक चिकित्सा समाज सेवक, हाउसकीपर, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, वैज्ञानिक सहायक ख, वैज्ञानिक सहायक ख केंद्रीय स्टेराइल सेवा विभाग, वैज्ञानिकी सहायक ख फिजियोथेरेपी, वैज्ञानिकी सहायक ख रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, लीडिंग फायरमैन तकनीशियन ग दंत व प्रोस्थेटिक सर्जरी मैकेनिक, तकनीशियन ग आईसीयू, तकनीशियन ग लिनन और लॉन्ड्री, तकनीशियन ग नेटवर्किंग, तकनीशियन ग ऑपरेशन थिएटर, तकनीशियन ख वातानुकूलन, तकनीशियन क कारपेंटर, तकनीशियन क केंद्रीय स्टराइल सेवा विभाग और तकनीशियन क इलेक्ट्रिकल, तकनीशियन क बहुकौशल और तकनीशियन क प्लंबर। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026 को शाम 5:30 बजे तक। कश्मीर विश्वविद्यालय का जनसंख्या अनुसंधान केंद्र सह प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। एक पद उपलब्ध है और वो अनारक्षित है। विवरण नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.kashmiruniversity.net अथवा www.prcku.uok.edu.in। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी आप विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं www.mohfw.gov.in। ऑनलाइन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी 12 जून 2026 जबकि हार्ड प्रति जमा करने की अंतिम तारीख है 16 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

4:30 और ठीक 36 सेकेंड आप हैं यूथ वेव में ज्योति के साथ और ज्योति आज कर रही है कुछ ऐसी बात जिससे आप बन सके थोड़े से और स्मार्ट यस साइबर स्मार्ट। अच्छा अच्छा चलिए एक कन्फेशन सेशन करते हैं। कितनों का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पेट का नाम

आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे का या फिर आपके क्रश का नाम। अगर ऐसा है तो हैकर्स आपको दिल से थैंक यू बोल रहे होंगे। ऐसा मत करिए, क्योंकि जो आपको जानता है उसके लिए आपका पासवर्ड गेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रखें? फॉर्मूला है सिंपल, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स। यस यस यस, फिर से नोट करिए, अपर केस लोअर केस मतलब कैपिटल लेटर में समथिंग, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में समथिंग, फिर कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। एंड यस, कोई ना कोई सिंबल भी। जब आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो आपका पासवर्ड बनता है स्ट्रॉन्ग। एंड यस, वन मोर थिंग, हर जगह एक ही पासवर्ड मत रखिए, क्योंकि अगर गलती से भी एक जगह का पासवर्ड लीक हुआ तो आपका पूरा डिजिटल किंगडम खतरे में आ सकता है। तो थोड़ा सावधान रहिए एंड यस, सुरक्षित रहिए। और लापरवाही को कहिए नो नो, बिग नो।

0: Basanti, no dance in front of these dogs.
1: तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इनके लिए आपको कहना है आ बिगन नो. और हाँ, ये जो फ्री वाईफाई सुनते ही आप जो है बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं ना, आपसे मुझे बहुत कुछ कहना है इस बारे में भी. फ्री फ्री फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, हम इंडियंस से जहाँ सुना वही बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से हम मोहित हो जाते हैं. कैफे में जाएंगे, कुछ और करें ना करें ये जरूर पूछेंगे कि भाई पासवर्ड क्या है. एयरपोर्ट जाए तो वाईफाई है, मॉल जाए वाईफाई है, और किस कोने में अच्छा आता है. लेकिन दोस्त, ये जो पब्लिक वाईफाई है ना, ये उतना सेफ नहीं है जितना कि होना चाहिए. ऐसे थोड़ी ना इसे कहा गया है पब्लिक वाईफाई. सो थोड़ा ध्यान रखिए कि आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाए, नहीं ना. तो अगर आप जरूरत पड़ने पर पब्लिक वाईफाई को यूज करते भी हैं, तो ध्यान रखिए कि किन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं. बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सेंसिटिव लॉगिन्स, पब्लिक वाईफाई पर पूरी तरह से अवॉइड करिए. याद रखिए, फ्री चीज हमेशा फ्री नहीं होती, दरअसल कई बार बड़ी महंगी पड़ जाती है. ये ओपन वाईफाई नेटवर्क काफी अनसेफ माने जाते हैं. कोई भी हैकर उसी नेटवर्क पर बैठकर आपकी सारी एक्टिविटी को देख सकता है. इसलिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग या फिर कोई भी सेंसिटिव काम मत करिए. अपने मोबाइल डेटा को यूज करिए ना, वो पब्लिक वाईफाई से कहीं ज्यादा सेफ है. और ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो सस्ता डेटा मिलता है ना, उन कंट्रीज में से है हमारा कंट्री. तो ऐसा भी क्या, मुफ्त मुफ्त मुफ्त सुनते ही सब कुछ भुला कर बस उसी के पीछे भाग गए, ऐसे नहीं करना. और हाँ, अगर कभी गॉड फॉरबिड, ईश्वर न करे, अगर कभी कोई साइबर फ्रॉड हो भी जाए, तो डरना बिल्कुल नहीं है, छिपना नहीं है, घबराना नहीं है. ये नहीं सोचना है कि क्या करे क्या ना करे, ये बिल्कुल नहीं करना है. भारत सरकार की नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930. नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी पेन उठाइए भाई, 1930 यानी कि 1930. इस पर तुरंत कॉल करिए या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करिए. cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करिए. कहते हैं ना कि ये डरना किसी चीज में आपको आगे नहीं लेकर जाता. माना जाता है कि चीजों में दूरियां भी जरूरी है.

यस, जहां जरूरी है दूरी दिखाना, दूरी बनाना, वहां जरूर बनाइए। अब देखिए ना, एक और भी चीज है जिसके बिना काम होता ही नहीं, वो है OTP, जिसे इजी लैंग्वेज में कहा जाता है वन टाइम पासपोर्ट। जी नहीं, वन टाइम पासवर्ड, लेकिन कुछ लोग इसे समझते हैं ओपनली टेल पीपल। नो बॉस, OTP का सीधा सा मतलब है ओनली टू पर्सन कंसर्न्ड। अगर कोई फोन करके कहे मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं KYC डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं रिवार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बस एक काम करिए, खट से फोन रख दीजिए, क्योंकि क्योंकि क्योंकि ये बात बार बार आपको बताई जाती है, बैंक कभी आपका OTP नहीं मांगता। जो बंदा आपसे फोन पर आपका OTP मांग रहा है, वो खतरे की घंटी भी साथ में बजा रहा है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, लेकिन आप सुनने को राजी नहीं। अब ये क्या बात हुई? और हाँ, ये वाले ईमेल्स एंड मैसेजेस, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। और आप है कि सोचते हैं भाई वाह, बैठे बैठे लॉटरी लग गई। हाँ, ये वाला भी, यू हैव वन अ लॉटरी, क्लेम फ्री फोन, अर्जेंट अकाउंट अपडेट रिक्वायर्ड। भाई मेरे, इन सारे ईमेल्स, इन सारे मैसेजेस पर यकीन करने से पहले 4 बार सोचिए, ये सब फिशिंग ट्रैप्स हो सकते हैं। याद रखिए, अगर कोई भी ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, यानी कि सही होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो वो सच नहीं है। क्लिक करने से पहले 4 बार सोचिए, यही है साइबर स्मार्टनेस, राइट?

4:41 और 58 seconds आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ और बन रहे हैं साइबर स्मार्ट सुनते हुए आज का यूथ वेव ओनली ऑन 107 FM रेनबो. सो बने रहिए हमारे साथ.

झुमका, वो झुमका, झुमके की बात करें, लैपटॉप की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, जब आप इसे स्मार्टली यूज करते हैं, स्मार्टली कैरी करते हैं, तभी तो ये फपता है आपके ऊपर, है ना। और वैसे भी अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बहुत तेजी से जमाना बदल रहा है। AI टूल्स, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल क्रिएटर्स, वर्चुअल करियर्स, नई दुनिया हमारे सामने है। और किसी भी चीज में सिर्फ बुराइयां हों ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। AI ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाया है, प्रोवाइडेड कि हम इसे अच्छी तरह से यूज करना जाने। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, ये एक सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर भी तभी काम करती है जब उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाने को तैयार हो। याद रखिएगा, स्मार्टफोन से ज्यादा जरूरी होता है स्मार्ट यूजर बनना। फोन कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप उसे स्मार्टली यूज नहीं करते, टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से नहीं चलाते, सुरक्षित नहीं रहते, तो फिर टेक्नोलॉजी को, तकनीक को, बदलती हुई दुनिया को दोष देना ठीक है क्या?

अच्छा जल्दी जल्दी एक रैपिड फायर कर लेते हैं ओके ओटीपी शेयर करना नो नो नो अननोन लिंक पर क्लिक करना अ बिग नो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यस यस यस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यस साइबर फ्रॉड रिपोर्ट बिल्कुल यस बिल्कुल डरने की कोई बात ही नहीं और नंबर कौन सा है 1930 फिर से रिपीट कर रही हूं 1930 वो नंबर है जिस पर अगर गॉड फॉरबिड ईश्वर न करे अगर कभी आपके साथ कोई स्कैम हो गया तो आपको खट से इस पर रिपोर्ट करना है याद रखिए इंटरनेट शानदार जगह है सो सीखिए बढ़िए क्रिएट करिए लेकिन सुरक्षित रहते हुए स्टे स्मार्ट स्टे सेफ एंड स्टे साइबर स्ट्रॉन्ग

जिंदगी बसी हुई थिरकते ठुमकते मटकते और खुश रहते बीत जाती है जब आपको महसूस होता है कि आप एकदम सेफ है। और याद रखिएगा, खुद को सेफ करना आपके ही हाथों में है। बस हाँ, एज फ्रेंड्स हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं और वो हम पूरी कोशिश भी करते हैं आपको बार बार अवेयर करते हुए, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन के बाद थोड़ा सा तो आप भी सावधान रहेंगे, है ना। जरूर रहिएगा, क्योंकि आप तक ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचाई है ना, बहुत मेहनत करके पहुंचाई थी। तो ऑन दिस नोट इस वाले प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और बस थोड़ी देर में समाचार, समाचार के बाद में विशेष कार्यक्रम और फिर लौट कर आएंगे लेकर एक बहुत ही

0: क्या 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी लौंडे आगे कहे टेकते नहीं पाते हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं चल निकले कहीं आ।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
2: पुरानी जींस और गिटार
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है रते आशिके जगा
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक तरफ जहां पौराणिक मनोरमा नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं कुछ युवाओं ने इसे बचाने का बीड़ा उठाया। प्लास्टिक, जलकुंभी और गंदगी से पट चुकी इस नदी को साफ करने के लिए छात्र आकाश गुप्ता और उनकी टीम पिछले दो महीनों से लगातार मेहनत कर रही है। युवाओं की इस मुहिम ने अब पूरे इलाके में पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल कायम कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बच्चों का जिक्र किया और उनको पत्र भेजा है। आगरा में लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर जगह जगह लोकमाता अहिल्याबाई को याद कर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने ताजगंज क्षेत्र के पुराना मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जो जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज मध्य निषेध विभाग द्वारा लखनऊ में तंबाकू और गुटखा जनित नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं दुष्परिणामों के प्रति जन जागरूकता के लिए एक रैली व पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस तंबाकू निषेध रैली व पदयात्रा को राज्य मध्य निषेध अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग

उपस्थित रहे। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 6 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार होंगे सुशील चंद्र तिवारी।
1: विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर जैसे मैंने COVID-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से उस पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हमेशा भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इजराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र

0: सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें AI का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि AI से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का GDP कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से AI को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
1: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के आपने AI की बात की, पढ़ाई को लेकर के ये क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेसवे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
0: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आप, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेस वेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, ना केवल एक्सप्रेस वेज बल्कि जो टर्शियरी रोड्स हैं, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेस वे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं, काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा।
1: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं, कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो PM गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है, और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
0: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है, खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है, और युवाएं भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स हैं MSME को लेके कि कोलेटर फ्री लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार की भी हैं, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
1: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: शाम के 5:13 और ठीक 15 सेकेंड्स। ये वो वक्त है जबकि हम आपके लिए लेकर आते हैं FM Top 10. लेकिन आज का Top 10 है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आज मैं आप तक उस आवाज के गाने पहुंचाने वाली हूं जो सिर्फ कानों से सुनी नहीं गई बल्कि सीधे दिल में उतर गई। जी हां दोस्तों, कुछ गायक ऐसे होते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आज है 31 मई साल 2022 में आज ही के दिन संगीत की दुनिया का वो पाकीजा सच्चा सितारा हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया था, जिसे बड़ी मोहब्बत से हमने नाम दिया था KK। हालांकि असली नाम था उनका कृष्ण कुमार कुन्नाथ, लेकिन KK के आगे हमने कभी जानने की, सोचने की या उन्हें पुकारने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये वो नाम था जो हमारे दिल से उनके दिल तक पहुंचता था। आज की ये खास शाम, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उसी आवाज को जिसने हमारी हर भावना को एक नया सुर दिया। यस फ्रेंड्स, आप तक पहुंचाने वाली हूं आज FM टॉप 10 में सिंगर KK के टॉप 10 सॉन्ग्स। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं उनके उस आइकॉनिक एल्बम के टाइटल ट्रैक से जो हमारी यादों का परमानेंट हिस्सा बन गया। इस गाने को कंपोज करने वाले लेज़ली लुइस ने उस दौर की रीमिक्स कल्चर के बीच पहली बार एक लाइव बैंड के साथ इसे रिकॉर्ड किया था, जो कि बड़ा रेयर हो गया था उस जमाने में। तो चलिए मैं, आप, हम सब मिलकर याद करते हैं KK को। मेरा नाम ज्योति और आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 में आज गायक KK के टॉप 10।

कभी सोचा भी नहीं था कि जब केके ने कहा छोटी सी है जिंदगी तो वो अपनी ही बात कर रहे थे। हाँ केके, बहुत याद आते हैं आप। दोस्तों, बॉलीवुड में कदम रखने से पहले केके ने लगभग 3500 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग जिंगल्स गाए थे। कोल्ड ड्रिंक से लेकर टूथपेस्ट के विज्ञापनों तक हर घर में उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये आवाज है किसकी, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई काम तो काम होता है, सुना जाना एक गायक के लिए बहुत जरूरी होता है। और वो कुछ यूं सुने गए कि आज भी हम उन्हें लगातार सुनते ही जा रहे हैं।

1999 की बात थी। एक जानी मानी म्यूजिक कंपनी को जरूरत थी एक फ्रेश आवाज की और ऐसे में उन्होंने चुना केके को और रिलीज हुआ एल्बम पल। इसी एल्बम का एक और गाना आज भी हर स्कूल और कॉलेज फेयरवेल की जान है, इसे कहते हैं फ्रेंडशिप का एंथम। केके के बेटे नकुल कृष्ण ने इसी गाने से इंस्पायर होकर बाद में केके के दूसरे एल्बम हम सफर के एक गाने मस्ती में अपने पिताजी के साथ रैप भी किया था। ये वो तराना है जिसने दोस्ती को तो अमर किया ही, रातों रात केके को भी बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया। और इसके बाद उन्हें वापस पलट कर कभी नहीं देखना पड़ा।

अगर मैं आपसे कहूं कि के नहीं कभी भी कोई भी फॉर्मल क्लासिकल या फिर प्रोफेशनल वोकल ट्रेनिंग नहीं ली थी तो क्या आप यकीन करेंगे?

मैं जानती हूँ आपके लिए भी यकीन करना उतना ही मुश्किल होगा जितना मुझे आज भी इस पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट लगता है। कहते ना कि कई लोग ब्लेस्ड होते हैं, उन्होंने संगीत सीखा था उन आर्टिस्ट को सुनकर जिन्हें वो एडमायर करते थे, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और स्टिंग, बिली जोएल जैसे, मतलब इंडिया के बाहर के आर्टिस्ट सबको सुन करके उन्होंने संगीत खुद से सीखा था। तभी तो ये बोला जाता था कि संगीत सिर्फ उनके गले में नहीं था, संगीत था उनके दिल में भी। ऐसे में जब उन्हें ऑफर हुआ तड़प तड़प के गाना फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम, तो उन्होंने एक झटके में कह दिया कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। इस्माइल दरबार से उन्होंने फ्लैटली कहा कि ये गाना बहुत हैवी है, ये मेरे स्टाइल का है ही नहीं, और इसमें आप किसी ऐसे सिंगर को लीजिए जो कि क्लासिकली ट्रेंड हो, मेरे से ये गाना होने ही वाला नहीं है। लेकिन इस्माइल दरबार, वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये गाना तो तुम ही गाओगे। रिकॉर्डिंग के दिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, केके को लगा कि अब तो गाना रिकॉर्ड ही नहीं होगा। पूरी टीम रात भर स्टूडियोज में फंसी रही। सुबह के करीब 4 बजे प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, हर तरफ सन्नाटा था, दुनिया सो रही थी। ऐसे में इस्माइल दरबार जो कि म्यूजिक कंपोजर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे इस फिल्म के, इन्होंने जगाया केके को और कहा अब गाओ। और मुंबई की उस खामोश सुबह में बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के केके ने जो सुर लगाए कि स्टूडियो में मौजूद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आंखों में तो आंसू आए ही। आप सुन करके देखिए, शायद आपकी भी आंखें थोड़ी सी नम हो जाए। बेजान दिल, एक अजीब सा दर्द, लगता ही नहीं ये गाना गाया गया है, लगता है इसे महसूस किया गया है। शायद तभी तो ये कानों तक नहीं ठहरता, सीधे दिल में उतरता है। 5:29 और ठीक 10 सेकेंड्स, आप हैं ज्योति के साथ और सुन रहे हैं आज FM टॉप 10 में KKK टॉप 10 सॉन्ग्स, क्योंकि आज ही का दिन वो दिन है जब हमने उन्हें खो दिया था।

ये गाना केके का पहला बड़ा बॉलीवुड ब्रेक था जिसने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिलाया। इस गाने को आप सुनते हैं तो आपको लगता है कितना दर्द है, लेकिन अगर आप इनके बाकी के गाने सुनते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये केके नहीं गाए हैं। इसी को तो कहते हैं वर्सटैलिटी। वो जितने बेहतरीन दर्द के नगमे गाते थे उतने ही कमाल के रोमांटिक और यूथफुल सॉन्ग्स भी। 2001 में एक मूवी आई थी रहना है तेरे दिल में, याद है ना, RHTDM। इस फिल्म के गानों ने इस दौर के हर आशिक के दिल को छुआ। हैरिस जयराज के संगीत में केके की आवाज ने जो जादू बिखेरा वो आज भी उतना ही ताजा है। तो चलिए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल लव सॉन्ग केके की आवाज में। 5:34:48 आप सुन रहे हैं आज FM टॉप 10 में केके स्पेशल, क्योंकि आज ही का दिन वो दिन है जब हमसे केके को छीन लिया गया था सन 2022 में। तो चलिए मिलकर याद करें उन्हें सुनते हुए उनके टॉप 10 नंबर। स्टे ट्यून्ड विद ज्योति।

के मूल रूप से केरल त्रिशूर के रहने वाले मलयाली परिवार से थे, लेकिन दिल्ली में पले बड़े होने की वजह से उनका हिंदी डिक्शन इतना क्लियर था कि कोई भांप ही नहीं सकता था कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो गैर हिंदी भाषी है। आमतौर पर हम सब ने केके को उनकी हाई पिच ऊंचे सुरों के लिए सराहा है, लेकिन ये गाना जो अब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ, इसे सुनकर आप कहेंगे भाई वाह, लो रजिस्टर यानी धीमी और गहरी आवाज में भी वो उतने ही बड़े उस्ताद थे। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गुलजार साहब के शब्दों और अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ ये गाना फिल्म अक्स से। तो चलिए सुनते हैं केके का ये चुलबुला और बिंदास अंदाज 2001 की फिल्म अक्स से।

क्या बात है भाई क्या बात है इस गाने में रॉक और गोवन म्यूजिक का जो फ्यूजन था और जब केके ने एलिटरेशन को अपने परफेक्ट तरीके से निभाया तो गाना हो गया जबरदस्त और आज भी अगर आप मेरी बात करें तो इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स दोस्तों 2006 के बाद इंडियन सिनेमा में एक नया सा दौर आ गया म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और केके की जोड़ी ने बैक टू बैक चार्टबस्टर्स की जड़ी लगा दी फिल्म गैंगस्टर का वो वाला गाना याद है आपको तो ही मेरी शब है तो चलिए प्रीतम और केके की इस अमर जुगलबंदी के जादू में डूब जाते हैं इस गाने के बाद ही केके बन गए थे इमरान हाशमी की ऑफिशियल आवाज क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन दर्शकों को बहुत पसंद आता था

भाई इमरान हाशमी ही क्यों? 2007 में जब शाहरुख खान स्क्रीन पर बाहें फैलाकर खड़े हुए और बैकग्राउंड में आवाज गूंजी के की, तो उसने रोमांस का एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिख दिया। यस, मैं बात कर रही हूँ ओम शांति ओम के सॉन्ग आंखों में तेरी, अजब सी अदाएं हैं सॉन्ग की। विशाल शेखर का संगीत, के की मखमली आवाज। वैसे आपको बता दूं कि इस गाने को फिल्म में काफी बाद में जोड़ा गया था, जब शाहरुख ने

की आवाज में इसका रफ ट्रैक सुना तो उन्होंने फराह खान से कहा कि भाई इस गाने के लिए तो स्पेशल सीक्वेंस बनता है। हैरानी की बात है कि जिस गायक ने एक पूरी पूरी पूरी पीढ़ी को प्यार करना सिखाया वो हमेशा अवार्ड्स की दौड़ से दूर रहे। वो मुस्कुराकर कहते थे कि मुझे शायद इसलिए अवार्ड्स नहीं मिले क्योंकि मैंने उनकी चाहती नहीं की थी और मेरे लिए दर्शकों का प्यार ही सबसे बड़ा अवार्ड है।

थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी अवार्ड्स और केके की। अब आप तक पहुंच रहा है वो गाना जिसके लिए उन्हें भी अवार्ड मिला। यस, स्क्रीन अवार्ड मिला उन्हें 2008 में बचना ए हसीनों के इस सॉन्ग के लिए। इस गाने में केके ने बिना किसी वोकल स्ट्रेन के इतनी आसानी से ऊंचे सुर छुए थे कि आज भी लोग कहते हैं कि बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ऐसा गाना चमत्कार से कम नहीं।

पांच बजकर बावन मिनट और ठीक 29 सेकंड्स आप हैं ज्योति के साथ 100.7 FM रेनबो पर और इस वक्त आप तक ज्योति पहुंचा रही है के टॉप 10 सॉन्ग्स इन द प्रोग्राम FM टॉप 10 क्योंकि आज ही का दिन वो दिन है जब के हम सबसे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे अभी आप तक आ रहा है 2008 में आई फिल्म जन्नत का सॉन्ग प्रीतम का संगीत सई कादरी के गीत और के की आवाज वैसे इस गाने के मुखड़े और अंतरे के बीच जो वोकल कूज आप सुन रहे हैं ना इन्हें के ने जोड़ा था ऑन द स्पॉट

बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए 10 टॉप सॉन्ग चुनना के। और मेरी कोशिश कैसी रही ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन हाँ चलते चलते बस आपको थोड़ी सी बातें और जरूर बताऊंगी। केके ने अपने 25 साल के करियर में तमिल तेलुगु कन्नड़ में ढेरों हिट दिए, लेकिन अपने जो उनके गृह राज्य था केरल उसकी भाषा मलयालम में वो सिर्फ एक ही गीत गा पाए। 31 मई का दिन था यानी आज ही का दिन 2022 कोलकाता का नजरुल मंच के स्टेज पर थे, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पूरे दिल से गाते हुए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम रहे ना रहे कल याद आएंगे ये पल गाते हुए, वो सचमुच सिर्फ हमारी यादों में ही रह जाएंगे। आज आपकी पुण्यतिथि है केके, लेकिन हम पूरी जिद से आपसे कह रहे हैं कि हम आपको अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आपको जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपके गानों के जरिए, और ये दोस्ती हम हमेशा निभाते रहेंगे, कभी अलविदा कह नहीं पाएंगे।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार शासन ने जनहित में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया है। राजीव कृष्ण वर्तमान में निदेशक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के पद पर कार्यरत होने के साथ साथ कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे। इस नियुक्ति के बाद पुलिस महकमे और शासन स्तर पर कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला

सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा, सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का सीएमओ बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार को वाराणसी का सीएमओ बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर जीपी गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक बनाया गया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 7 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा।
2: रजनीगंधा
1: हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: Tumhare shehar ka mausam. Tumhare shehar ka mausam bada suhana lage. Main ek sham chura lu agar bura na lage. 6:05 और ठीक 30 सेकेंड्स। आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम शामे अवध। बातें आपके शहर की, खबरें आपके काम की और म्यूजिक जो आपके मन को भाए।

भाई मैं तो ऑलरेडी आ चुकी हूँ मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त ज्योति आपके अपने फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है 100.7 FM Rainbow और ये वक्त है शामे अवध का तो शामे अवध का मतलब आपको अपडेट करने का टाइम अब सभी जानते हैं कि आज है 31 मई यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस बार-बार कहा जाता है कि हर कश के साथ ये जो धुआं उठता है ना ये आपकी सिगरेट का नहीं होता बल्कि जिंदगी के बेशकीमती पलों का होता है तो खुद से मोहब्बत करिए अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखिए और खुद से वादा करिए एक स्वस्थ और स्मोक फ्री लाइफ को जीने का ये थोड़ी ना कहा जाता है कि जिंदगी को हां कहना है हमें आपको हम सबको और ना कहना है टोबैको को और जब धुआं छटेगा तभी तो वो प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर खिलेगी जिसके लिए आज ही के दिन हम वर्ल्ड स्माइल डे भी मनाते हैं यस दो दो दिन आज यानी 31 मई को ऑब्जर्व किए जाते हैं आज का ये खूबसूरत दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का ना सिर्फ दिन बल्कि उसकी जिंदगी भी कभी कभी बदल सकती है मुस्कुराहट वो इकलौती चीज है जो मुफ्त में मिलती है लेकिन इसकी कीमत अनमोल है तो देर किस बात की अपनी इस खूबसूरत स्माइल को जरा चेहरे पर सजाइए गमों को टाटा बाय बाय कहिए

और दुनिया में खुशियां फैलाइए। मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वो प्रोग्राम जिसे ज्योति सजाकर लाई है आज खास तौर पर आपके लिए। यस, मैं बात कर रही हूँ श्यामे अवध की।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. संडे की इवनिंग है, मौसम ने भी आपका साथ दे ही दिया है, तो ऐसे में बस यही कहूंगी कि टेंशन को करिए दूर और करिए मस्ती भरपूर।

6:22 और ठीक 26 सेकेंड्स. आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम शामे अवध. बातें आपके शहर की, खबरें आपके काम की और म्यूजिक बस वही जो आपके मन को भाए.

और भाई अब आपको थोड़ी काम की बातें भी बता दी जाए है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ट्रिपल आईटी लखनऊ ने एमबीए डिजिटल बिजनेस 2026 कोर्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू की डेट रिलीज कर दी है इंटरव्यू होने वाला है 5 जून को सुबह 10 बजे से तो एप्लीकेंट्स को करना क्या होगा एप्लीकेंट्स को 3 जून तक गूगल फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का यानी एप्लीकेंट्स का सीयूईटी 2026 में जो मिनिमम स्कोर जरूरी है उतना होना प्री रिक्विजिट होगा इसके अलावा अगर आपको

कोई और जानकारी चाहिए तो फिर आप वेबसाइट पर जो संस्थान की वेबसाइट है triplitl.ac.in इस पर आप जाकर के देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ triplitl.ac.in। तो भाई अगर IIIT से MBA करना है तो सोच क्या रहे हैं, मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। 6:27:42 आपके साथ है ज्योति इन द प्रोग्राम शामियावन और ज्योति की किटी में पिटारे में अभी भी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

और अब एक खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी यस, विदेशों की तर्ज पर हमारे यहाँ भी चलने वाली है पॉड टैक्सियां। अब आप पूछेंगे कि पॉड टैक्सी क्या होता है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार होती है जो कि ड्राइवर लेस होती है, मतलब बिना ड्राइवर की चलती है। ट्रेडिशनल बसेस या मेट्रो की तरह भारी भरकम नहीं होती, बहुत सारी जगह नहीं घेरती, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप्स के सफर के लिए डिजाइन की जाती है। इसमें बस एक छोटा सा कोच होता है। अब अगला सवाल आपका ये होने वाला है कि भाई ज्योति फिर तो बड़ी महंगी होती होगी। ना ना ना ना, अभी जो अनुमान किया जा रहा है उस हिसाब से 8 रुपए पर किलोमीटर इसका किराया होने वाला है। शुरुआत में इन्हें चलाने की तैयारी हो रही है नोएडा एंड मुंबई में, और नोएडा में कहा जा रहा है कि 2028 के मिड तक ये शुरू हो जाएगी। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सेक्टर 21 में बन रही फिल्म सिटी और आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने के लिए पॉड टैक्सी शुरू की जाने वाली है। एक बार ये सफल हो गई, सक्सेसफुल हो गई, फिर तो बस कहने क्या, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे बाकी के शहरों में भी इसको पहुंचाया जाएगा। तो है ना पार्टी करने वाली बात। भाई मुझे तो लगता है कि अगर ट्रैफिक से आपको थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी राहत अगर मिल सकती है तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड न्यूज़।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

वैसे अब वो खुलकर आने वाले हैं जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। यस, मैं बात कर रही हूँ दशहरी आम की। 1 जून से सजने वाली है दशहरी आम की मंडी। यस फ्रेंड्स, मलिहाबाद आम मंडी में आम निर्यात की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई है। हालांकि इस बार मौसम की मार की वजह से फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसकी वजह से पिछले वर्ष की तुलना में आम के निर्यात में 20% की कमी आने की आशंका है। लेकिन उसके बाद भी बागवानों का ये सोचना है कि स्थानीय मंडी में कम खर्चे पर आम की बेहतर और अच्छी कीमत मिलने वाली है। तो भाई, मंडी शुरू होने वाली है, 1 जून से सजने वाली है दशहरी आम की मंडी। तो आप क्या सोच रहे हैं, है ना अच्छी खबर? वैसे एक और अच्छी खबर इंतजार कर रही है आपका आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

और अब एक ऐसी खबर जो आपको जानना जरूरी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने LLB एंड BTech कोर्सेज में पहली बार NRI और NRI स्पॉन्सर्ड कोटे के तहत एडमिशन्स देने के लिए हामी भर दी है। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। तो अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो कि इस कोटे के तहत एडमिशन लेना चाहता है LLB में या फिर BTech में, तो इस लिंक पर, जिस लिंक को मैं अभी बता रही हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकता है। https://lurn.lkouniv.ac.in तो जल्द से जल्द आप आवेदन करें और ये ध्यान रखें कि तकरीबन 38 सीटें बीटेक में और LLB में 30 seats are vacant।

6:55 मिनट हो गए हैं और घड़ी मुझसे बार बार कह रही है कि भाई अब शाम अवध को यहीं पर विराम दो, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो कि बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 7 बजने का, और क्यों ना करें, 7 to 8 सिर्फ उनका टाइम जो होता है। यस गाइस, अब से बस थोड़ी देर में आपसे फिर से मिलने वाली हूँ लेकर हेलो एफएम, मतलब आपकी बातें, आपकी पसंद के गाने, इन अदर वर्ड्स बस आप ही आप इन द प्रोग्राम हेलो एफएम। तो फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम से तो मुझे टाटा बाय बाय कहना होगा, लेकिन थोड़ी देर में बस हेलो एफएम में कहूंगी फिर से हाय हाय।

नमस्कार, अब सुनिए टॉप 10 समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाव और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी डीजीपी बना दिया गया है। श्री कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। आगरा में लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने ताजगंज क्षेत्र के पुराना मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड निदेशक

कोविड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज मद्य निषेध विभाग द्वारा लखनऊ में जन जागरूकता रैली व पदयात्रा का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 7:20 पर। जुड़े रहिए एफएम रेनबो से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
2: पुरानी जींस और गिटार
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है रते आश के जगा
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
6: सात बजकर पांच मिनट ये लीजिए सात बजकर छह मिनट हो गए और मैं जानती हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि धड़कन लखनऊ की तो आपका भी दिल थक थक थक थक थक थक ऐसे होता है स्पेशली इस पूरे घंटे सात से आठ बजे के बीच क्योंकि जितना इंतजार हम करते हैं आपसे मिलने का उतना ही इंतजार आप भी करते हैं ऑन एयर आने का सो वेलकम फ्रेंड्स ये पूरा घंटा है बस आपके नाम 7 टू 8 हेलो एफएम प्रोग्राम में होंगी आपसे बातें और साथ ही साथ सुनाए जाएंगे बस आपकी ही पसंद के सॉन्ग्स सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस सी कि इस वक्त पहले पहले कॉलर कौन है हमारे हेलो
7: हाँ बहन जी श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव
6: जी तिवारी जी नमस्कार सो पहले पहले कॉलर है कैसा फील हो रहा है आपको
7: हाँ बहन जी हम हमेशा करते हैं मगर नहीं पाता आज मिला है
6: क्या बात है तो मेरी खुशकिस्मती कि आज के दिन आपका फोन मिल गया और आपसे बातचीत हो गई तिवारी जी क्या करते हैं आप
7: हम बहन जी खेती बाड़ी का काम करते हैं
6: तो खेती बाड़ी के लिए ये वाला जो मौसम है जो आज हो गया ये अच्छा है या फिर बुरा
7: अच्छा है बहन जी
6: अच्छा मतलब बारिश होनी जरूरी थी
7: हाँ बारिश जरूरी थी
6: क्या बात है
7: पत्थर ना गिरे बहन जी
6: नहीं तो ले पत्थर नहीं गिरेंगे लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड हम ऊपर वाले से यही मनाते हैं कि फसल बड़ी अच्छी होनी चाहिए भाई है ना
7: बहन जी डेडिकेट करना चाहते हैं
6: प्लीज करिए डेडिकेट लेकिन गाना भी तो बता दीजिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं
7: हाँ बुद्धा मिल गया का है रात कली ख्वाब में आई और गले का हार बनी
6: क्या बात है तो डेडिकेशन किसको है
7: आपको सबसे पहले आपकी टीम को बाबू अंसारी भाई हैं परवीन अंसारी हैं और नवनीत भाई हैं संदीप हैं ओंकार हैं और रिंकी पिंकी और संतोष
6: तो ये सारे तो हमारी रेगुलर श्रोता हैं तो क्या इनसे आपकी बातचीत होती रहती है
7: हाँ बहन जी हमेशा हमारे नाम करती है तिवारी

0: तो
1: बाबू अंसारी भाई श्री प्रकाश तिवारी कहते हैं।
0: कितनी अच्छी बात है आज के वक्त में जब लोग अपनों के नहीं होते तो ऐसे में रेडियो पर नाम सुन करके आपने
1: एक दूसरे से बहन जी जुड़े हैं।
0: एग्जैक्टली ये कितनी अच्छी बात है और आज के टाइम मुझे लगता है ना कि आपके जैसे लोग ही दुनिया को इतना खूबसूरत बनाए हुए हैं क्योंकि वाकई जब आप अपनों से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते ऐसे में आप सब एक दूसरे को देखे बिना मिले बिना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और
1: नहीं पर मिलता नहीं है तो यही कहते हैं कि मतलब मिल जाए जल्दी से तो सबको हम वो कर दें।
0: तो जी मिल गया मिल गया मिल गया और अब गाना भी चल गया चल गया चल गया चला दे आपका गाना।
1: थैंक यू
0: ओके जी वेलकम है जी और थैंक यू टू यू कि आपने अपना कीमती वक्त

0: सात बजकर दस मिनट और ठीक पचपन सेकेंड और हमारे साथ इस वक्त है आज की दूसरी कॉलर. हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते, कौन बोल रही है? रोहिणी, आपका नाम बहुत सुना सा नहीं लग रहा है, इसका मतलब बहुत रेगुलरली आप कॉल नहीं करती है ना?
1: नहीं मैम, पहली बार कॉल लगी है हमारी.
0: क्या बात है, तो कॉल किया ही नहीं पहले की लगी नहीं?
1: जी मैम, एक महीने से कॉल कर रहे थे, पहली बार लगी है.
0: तो आज मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम कॉलर्स हैं उनका या फिर कहना चाहिए कि मेरा अच्छा दिन है. जी शुक्रिया. तो एक्चुअली मुझे आपको करना चाहिए, आपका वक्त इतना कीमती है और आप अपना वक्त हमें देते हैं, हमें कॉल लगाते हैं, हमसे अपनी बातें करते हैं, शेयर करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं ना. तो रोहिणी क्या करती है आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ.
0: कौन सी क्लास में है? अच्छा, कभी कभी ये नहीं लगता कि क्या पढ़ाई करनी पड़ रही है, मतलब सुबह शाम सुनते रहो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी लगा ऐसा? तो पढ़ाई करना पसंद है, कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि अरे छोड़ो कहाँ पढ़ाई, सुबह शाम दोपहर रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी नहीं लगा? रोहिणी, रोहिणी जी, रोहिणी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल किया और इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की. अपना गाना किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी क्या?
1: मेरी बहन है मोहिनी.
0: तो आपकी बहन को और आपके सारे दोस्तों को और आपको डेडिकेटेड ये ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म बाजीगर से. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय.

अगर आप भी इनकी तरह इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो सोच के रहे, हमारा फोन नंबर जल्दी से नोट करिए, 223-8852 एंड 223-8845। ये दोनों हमारे स्टूडियोज के नंबर्स हैं। एंड यस, क्योंकि ये लैंडलाइन है तो आपको, अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं, तो इन नंबर्स के पहले 0522 जरूर ऐड करना होगा। 7:13 और 55 सेकेंड हो गए हैं। मैं हूँ ज्योति और आप मुझसे बातें कर रहे हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम में, हेलो एफएम में, ओनली ऑन एफएम रेनबो।

अब से थोड़ी देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे वो प्रोग्राम जो आपके दिल के बहुत करीब है यानी हेलो एफएम।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आशिकी जगा
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो
4: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार कहा देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है
5: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है पानी पीते रहिए धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं
4: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना छाछ लस्सी सत्तू शरबत बेलपन्ना पनाकम नीरमोर सांभरम कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है
5: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए
4: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा महाराष्ट्र के अल्फांजो गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम

0: की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
0: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
3: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP

0: गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
1: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता, और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
4: सो जी वेलकम बैक है जी। 7:32 और ठीक 16 सेकेंड्स आपके साथ है आपकी अपनी दोस्त ज्योति इन द प्रोग्राम हेलो एफएम। और हमारे साथ कौन है? हेलो हेलो हेलो जी हेलो हेलो। तो हमारे एक बड़े प्यारे से दोस्त धनी राम जी इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, लेकिन मुझे लगता है कि इंतजार इतना लंबा हो गया कि उन्हें कहीं जाना पड़ गया। इस वक्त कौन है हमारे साथ? हाँ जी यार,
5: हेलो नमस्ते दीदी।
4: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
5: जी दीदी, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम।
4: कौन बोल रहे हैं?
5: नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार, जिला बारामगी से बात कर रहे हैं।
4: एक मेरा कहना मानेंगे दोस्त
5: जी? बताइए
4: प्लीज, जरा रेडियो सेट से दूर थोड़ा सा।

0: अब ठीक है?
1: हाँ
0: बनाइए दीदी।
1: आपकी आवाज में इतनी खुशी झलक रही है और फिर मुझे ये बड़ा खराब सा लगता है कि इतना खुश होकर के आप फोन करते, इतने एफर्ट्स डालते और फिर आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़े, तब तो बड़ी तकलीफ की बात है ना
0: जी दीदी।
1: आपके यहाँ कैसा मौसम है?
0: जी दीदी, हमारे गाँव का मौसम तो बड़ा ही खुशनुमा है और आज आंधी थोड़ी आई थी हल्की, उसके बाद मौसम फिर उसी तरह हो गया, घाम निकलने लगा और मौसम लेकिन काफी खुशनुमा था आज।
1: तो जब अच्छा सा मौसम होता है तो फिर क्या करते हैं, पकौड़े शकोड़े खाते हैं या फिर घूमने निकल जाते हैं?
0: जैसे मौसम होता है तो मान के चलो जैसे पकौड़ी है, चाय है, तो ये चल जाता है। जी जी जी जी।
1: आपके आसपास बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है, कहाँ हैं आप?
0: जी जी दीदी, हम अपनी शॉप पे बैठे हैं।
1: और शॉप
0: आसपास है ना,
1: तो शॉप पर अपने आप कस्टमर्स को छोड़ करके फोन पर बात कर रहे हैं।
0: जी जी,
1: इसीलिए शायद आपने रेडियो बंद नहीं किया हुआ है अभी भी, ताकि सब लोग सुने कि आज तो आप हो गए सुपरस्टार। मुबारक हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब जल्दी से बता दीजिए कि गाना कौन सा सुनना है।
0: ये गाना तो सुनना चाहेंगे।
1: कौन सा?
0: मुझे कुछ नहीं भाता जब प्रेम रोग लग जाता।
1: ये कौन सी फिल्म का है?
0: ये फिल्म का नाम तो दीदी नहीं पसंद है लेकिन गाने के बोले
1: हैं।
0: कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं जब भाता जब प्यार लग जाता, ये वाला सॉन्ग है।
1: अच्छा जी, ठीक है, तो इसे आप किसे सुनाना चाहते हैं?
0: सबसे पहले मोहम्मद सद्दाम भाई और सईद भाई है, मेरे पिताजी का नाम है मुबारक अली।
1: ओके।
0: अमजद भाई मेरे छोटे भाई।
1: तो पिताजी को आप प्रेम रोग वाला गाना सुनाना चाहते हैं? अच्छा किया, नाम ले लिया। पिताजी से भी बहुत खुलकर बात करनी चाहिए, वैसे भी माहौल बहुत बदल गया है। अच्छा, पिताजी से डर लगता है कभी आपको?
0: जी जी, वो हमारे सामने ही बैठे हैं, जैसे आपकी बात सुन रहे हैं वो बहुत।
1: अच्छा, क्या बात है। तो पिताजी से डर लगता है कि आपको बस एकदम स्मूथ टाइप का आपका रिलेशनशिप है?
0: जी डर तो लगता है लेकिन वो नहीं मना करते, क्योंकि एसएम से मतलब मेरा जुड़ाव रहता है तो वो जानते हैं, तो वो मना नहीं करते हैं। कहते हैं
1: एफएम के अलावा, एफएम के अलावा कभी डांट पड़ती है?
0: जी जी नहीं दीदी, अब तो नहीं, पहले जब छोटे थे तो डांट पड़ती थी।
1: तो जब डांट पड़ती थी तब यही लगता होगा ना कि बड़े हो जाएंगे तो डांटनी पड़ेगी, अब बड़े हो गए तो डांट पड़नी बंद हो गई?
0: जी जी,
1: पक्का एकदम बंद हो गई?
0: जी जी, बाकी जैसे मतलब जैसे कभी कदर कोई बात हो जाए तो मतलब बक देते हैं, बाकी ज्यादा नहीं बकते हैं।
1: वही तो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है बच्चों की, ये सोचना कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें डांट पड़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि माता पिता का पूरा हक है हमको डांटना, हमें समझाना, ये सही है ये गलत है ना।
0: सही बात है दीदी।
1: तो इसी बात पर आपकी पसंद का गाना, आपने फिल्म का नाम नहीं बताया लेकिन मैंने ढूंढ लिया दोस्त, प्रेम रोग। तो लीजिए भाई, एंजॉय करिए अपनी पसंद का गाना।

0: 7:42 और ठीक 10 सेकंड्स आप हैं ज्योति के साथ और सुन रहे हैं वो वाला प्रोग्राम जो कि दरअसल आप ही का है। यस आपका है क्योंकि इसमें आप ही की आवाज तो दूर दूर तक गूंजती है। आपकी पसंद के सॉन्ग्स प्ले होते हैं एंड आपकी दिल की बात हम सब जानते हैं। सो लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं आलम साहब अहमद अमराई गांव से बोल रहा हूँ।
0: दोस्त एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आज के प्रोग्राम में, जितने भी कॉलर्स आए हैं उनका पहली या दूसरी बार ही फोन लगा है। आपका मतलब कितनी बार लग चुका है फोन? तकरीबन
1: मेरे ख्याल से करीब 3 महीने बाद फोन मिला होगा।
0: अरसे बाद मिला है
1: जी,
0: तो बहुत अच्छी बात है। अपना नाम तो आपने बताया, मुझे बताइए करते क्या है?
1: मैं खेती किसानी से जुड़ा हूँ और मैं कृषि सेवा केंद्र चलाता हूँ।
0: तो कृषि सेवा केंद्र में क्या आप किसानों को गाइड करते हैं कि कैसे करके उन्हें?
1: हाँ ये सही आपने पूछा
0: जी।
1: हम लोगों ने ये किसानों को डील करते हैं, फर्टिलाइजर डीलर हैं और इससे जो है सी साइड का काम करते हैं और जो भी खेत के लोग हैं उनको जो है खेती संबंधित

0: जो होता देते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सलाह दी कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे कर लो, और जो आपके किसान भाई हैं उन्होंने कहा आप हमें मत बताइए, हमें बहुत पता है, ऐसा कभी हुआ है?
0: जी
1: ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि जिंदगी में जब आप किसी को सलाह देने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला उतने ही स्पॉटिंग वे में, इतने ही खुश होकर के आपकी सलाह को ले। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को सलाह दी कि आप ऐसे ऐसे करके अपनी फसल की देखभाल करिए और दूसरे ने कहा ना हमें मत बताइए हमें क्या करना है, ऐसा हुआ है कभी?
0: नहीं, ये आप बहुत अच्छी, पहले तो मैं भी पैसे से किसानी करता हूँ और मैं अपने में बहुत अच्छी से सब्जी उगाता हूँ और अच्छा जब प्रदर्शन होता है तो लोग देख के ये लोगों में कहना होता है कि देखो इन्होंने अपने सीड बढ़िया लगा लिया।
1: ओके, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप पहले खुद करके दिखाते हैं उसके बाद में लोगों को कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कागजी या फिर हवाई बातें नहीं करते हैं, इसलिए आपकी बात का बहुत असर होता है। बड़ी अच्छी आपने बात कही दोस्त। और गाना जरा बता दीजिए कौन सा सुनाने वाले हैं हम सबको आप?
0: मैम रफी साहब का गीत है और फिल्म है अर्पण। और मैम एक आपसे गुजारिश करूंगा।
1: जी जी बिल्कुल, हुक्म करिए।
0: प्रोग्राम हेड अगर जो सुन रहे हो हमारी बात, तो जो आपके उच्च अधिकारी महोदय जी है उनसे कहना चाहूंगा कि प्रोग्राम हेलो एफएम है, इसमें कुछ दिनों का जैसे लोग रोज कॉल करते हैं तो ये एक लिमिट होनी चाहिए कि 15 दिन, 1 महीना का अंतराल का वनवास होना चाहिए।
1: ओके, प्रतिबंध लगा देना चाहिए,
0: लोगों को मौका मिलना चाहिए।
1: आपकी बात से मैं टोटली इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन एक चीज मैं और भी कहूंगी कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई बैन या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो एक चीज और भी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो अगर हमारा फोन आज लग गया है या हमारा ईमेल आज पढ़ लिया गया है तो हम खुद भी हमारे दोस्तों को मौका दे सकते हैं।
0: पहले एफएम ये रेनबो डिजिटल नहीं था, अब ये पूरा ऑल इंडिया दुनिया में जाता है तो इसको लोग सब लोग पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं।
1: इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ वही वही लोग बार बार रिपीटेडली कॉल करते, ये कहने का मतलब है आपका, है ना। लेकिन देखिए आज का जो प्रोग्राम है वो एक एक्सेप्शन है। आपने भी बोला अरसे बाद फोन लगा, आपके पहले के भी कॉलर्स ने कहा जी हमारा पहली पहली बार फोन लगा है, है ना। तो हम एक काम करते हैं, बजाय इसके कि हम कोई बैन लगाएं, क्यों ना हम सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करें, अपने आप से समझे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ना। हम कर सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: हम मॉनिटरिंग
0: होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे किसी दिन मैं खेती किसानी के बारे में और भी जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है, घर में थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेती हूँ।
0: नहीं, अगर आप किचन गार्डन से संबंधित कोई भी पूछना चाहते हैं तो मैं आपके यहाँ प्रोग्राम में भी आ सकता हूँ और वहाँ से भी कर सकता हूँ या भी फोन आप बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बाय बाय। फिल्म अर्पण का ये सॉन्ग आप तक पहुंच रहा है और मुझे पसंद जरूर है, लेकिन ये मेरी पसंद से आप तक नहीं आ रहा है क्योंकि इस प्रोग्राम में एक भी गाना मैं अपनी पसंद का बिल्कुल नहीं प्ले कर रही। तो अगर आपको अपनी पसंद का गाना सुनना है, साथ ही साथ दूर दूर तक अपनी बात पहुंचानी है तो सोच कह रहे जल्दी से हमें फोन मिलाइए, अभी भी हमारे पास अच्छा खासा वक्त बचा है। 7:47 और ठीक 16 सेकेंड्स, मैं ज्योति आपके साथ आपकी कॉल्स का वेट करते हुए। चैनल का नाम है एफएम रेनबो, प्रोग्राम का नाम हेलो एफएम एंड ये सबसे थोड़ी देर में अनवारुल है बिल्कुल तैयार लेकर ढेर सारे प्रोग्राम्स की बौछार। तो बाहर की बौछार के साथ साथ इनके म्यूजिक की बौछार में भी भीगने को हो जाइए बिल्कुल तैयार।

0: उन्नीस सौ तिरासी की फिल्म अर्पण का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया हुआ था अनवर का, आप तक पहुंचा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। बड़ा शोर है आपके आसपास?
1: जी,
0: ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं ना?
1: जी बच्चे हैं।
0: तो ये कौन है आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं?
1: ये मेरे भांजे हैं, भांजी हैं।
0: तो सिस्टर आई हुई हैं छुट्टियों में घर, नानी, नानी हाउस है ना, नानी के घर। कैसा लगता है जब घर में बहनें आती हैं छुट्टी के टाइम पर और भांजे भांजियों से पूरा पूरा घर एकदम गुलजार हो जाता है, कैसा महसूस होता है?
1: जी दीदी बहुत अच्छा लगता है।
0: इनमें से कौन सा भांजा या भांजी आपको सबसे ज्यादा तंग करता है?
1: वो छोटा वाला।
0: क्या नाम है उसका?
1: उसका नाम हम्मद।
0: और वो क्या करता है जिससे कि आप तंग हो जाते हैं?
1: जी वो कहता मामू देर देर वो ले दो, वो ले दो, वो ले दो।
0: कुछ ना कुछ मांगता ही रहता पूरे टाइम।
1: जी
0: ऐसा होता है। और मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताऊं, किसी से बताएंगे तो नहीं?
1: जी बताइए।
0: बताइएगा नहीं? पक्का पहले पिंकी प्रॉमिस करिए, बिल्कुल नहीं बताएंगे ना?
1: जी नहीं।
0: मेरा सारा बचपन ना, सारी छुट्टियां नानी हाउस ही बीती है। सर्दी की छुट्टी नानी हाउस, गर्मी की छुट्टी नानी हाउस। और मजे की बात है कि यहाँ लोकल मेरी नानी का घर नहीं था, अच्छी खासी दूर था, तो मैं अपने घर से ज्यादा तो अपनी नानी के हाउस में पाई जाती थी। इसीलिए शायद अपने मामा मामी की बड़ी दुलारी थी, हूँ आज भी हूँ। तो जहाँ कभी भी ये बात होती है कि बहनें आई हुई हैं तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती।

0: तो हाँ जी हाँ जी, आए हुए हैं, बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। यकीन जानिए, वो आपसे सामान नहीं मांग रहे, वो मेमोरीज बना रहे हैं, यादें बना रहे हैं। तो खूब एंजॉय करिए और मुझे बता दीजिए कि गाना आपने कौन सा सुनना चाहा है।
1: जी गाना सुनना चाहेंगे, अगर इस दुनिया में जाने मिलते हैं।
0: अच्छा, जब आपके भांजे भांजी आपको परेशान करने लगते हैं तो आप कैसे उन्हें डील करते हैं? डांटते हैं?
1: जी
0: डांट देते हैं? और पिटाई?
1: जी नहीं, नहीं
0: पिटाई
1: डांट देते हैं, डांट देते हैं
0: पिटाई तो नहीं करते?
1: जी,
0: पिटाई करते हैं कि नहीं करते?
1: पिटाई कम करते हैं
0: लेकिन कर लेते हैं।
1: जी।
0: वैसे आप करते क्या है, पढ़ाई करते हैं कि काम करना शुरू कर दिया है?
1: जी पढ़ाई कर चुके हैं, काम कर रहे हो?
0: क्या काम करते हैं दोस्त आप?
1: हेलो
0: जी, क्या काम करते हैं दोस्त?
1: जी, मेरी परचून की दुकान है।
0: तो भाई बढ़िया से अपनी दुकान से अच्छी अच्छी चिज्जी खिलाते रहिए अपने भांजे भांजी को, उनके चाइल्डहुड को, उनके बचपन को मेमोरेबल यादगार बनाते रहिए और अपनी पसंद का गाना रेनबो के संग गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय।
1: थैंक यू।
0: बातें अभी पूरी नहीं हुई है, ढेर सारी बातें आपसे करनी थी, कुछ आपकी सुननी थी, कुछ अपनी कहनी थी, लेकिन ये जो घड़ी है ना, कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी का नहीं हुआ, लेकिन ये जो वक्त आपके साथ बीता ना, वो बीता बड़ा खूबसूरत, बड़ा मीठा मीठा। 7:55 हो गए हैं, तो अब ज्योति चाहेगी आपसे इजाजत। अगर आज आपका फोन नहीं मिल पाया, नेवर माइंड, कल ट्राई कर लीजिएगा। ये प्रोग्राम तो हर दिन आता है ना। सो ऑन दिस नोट मैं चली, बहुत जल्द फिर मुलाकात करूंगी आपसे लेट नाइट शोज में। और हाँ, वादे के मुताबिक अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, आपसे मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार तैयार सदाबहार है अनवारुल हसन। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिएगा।
2: आफ्टर दिस सॉन्ग तारीफ करी तो अब आगे पीछे, क्योंकि आपने वो जो चिज्जी वाला वर्ड बोल दिया ना, तो हमने कहा जिज्जी चिज्जी हमको भी खिला दो।
0: चलिए, ये जिज्जी अपने बस्ते में जो चिज्जी लेकर आई अभी आपको खिलाती है। तो भाई एंजॉय करते रहिए आप सब, और ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला यही जारी रहने वाला है अनवारुल के साथ।

नमस्कार। रात के 8 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार शासन ने जनहित में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया है। राजीव कृष्ण वर्तमान में निदेशक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के पद पर कार्यरत होने के साथ साथ कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे। इस नियुक्ति के बाद पुलिस महकमे और शासन स्तर पर कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। रामपुर में रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय द्वारा कबीर जयंती के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन पुस्तकालय के निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनी में संत कबीर के जीवन, दर्शन, काव्य, लोक चेतना और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में उनके अमूल्य योगदान से संबंधित दुर्लभ सामग्री का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य संत कबीर के विचारों को जन सामान्य, शोधार्थियों एवं युवा पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनकी शिक्षाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

दिल में किसी की राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। मुस्कुराते हुए वक्त के शफाक दामन में लिपटी खुशबुओं की सौगात लेकर दिल के दरवाजे पर ना जाने कौन आया था जो मेरे एहसास के जंजीर हिलाकर चला गया। हवा में अभी तक उसकी आहट है और इसीलिए आज हवाओं में थोड़ी सी ठंडक भी आपको महसूस हो रही है। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर आबशार में आज मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ। उबोल कीजिए हमारा आदाब,

इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं दरिया हूं

मुझे मंजिल पता है, समंदर में उतर जाना है मुझको, अब इतना काम कर जाना है मुझको, मैं खुशबू हूं बिखर जाना है मुझको। और किसी को याद करते हुए देर तक जागना और आंखों में कुछ छुपा लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी खूबसूरत आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्यों ना इन खूबसूरत से मोतियों को जो कभी कभी तुम्हारे नैनों में छलकाते हैं रोक दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर में मोती पलते हैं। समंदर की तलहटी में पलते हुए मोतियों की सौगात तो कभी खुशबू की मानिंद बिखरते इंसानी जज्बात। 8:19 और 28 सेकेंड प्रोग्राम आबशार, आप सुन रहे हैं जी हाँ, अनवारुल हसन के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

क्या लगता है, तुम बता नहीं रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा। जज्बात का इजहार करने में अक्सर अल्फाज कम पड़ जाते हैं, या कभी कभी जब कोई फसाना जुबान पर लाया ना जा सके तो भी माथे की शिकन, होठों की मुस्कुराहट या सपाट चेहरे पर बनते बिगड़ते जो नक्शे हैं, वो दिल का हाल आया कर देते हैं। इसके बाद भी कोई अनजान बना रहे तो फिर इसमें खता किसकी, आप खुद तय कर लीजिए। अनजान तुम बने रहे ये और बात है, ऐसा तो क्या कि तुमको हमारी खबर ना हो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आठ बजकर 32 मिनट हो चुके हैं। जब रात की हवा चुपके चुपके से बातें करेगी, जब शहर के चिराग थोड़े धीमे धीमे रोशनी में ढल जाएंगे, मैं वापस लौट आऊंगा। वो वादे जो हमने अंधेरों में किए थे, उनका हिसाब लेकर लौटूंगा। इसलिए घबराना मत, बस इंतजार करना। हर कदम जो मैंने यहां छोड़े थे, उनके निशान भी, उन्हीं निशान को मैं रास्ता बनाकर लौट आऊंगा। बस तुम खिड़कियों पर खड़े होकर इंतजार करना, और अगर हो सके तो दरवाजों को बंद मत करना, वो दरवाजे जिनसे वापसी हो सकती है।

खिड़कियों से महक आती रहेगी तुम्हारी सांसों की तरह, और रास्ता तकती रहेंगी तो अदद सोनी आंखें। अगर तुम सो जाओ तो ख्वाबों में मिल लेना, और अगर जागती रहो तो रोशन एक रात जो और रोशन हो जाएगी। तब मैं लौट आऊंगा। आठ बजकर 40 मिनट और 41 सेकेंड, मैं सचमुच लौट आऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे। 9 बजे लौटेंगे पॉप टाइम के साथ, और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक एक खुशबू महसूस करेंगे रजनीगंधा की। तो फिलहाल इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, बहुत जल्द लौटते हैं। तो बस अब ये सवाल मत कीजिएगा कि कब लौटेंगे, लौटेंगे यकीन रखिए। शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को

0: प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत

0: संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन के आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है।

मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
1: वो भूली दास्तान फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: अंधेरी तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जी जहां रेनबो है वहां वीराने में बहार है और रात 10 बजे जब रजनीगंधा आप तक पहुंचेगी तो उस महक के साथ तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है रात। फिलहाल वक्त है पॉप टाइम का। 9:04 हो चुके हैं। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं। 100.7 FM रेनबो सुन रहे हैं आप और आपके ढेर सारे मेल हम तक पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं, तो बस हम भी शुरू कर देते हैं ताकि आपके जो मेल आने का सिलसिला है, मुझे मालूम है कि वो इतना बढ़ता चला जाता है कि जब हम प्रोग्राम वाइंड अप करने की तरफ पहुंचते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी जल्दी से आपके मेल पढ़ने होते हैं। पहला मेल जो हम तक आज पहुंचा हमारे इस प्रोग्राम में 5 मिनट पहले 8:58 पर ही आपने मेल कर दिया सुल्तान रजा साहब ने। और अस्सलाम वालेकुम अनवारुल सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर जी। लखनऊ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ बरेली में तो मौसम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा है। आपका छोटा दोस्त सुल्तान रजा इकबाल रजा ज़ीशान रजा अफजल रजा मोनिश और सादिक मम्मी पापा संजीदा शाहना और छोटी सी समीरा बाबू। चलिए हमने शामिल कर लिया आपका मेल और मौसम वैसा ही है जैसे आपके यहाँ। ठंडी ठंडी सी बेहतरीन सी हवाएं चल रही हैं, थोड़ी सी आंधी आई, फिर थोड़ा सा पानी बरसा, बहुत ज़्यादा नहीं बरसा, दिल्ली में पानी बहुत ज़्यादा बरसा है आज ये खबर थी। और लखनऊ का मौसम बहुत खूबसूरत है और आपके आसपास का भी। अजनबी गलियों से हम गुजरा नहीं करते, दिल दिया और लिया नहीं करते, ये प्यारा सा रिश्ता सिर्फ आपसे है, वरना इतना याद हम किसी को किया नहीं करते। ये आप ही ने हमें लिखकर भेजा है तो हमने इसे भी पढ़ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रपाल मिश्र जी आपका मेल भी आ चुका है। अनवारुल भैया को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपके आने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है, गांव के बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर सुनते हैं और आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समस्त ग्रामीण श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको कि आप सब मिलकर सुन रहे हैं। ग्राम अमृता दतूनापुर से आपने ये मेल हमें इंद्रपाल मिश्रा जी, दिवाकर अवस्थी, शिव प्रकाश, हरिप्रकाश, आशा, अवनीश और विनीश जी ने किया।

हमेशा की तरह। और आप लोग मिलकर सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इस मेल मिलाप को यूं ही कायम रखिएगा। विजय पाल यादव जी ग्रामवा पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से लिख रहे हैं। वाह वाह, बड़ा बढ़िया आपने मोटा मोटा लिखकर भेजा है, बोल्ड अक्षरों में तो बहुत आराम से दिख जाता है हमें। आदरणीय भैया अनवारुल जी को मेरा सादर प्यार भरा सलाम। उफो, इतना ज़्यादा। चलिए, आपको भी बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आज के दिन की भी, और बेहतर गुजरा हो। साथ ही हमने लिख दिया विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो देखिए तभी होंगी इस दिवस की जब वाकई हम इस पर अमल कर पाएंगे। बिल्कुल, जो 31 मई का दिन होता है वो हमेशा पूरी दुनिया मिलकर इसे तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाती है। तंबाकू के जो खतरे हैं उनसे जागरूकता समाज को कैसे मिले, इस पर बहुत सारे कार्यक्रम भी आज आयोजित किए गए कई जगह पर, बहुत सारे सेमिनार, कुछ गोष्ठियाँ, और हमारे रेनबो से भी आपको इस बारे में आगाह ज़रूर किया गया है। लेकिन ये एक सेल्फ कंट्रोल की बात होती है कि हम कैसे खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं और चीज़ों से बच पाते हैं, या बहुत ज़्यादा इतना तो कि जिससे नुकसान पहुंचे। वैसे तो बिल्कुल छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। तंबाकू सिगरेट या किसी भी रूप में नशे का सेवन न केवल स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, या आपने लिखा, मैं आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं, बल्कि हंसते खेलते परिवारों और युवाओं के सुनहरे भविष्य को भी अंधकार में ढकेल देता है। आज से ही संकल्प ले, तंबाकू को ना। आबशार प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा आपको, और पॉप टाइम का आनंद ले रहे हैं, बहुत ही लाजवाब लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई कर दी, हमारी हिम्मत बढ़ा दी, हम और अच्छे से करेंगे अब काम। रेनबो कैफे रही है, आज पॉप टाइम है। हमने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया भी था कि जो रेनबो कैफ़े है ना, रेनबो कैफ़े सिर्फ मंगलवार और शनिवार को हम यहाँ से आता है, क्योंकि दोनों में कुछ फ़र्क है, जो म्यूज़िक का है वो फ़र्क है। इसमें हम पॉप टाइम में पॉप म्यूज़िक बजाते हैं, जो हिंदी पॉप है, कोशिश करते हैं वो आप तक पहुँचाएँ, और उसमें कई सारे अलग अलग जो ज़बानें हैं, कुछ बोलियाँ हैं, उससे उसके जो गाने बने हैं वो गाने आप तक पहुँचाए जाते हैं। बहुत ही ढिंचक वाले गाने आप सुनते हैं। आपका ये कार्यक्रम रोज सुनता हूँ, मुझे इस कार्यक्रम के गीत अच्छे लगते हैं। ग्रामवा पोस्ट हरहरपुर मडकली जिला बरेली से ये मेल हम तक पहुँचा। शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर वही कहूँगा कि आपने हमें मेल किया, आपने मेहनत की, तो हम ज़रूर शामिल करेंगे, और शुक्रिया कि आपने अपनी भागीदारी हमारे साथ रखी। मैं अलीगंज सुल्तानपुर से सुन रहा हूँ जी। अलीगंज हमारे लखनऊ में भी है, चली सुल्तानपुर में भी है, ये आपके ज़रिए हमें पता चल गया। केसरी नंदन जी ने हमें मेल किया है, और साथ में छोटू यादव जी भी हैं जो संगीत का आनंद ले रहे हैं। तो संगीत का आनंद तो आप भी ले रहे होंगे, इससे छोटू जी ले रहे हैं, ये कहिए कि दोनों लोग ले रहे हैं। चलिए, बहुत तो बढ़िया तरीके से आनंद लेते रहिए, और थोड़ी सी जो बारिश जैसे ही हो जाती ना, तो हम लोगों का भी थोड़ा सा मूड बदल जाता है। और वैसे भी आजकल ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें लोग जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर उसमें नहाने का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग पूल में नहाते हैं, कुछ लोग तालाब में नहाते हैं, और बहुत मज़ा भी आता है। और आजकल तो वाटर पार्क भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो बस ऐसे ही जब वहाँ पर नहाइएगा तो ये वाला गाना गा लीजिएगा, तो आपका जो स्नान है वो और भी ज़्यादा सुपर हो जाएगा। Now

चलिए एक जानकारी बढ़ा दी उन्होंने कि स्विमिंग पूल में नहा के भी नमकीन हो जाते हैं। अभी तक समंदर में नहा कर होते थे, ये तो बहुत पहले से जानकारी थी, अब उसी दौर के हैं। और इसके अलावा भी अगर आप जो है कहीं पर वाटर पार्क में नहा रहे हैं ना, तो थोड़े से आप जो है क्लोरीनेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरीन पड़ी होती है। तो अगर वहाँ नहा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर मतलब कोई ऐसा ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्लोरीन ज़्यादा हो जाती है और आप जब बार बार उसमें आँखें खोलते हैं ना, तो थोड़ी सी आँखें आपकी लाल हो सकती हैं, इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है, है ना। तो थोड़ा सा इसका भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। 9:12 और 6 सेकंड हो चुके हैं, आप पॉप टाइम सुन रहे हैं अपने दोस्त अनवारुल हसन के साथ। और एकदम से मेल प्रकट हुए, केवल एक मेल अभी दिख रहा था, एकदम से 6 आ गए और 9:11, 9:11, 9:11, 9:10 यानी ये टाइम है आपका। वकील अहमद साहब आपका मेल सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सब इसके बाद सबसे पहले 9:07 पर जो है आपका मेल प्रकट हुआ है हम तक। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और आपके हमें मेल अच्छे लगते हैं। आप कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पॉप टाइम अच्छा लग रहा है। तूफान हमारे यहाँ आया था, बारिश होने से किसानों को कुछ राहत हुई है, यानी थोड़ा सा जो आंधी है अगर वो तेज़ थी तो जाहिर है वो तूफ़ान का ही एक रूप है, लेकिन इतना ज़्यादा तूफ़ान मेरा ख्याल है नहीं कह सकते, हालांकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है कि सीतापुर में क्या हुआ जहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि आपने वकील अहमद साहब ने जो है ये कटका हथूरी ज़िला सीतापुर से हमें मेल किया है। साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शिमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशां सिद्दीकी, अहमद नवाब। देखिए हमें पता है अहमद नवाब वहाँ नहीं रहती हैं, गुलफशां सिद्दीकी भी नहीं रहती हैं ना, कहाँ रहती हैं ये मुझसे ज़्यादा आपको पता है। तो चलिए, बारिश हो गई आपके यहाँ भी और थोड़ा सा आपको ही मज़ा आ गया, ये अच्छी बात है, तो इस मौसम का आनंद लीजिए। तालिब अंसारी साहब, आपका मेल भी आ चुका है, राजा कटरा बाराबंकी से आपने लिखा है, गुड इवनिंग आर जे अनवारुल हसन सर जी, बड़ा बोल बोल लिख दिया। फर्स्ट सॉन्ग नाइस, यानी पहला सॉन्ग आपको अच्छा लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, और थोड़ी तबीयत नासाज है लेकिन अच्छा लग रहा है, फीवर है आपको, चलिए आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है उसका सेवन अगर ना करें बचें, और आपने डॉक्टर को दिखाया होगा तो डॉक्टर जो कहे आप उनकी सलाह ज़रूर मानिए। आसिफ अंसारी हैदराबाद से उन्होंने ये मेल किया है, साबिर अंसारी भी साथ में कानपुर, ये दो नाम आपने और भी लिखे हैं, आपने तो मेल हमें बाराबंकी से किया है, ये यानी आप लोग कई नाम और लिख देते हैं, थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये मेल किसने किया है।

एक मेल और आ गया, ओमकार सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजा जी, नवनीत हरिकेश लखनऊ से, पिंकी रिंकी पिंकी रायबरेली से, संतोष मौर हरदोई से, ममता हरदोई से, जिन्होंने नीचे लिखा, जबकि मेल इनका नहीं है, मेल विनीत कुमार लिखा हुआ है, विनीत कुमार। अच्छा, आपका जो मेल आईडी है ना, तो बी ई एन आई टी हो गया, तो वो विनीत कुमार शायद हो गया है। विनीत कुमार जी ने हमें ये मेल किया है, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, और कह रहे हैं कि कैसे हैं प्रोग्राम करने वाले, ले आपने मेरा नाम लिखा है, अनवारुल हसन मेरा नाम है, आपको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा ऐसे। गुड इवनिंग, आपने लिखा है, सादर प्रणाम सर जी, आप प्रोग्राम बहुत सुपरहिट करते हैं, आए हैं क्या बात है, और आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है, आपकी हंसी अच्छी लगती है। हमका बनारस घुमाई दे ये वाला गाना बजा दीजिए, तो भाई ये फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं, और आप मिलेंगे तो बनारस के हम पूरा आपको हजरतगंज पूरा अमीनाबाद घुमाएंगे, क्योंकि ये लखनऊ में हमारे। तो चलिए, आपकी भागीदारी हमारे साथ यूँ ही बनी रहे, बस हम जरूर ये कामना करते हैं। अगला मेल पाल देते हैं, पूजन माफ कीजिएगा, पूजा पाल ने हमें ये मेल किया है, मेरी मैं मिर्ज़ापुर संदना सीतापुर से हूँ, लेकिन इस टाइम भिठौली लखनऊ से सुन रही हूँ। भिठौली हमें मालूम है, ऊपर से वो ओवरब्रिज बनाया वहाँ पे, मेरे साथ और भी लोग सुन रहे हैं, नाम ले लीजिएगा। बिल्कुल ले लेंगे, आपने लिखा है शशि किरण, और इस टाइम हम लोग ड्यूटी पर हैं। कौन सी ड्यूटी कर रही हैं आप? ड्यूटी पर तो हम भी हैं, आप भी तो गाने नहीं बजा रही वहाँ कहीं। अच्छा, हम बजाने वाला काम कर रहे हैं, ड्यूटी पे आप सुनने वाला, चलिए ये अच्छी बात है। अगर आप ना सुनते तो भी सुनता कौन, तो फिर अच्छी है आपकी ड्यूटी भी कि आप हमें सुन रहे हैं। अशोक कुमार जी, आपका मेल भी पढ़ देते हैं। अशोक राज ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग, कैसे हैं, और आपने अपना पता लिख दिया है, रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से प्रोग्राम सुन रहे हैं, सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए अच्छे लग रहे हैं तो हम एक सॉन्ग और बजा देते हैं, आप तक पहुँचा देते हैं, ये रेशम करुमाल लीजिए, नाक अकबर ही तो पूछ लीजिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी 9:19 हो चुका है हमारी स्टूडियो की घड़ी में, 52 सेकंड भी साथ में, और मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूँ। इस वक्त 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम, और आपके बहुत सारे मेल हैं जो हमारे साथ हमारा साथ निभा रहे हैं और हमारा संबल भी हैं, हमें इससे पता चलता रहता है कि आप लगातार सुन रहे हैं। और अभी हमें लालपुर से, सीतापुर में लालपुर है, और वहाँ से अयोध्या प्रसाद जी ने मेल किया और बताया कि ठंडक वाकई बहुत बढ़ गई और चदरा ओढ़े बैठे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है स्विमिंग पूल वूल में ना नहाइए, बल्कि थोड़ा सा कुछ हॉट हॉट पूल बना दिए। तो अरे हॉट हॉट पूल कोई नहीं, ये गाने बड़े हॉट हॉट हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए ना, तो फिर आपको गर्मी चढ़ जाएगी थोड़ी सी, मतलब मौसम ठीक हो जाएगा, है ना। ये एयर कंडीशन की तरह काम करते हैं, मतलब अगर गर्मी बहुत लगती है तो थोड़ा सा ठंडक पहुंचा देते हैं, और अगर आपको ठंडक लग रही है तो फिर थोड़ी सी आपके अंदर गर्मी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। और साथ में आपके हरिशंकर जी भी सुन रहे हैं, जब तक कह रहे मैं सुनता तब तक सुनते हैं, क्योंकि ये पड़ोसी हैं इनके, तो ये दोनों लोग मिल के जो है रेडियो सुन रहे हैं इस वक्त तो, और आनंद ले रहे हैं। और हमसे ये भी कह रहे हैं कि आप गाने कम बजाइए, बोलिए ज़्यादा, कह रहे हैं आप बोलते हैं तो हमको ज़्यादा मज़ा आता है। अब लीजिए फिर आपके मेल कैसे फिर पढ़ पाएंगे अगर हम बोलते रहेंगे तो, फिर है ना। तो गाना और सब दोनों चीज़ें चलने दीजिए। श्री गणेशाय नमो। पॉप टाइम, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारे तरफ से अनवारुल हसन जी को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। भाई वाह, इसकी बड़ी ज़रूरत है मेरे लिए, मुझे। और आप जो गाना सुना रहे हैं वो सुपर हिट है, भाई वाह, हम गाने ऐसे ही बनाते हैं। और देखिए एक फरमाइश इन्होंने लिख दी है, फरमाइश वाला प्रोग्राम देखिए, नहीं है गाना अच्छा है वैसे, ऐसे मौसम में चटनी और फुलौरी खाई जाती है, लेकिन अब तो खाने का टाइम आ रहा है भाई, और कुछ लोग तो खा भी चुके होंगे। चलिए वो गाना किसी और दिन, हम ऐसे समय पे आए ना जिस टाइम थोड़ा सा नाश्ते वाश्ते का टाइम हो, तो हम ये गाना ज़रूर बजाएंगे और इसी से शुरू करेंगे, और ऐसा ही सब खाने पीने वाले फुलौरी बिना चटनी और चना जोर गरम, और ये सारे गाने ढूंढ के ले आएंगे, ठीक है। और वो क्या है, वो चाय पे बुलाया है वाला गाना ही बजा देंगे, शायद मेरी शादी का ख्याल, तो सारे खाने पीने पे गाने बजेंगे उस दिन। सबसे पहले आप द्वारा जो भी प्रोग्राम प्रेजेंट किया जाता है तो वो अच्छा लगता है। ये ब्रिजलाल जी लिख रहे हैं, भाई मुझे कितनी खुशी हो रही सुन के, ये समझ हम भी रहे थे कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर अब आपने कह दिया ना तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई। आप आबशार में जो चार चांद लगा देते हैं, शायद ऐसे अन्य भैया, ये हम भाई नहीं कह सकते कोई और नहीं लगा पाता, हाँ हम जरा सा थोड़ी सी चमक ज़्यादा ले आते हैं, हमारे पास जो पॉलिश है ना वो बड़ी अच्छी कंपनी की है, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो आपने मुझे एक खिताब भी दे दिया है। अब देखिए, अब आप लोग जब इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं तो हमें लगता है हम अकेले बेकार बैठे हैं, कोई और हमारे साथ बैठा हो तो अभी हम उसको इशारा कर देते, देखो हमारी तारीफ़ आ गई, ज़रा पढ़ डालो पूरा। अब हम खुद अपने आप पढ़ें तो अच्छा नहीं लगेगा, आपने आरजे नंबर वन कर दिया, देखिए हमने पढ़ भी दिया। आपका रजनीगंधा की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ऑल लिसनर टू यू, और आपका फ़ैन, कूलर, एसी, सब कुछ। अरे वाह क्या बात है, और आपने एक बढ़िया सा कि इमोजी बनाया है जिसमें हेडफोन लगा हुआ और सुन रहे हैं। रजनीश पासवान जी ने ये मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, दिल से दिल के तार ऐसे ही बस जोड़ कर रखिएगा। मोहब्बत की बहुत कमी है संसार में धीरे धीरे, लेकिन इस कमी को कभी कमी मत रहने दीजिए, कम मत रहने दीजिएगा, इसको बढ़ाते रहिए, इससे सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और सब चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। किसान पथ तिवारीगंज स्प्रिंग गार्डन लखनऊ से आपने हमें ये मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अगला मेरे पास देते हैं, ये पीछे वाली आवाज़ जो कम कर देते हैं ना, ये वाली तो अच्छा ही लगता है, कम से कम लगता है कोई और बैठे है, तो इसे डर नहीं लगता। मैं बताता हूँ, मैं इसीलिए बजाता हूँ पीछे, ये बजता रहता है तो लगता है कि अकेले नहीं बैठे हैं, कोई और भी है पीछे, सारे साथ जिंदे और सब बैठे बजा रहे हैं, जरा तेज बजा भाई, ठीक जी। राजकमल यादव जी, आपका भी मेल आ चुका है। राजकमल यादव मैंने अभी अच्छा आपका नहीं पढ़ा था, ग्राम बरैया सूरतगंज बाराबंकी से आपने लिखा, प्यारे सर जी प्रणाम, कैसे हैं? अरे हम भी बहुत अच्छे और आप भी बहुत अच्छे, और अच्छे लग भी रहे आपकी शक्ल।

ये दिख रही है, वाह वाह क्या बाल है आपके, कंघियां की करके नहा धो के बिल्कुल लगता बैठी अभी आप। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है सर जी और आप बहुत अच्छे हैं। अब देखिए अब इसमें हम क्या कहें और इन्होंने लिखा कि मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ, मेरा लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपया, ये कह रहे हैं कि जो हम ड्रिंक करके या शराब पीकर वाहन चलाते हैं वो ना चलाएं, और ये कह रहे हैं कि अगर पीना भी है तो अपने घर पर थे तो बस वहीं फिर रहें फिर पीने के बाद, चलिए ये बात हम मान लेते हैं। और लिखते हैं कि मेरी वाइफ संगीता यादव और मेरी बेटी है शालिनी यादव, आपको नमस्ते बोले, नमस्कार, और कह रहे हैं कि सर आकर भुट्टे खा लीजिए। उफ़ चलिए आपने पता देखिए नहीं बताया है, सूरतगंज बाराबंकी में हम ढूंढते रहेंगे कि भुट्टे वाले राजकमल यादव जी कहाँ रहते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमको। भुट्टे तो बहुत पसंद हैं, काफ़ी पहले एक जगह हमने खाए थे उनके यहाँ पर खेत में थे, खेत से तोड़ के वैसे भुट्टे आज तक मिले नहीं हैं वैसे हमको, क्योंकि मार्केट में जो भुट्टे बिकते हैं बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता कि कब कितने बासी हो गए, ऐसे भुट्टे भी है, पाइनएप्पल भी है जिसे अनानास हम कहते हैं, और बहुत सारे लोग अनानास इसीलिए नहीं खाते, उन्हें लगता है इसको छीलें कैसे, तो जिसको जिसको दिक्कत हो अनानास छीलने में तो वो हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे आसानी से कैसे छीलता है, घर में हमारे हमें को दिया जाता है, तो ऐसे काम जो थोड़े मुश्किल वाले होते हैं वो हम ही करते हैं, है ना, तो फिर हम आपको ही बता देंगे कैसे छीलेगा। शिवराज जी आपका मेल भी पढ़ देता हूँ, मेरा नाम शिवराज है, बबूरिया जैनाबाद ज़िला बाराबंकी से है, और सर जी कोई भी गाना सुना दो, और आपने बीच में कुछ और भी लिखा है हम उसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी सी फरमाइश हो जा रही है, देखिए फरमाइश वाला प्रोग्राम नहीं है, मजबूर ना करिए हमको, हम गाना बजा दे रहे हैं अब, ठीक ये वाला बजा दें है? कोई झगड़ा गड़ा हो रहा कान बंद कर लीजिए, गाना जब शुरू हो तब सुनिएगा।

अरविंद दुबे जी ने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें लिख भेजा है ये मेल, और हेलो आपने लिखा है हमें, नमस्कार अनवारुल सर, वैसे तो मेरा मेल हमेशा शामिल हो जाता है, फिर भी विशेष आग्रह है कि मेल शामिल करें, और जो गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने लिखा है कि अपनेपन वाले सारे गाने हैं जो बवाल मचा रहे हैं, और हम सभी पूरे परिवार के साथ रेनबो के कार्यक्रम सुनते हैं। गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी भी मिलकर सुन रही हैं, और अरविंद दुबे जी ने हमें ये मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। ओहो, इतनी देर में ये सौदा जहाँ तक हो रहा था ना, तो ये इतने मेल हमारे पास आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए भाई। अब तो होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छू के गुजर गई, हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए। आए है क्या बात है, आपने तो रजनीगंधा वाला माहौल बना दिया। आनंद तिवारी जी ने हमें यह दारू कोया मल्लावा हरदोई से मेल किया, और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल कोयल जैसी, कोयल जैसी, वाह वाह वाह वाह, कौवे जैसी होनी चाहिए, देखिए वैसे हमारी आवाज़ तो। निर्मल गुप्ता जी, आपका भी मेल आ चुका है। प्रिय आर्जी अनवार हसन जी, नमस्कार, पॉप टाइम सुनते सुनते मन में एक सवाल आया, इसलिए सोचा कि आपको भेज दूं। लिखा है कि अगर आपके पास 15 आम हो और मैं 5 आम, अब पढ़ने लिखने से तो हम भाग के यहाँ आ जाते हैं, और आपने अब यहाँ भी हमको जो है पढ़ाई लिखाई वाला देखिए काम दे दिया, हम बताए तें कुछ नहीं, अब पढ़ दे रहे हैं पहले से, अब मुझे पता नहीं आगे क्या पूछ लें भाई, मुश्किल सवाल है। अगर तुम्हारे पास 15 आम हो और मैं 5 आम और मांग लूँ तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अच्छा, आप जवाब दे दिया है, तो छात्र ने कहा कि 15 आम, तो उनका वो कैसे, क्योंकि मैं आपको आम दूंगा ही नहीं। अच्छा, ये उस तरीके हैं, मतलब टीचर से डरते वरते नहीं है ये। और एक शेर लिखा है कि हंसी बांटने का हुनर सबके पास नहीं होता, दिल जीत लेने का असर सबके पास नहीं होता, ये तो मिल जाते हैं दुनिया में बहुत लोग, मगर पॉप टाइम जैसा सफ़र सबके पास नहीं होता। आपकी शानदार मेज़बानी यूं ही जारी रहे, आपका श्रोता निर्मल गुप्ता, ग्राम भेटिया, ज़िला लखीमपुर खीरी। चलिए, आपके जो मन के उद्गार हैं हम स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सुशील कुमार यादव जी ने मेल किया है हमें करनलगंज गोंडा से, और लिखते हैं कि भारत में जब भी बारिश होती है तो आलू प्याज की ये जिम्मेदारी होती है कि बेसन की चादर ओढ़ कर गर्म तेल में कूद जाएं। वाह वाह वाह, अच्छी बात है, और यही तो हम कह रहे थे कि अगर टाइम वाला होता ना थोड़ा सा नाश्ते वाला, तो फिर बन जाती चटनी अटनी फुलवारी के साथ। कौन पढ़ता है यूँ बेवजह शायरियों को, कोई इनमें अपना दर्द तो कोई मोहब्बत ढूंढता है। तो रहिएगा हमारे साथ, देखिए हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा दर्द भी देंगे और थोड़ी सी खूबसूरत खूबसूरत मोहब्बत ही बांटेंगे। गुलशा सिद्दीकी ने हमें मेल कर दिया है, आपका मेल आ चुका है। सलाम अलैकुम अनवारुल भाई, मैं गुलशा सिद्दीकी, संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मेरे यहाँ आंधी आई थी, बारिश हुई थी। भाई वाह, बड़ी देर में खबर दी आपने, ये मौसम बहुत सुहाना है। साथ में साहिबा जो है, साहिबिया अंसारी हैं, साजी अंसारी हैं, शमा परवीन है, महक अंसारी हैं, ममता गौतम, निशा अंसारी, रोशनी रावत, और हम सब लोग सुन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुन रहे हैं। सराहनीय प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रोग्राम एकदम खरा खरा। और ये भैया मोनू सेठ ने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं और आपने हमें मेल किया। अगला मेल एमन नवाब, आपका भी आ चुका है। हाय सर, साथ में कोई लेकर आया करिए, जिससे लिख रहे हैं कि साथ में कोई और लेकर आया करिए जिससे आपकी तारीफ वो पढ़ दे। हम आपकी तारीफ करें और वो पढ़ दे। अगर पीछे से कोई कहे हाय अरमानो सर कैसे हैं आप, तो मैं भूत हूं, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? नहीं, हम तो अब इतनी बातें ना करिए, ये शब्द ना लिखिए, कुछ शब्द कहते रात में ना कहो ना। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, रजनीगंधा का इंतज़ार है। चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई, डरिए मत, हम हैं जब तक रेडियो सेट पे, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। राशि, आपका भी मेल आ गया है, पॉप टाइप।

लिखा है, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर जी, आप कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दोस्त रूठ गई है हमसे, सर जी आप बोल दीजिए उनसे, हम माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी सॉरी, वो सुन रही हैं प्रोग्राम पक्का, सर जी बोल दीजिए। तो भाई राशि ने ये कह दिया है और ख़ुद सॉरी बोल दिया, और कोई अगर ऐसे कह दे, सिर्फ सॉरी नहीं बोला है, सॉरी तो लोग रस्मों की तरह से बोल देते, लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल कर दिया ना कि हम माफ़ी मांग रहे हैं उनसे, तो ये वाकई थोड़ा सा मन के उद्गार हैं आपके और मन से आपको लग रहा है। तो जो भी भाई राशि आपकी सहेली है और सुन रही हैं, तो अब सब मामला रफा दफा कर दीजिए और सब ठीक कर लीजिए, ठीक है? और ये सब होता रहता है दोस्ती में, इस सब को ज़रा सा दिल से मत लगाइए। और राजेश कुमार जी ने कहा कि सर आपको प्रणाम, अभी हम खाने में खीर बनाने जा रहे हैं। हमने पहले कई बार कहा कि देखिए इस तरह की बातें ना किया करिए, ख़ासतौर से इस टाइम, क्योंकि ये खाने वाला टाइम होता है, खाना हमको मिलता है बहुत देर में, रात में जब हम यहाँ आते हैं, तो है ना, तो थोड़ा सा आप समझिए। तो लिखा है कि आपको अगर पसंद आए तो आ जाइए मेरे गाँव कुर्सट हरदोई। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको सर अंडे छीलने अच्छे से आते होंगे। जी हाँ मुझे आते हैं, आप एक डंडा लीजिए और अंडे पे मारिए, छिल जाता है, है ना? तो अब किसी दिन करके भी दिखाएंगे आपको। आगे एक मेल और पढ़ देते हैं, उसके बाद चलिए। आपने अच्छी बात, हमने पूछा भी था, कहा भी था, बहुत से काम हमको आते, मौसम में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अरे ये कौन हो गया बेचैन इतना भाई मौसम से? अच्छा, मन तो बहुत ही बेचैन हो जाता है दिन भर जब इतना ताप रहता है, और रहने के बाद भी जो है सफलतापूर्वक कोई काम नहीं होता। वैसे तो मेरा पेमेंट ATM में फंस गया है, 5 दिन से अभी रिटर्न नहीं हुआ है, बैंक वाले को बता दीजिएगा।

टाइम प्रोग्राम लेकर जो हम सभी श्रोताओं का मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम है, तो क्यों ना इसी खुशी में हमारे कैसरगंज की मशहूर मिठाई काला खुरमा खाकर मुंह मीठा किया जाए। काला तो इतना नहीं होता है, थोड़ा सा हांडार ज़रूर होता है भाई, और हम ही ने आपको बताया कि हम जब वहाँ से निकलते हैं तो ये मिठाई हम ज़रूर वहाँ से लेते हैं, है ना। और पॉप टाइम प्रोग्राम में प्ले होने वाले धमाकेदार म्यूज़िक को एंजॉय किया जाए, कुछ मुँह मीठा करके आपने लिखा है, बिल्कुल। अगर खाना वाना खा चुके हैं थोड़ा सा मुँह मीठा कर लिए, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। बेहतरीन प्रोग्राम प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, कृष्णकांत जी ने कैसरगंज बहराई से हमें लिखा है। और गिटार और सितार और ये पपीरी पीरी जो पीपी पीपी बजती हैं सब बना के भेजी हैं, है ना। तो हमने आसान भाषा में बता दिया क्या क्या बनाया आपने, और मुझे लगता है अच्छा 45 हो गया है, मेल तो और भी आ गए हैं भाई, तो पढ़ दे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे लीजिए हमारा मेल ही नहीं पढ़ा था, हमारा रह गया था, तो भाई रह ना जाए आपका। गुलाब कश्यप जी आपका मेल एक पढ़ देते हैं, उसके बाद एक गाना हम प्ले करेंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग, मैं गुलाब कश्यप फ्रॉम रामपुर राय पोस्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हो, गाने लाजवाब हैं, आपकी प्रिय वाणी मन को मोह लेती है। आय हाय हाय क्या प्रिय वाणी है। चलिए बस देखिए ये आप लोगों को जो मोहब्बत है ना, आपका जो प्यार छलकता है, तो बस मन से कुछ भी कीजिए, मन से कीजिए, है ना, तो वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आप जब बात करते हैं आप अपनेपन से, यही चीज़ें रह जाती हैं। हर इंसान के पास एक लिमिटेड समय है, आपके पास भी हमारे पास भी, और कहाँ वक्त है किसी के पास कि कोई किसी को क्यों सुने। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेडियो बजाकर लगातार सुनते रहना तो एक कारण होना चाहिए, और हर आरजे को भी पता होना चाहिए कि कोई हमें क्यों सुने। अगर ये नहीं पता है तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस यही कोशिश करते हैं और आप ही लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं कि आप हमें क्यों सुन रहे हैं। गाना हम एक प्ले कर देते हैं फिर आते हैं। कुछ हो गया है, देखिए इनके यहाँ आज लाइट चली गई है, लगता है इनके यहाँ आंधी के बाद।

चलिए, अगर आज नींद उड़ी है तो फिर आप रजनीगंधा में हमारे साथ रहिएगा। जब 12 बजे जाएंगे तो फिर आपको इतना मजा आ जाएगा कि आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी, तो आप आराम से सो जाइएगा। 9:51 हो चुके हैं फिलहाल, और जल्दी से वो मेल जो आपके और बाद में हम तक पहुंचे हैं पढ़ देते हैं। एम के राज जी ने मेल किया है हमें जिला लखीमपुर खीरी से, गाँव भानपुर हरौवा से। आरजे जी को नमस्ते, और हर कार्यक्रम बेमिसाल है, सुनते सुनते हो गए कई साल हैं। और आपने लिखा है कि सुनते सुनते, अब देखिए हमें पढ़ना पड़ता है, जब आप कोई जोक या कोई ऐसी बात भेज देते हैं ना, तो एक बार मैं जब हूँ हम करते हैं ना, तो फिर ये मत समझिए ये हूँ करके हम पढ़ रहे होते हैं इसमें कि क्या लिखा है, वाकई पढ़ा जा सकता है क्या इसको। तो इनकी बेगम जो है वो कहती हैं रेडियो सुनते सुनते कि रेनबो की आवाज़ सुनकर तुम खाना भी भूल जाते हो। तो मैंने कहा भूलूं कैसे, मैम का कार्यक्रम और खाने का टाइम। ये मैम, हम अच्छा ये हर बार हमको मैम बताते हैं, तो चलिए कोई अच्छी बात है, हम डबल हैं। एमन, अच्छा आपका तो मैंने पढ़ दिया था सर, सॉरी सेकंड ईमेल के लिए, जिसके साथ नेकी करती हूँ वही मुझे दरिया, अच्छा इन्हीं को दरिया में डाल देता है। चलिए आप नहा लीजिएगा, मौसम वैसे भी थोड़ा सा बढ़िया है। सविता देवी जी ने लिखा है, सर जी आप बताइए, होते हम लोग मिलाते आपसे, सर जी आप बताइए। अच्छा ये मिलने के लिए कह रही हैं, अब आप इस टाइम क्या कहें, आप कभी दोपहर में मैं प्रोग्राम करूं या मॉर्निंग में करूं, तो फिर आप आइएगा, बिल्कुल मुलाकात की जाएगी। और तेज बहादुर यादव जी ने लिख दिया है कि हसन जी को मेरा प्रणाम, भला और कैसे हैं, सभी प्रोग्राम बहुत गजब चल रहे हैं, और आज तो सब सुनने वाले शायद शायर हो गए होंगे, गीत तो आपके जैसे मीठे मीठे लग रहे हैं, आपकी बोल ही मीठे हैं, और आप कह रहे हैं कि रजनीगंधा में भी आपकी सुरीली आवाज़ सुनने को आतुर हैं, सुबह के कार्यक्रम में आप कब आएंगे, लिए इन्होंने लिख दिया। अब जब भी हमें भेजा जाएगा देखिए हम आ जाएंगे। तेज बहादुर यादव, ममता यादव साथ में है, और रायबरेली से हमारे पास ग्राम व मऊ शर्की से आपने हमको ये मेल किया, और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू हंसारी जी ने मेल कर दिया है जाते जाते, और अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हसन सर, आज मेल थोड़ा देर से कर पा रहा हूँ, काम में व्यस्त था। चलिए कोई बात नहीं, और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा, और साथ में आपने जो ये बच्चा भेजा जो डांस कर रहा है, हम ये अकेले देख पा रहे हैं इसको, लेकिन ये बढ़िया है। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, अनवाल सर कैसे हैं, ज्योति दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम करके गई हैं। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ज्योति दीदी बड़ी अच्छा प्रोग्राम करती हैं, और हमें चिज्जी भी देके गई हैं। अनवाल सर जी, आपके लिए दो लाइन अर्ज करती हूँ, जिनकी

में बहुत मजा आ रहा है और मेरे साथ है रमेश पटेल दिलीप विश्वकर्मा और मैं आपका साथ पूरा 12 बजे तक दूंगा ट्रेन में है ये। चलिए मनोज विश्वकर्मा जी आपको पता चली गया है या नहीं पता चला है तो पता चल ही जाएगा, बस आपको ठीक लगती रहें चीज़ें। देखिए आकाश जी का मेल अभी भी आ गया जो जल्दी से पढ़ देते हैं, इन्होंने मलियाबाद से रहते इतनी पास से वो मेल इतनी देर में कर रहे हैं, एक पंजाबी सॉन्ग सुना दीजिए तो मज़ा आ जाए। अब देखिए एक गाना हम पंजाबी बजा चुके हैं वैसे है ना, और वैसे भी ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है और अब प्लीज़ आप इस सिलसिले को यहीं रोक दीजिए मेल करने का जो सिलसिला है आपका, क्योंकि अब वक्त बस ख़त्म हो रहा है हमारा। तो बस एक गाना आप तक पहुँचा जाता हूँ, मुझे भी गाना ये बहुत ज़्यादा पसंद है और सोनू निगम जी की आवाज़ में ये गाना है। तो फिलहाल अनवारुल को इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर में लौटते हैं, खूबसूरत सी खुशबू महकने वाली है आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।

पिपली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने आज गौतम बुद्ध नगर के एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार के उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया। इस मौके पर एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह सहित एनटीपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधिमंडल को एनटीपीसी की विकास यात्रा म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली पहलों के बारे में जानकारी दी गई। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्व होने पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष ओमकार द्विवेदी ने प्रेस क्लब में एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की महत्वपूर्ण मांग रखी, जिसे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे पत्रकारिता के विकास की दिशा में एक सार्थक कदम बताया। लखनऊ में चौक के लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारा में आज मेगा फ्री मेडिकल कैंप में 233 मरीजों को उपचार मिला। इसमें मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रही। शिविर में केजीएमयू के रेस्पिरेटरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत, लोहिया संस्थान के पेन मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर अनुराग सहित अन्य विधाओं के चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया। केंद्र के संरक्षक हरिजीवन रस्तोगी ने बताया कि मरीजों को उपचार के साथ निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लग

अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। रोशन हो रहे हैं आसमान के खुले दरीचे, ऐसा लगता है कि बहुत बेचैन है मोहब्बत के फरिश्ते। सबके सामने मन की बात कहने से अक्सर शर्मा जाता है चंदा, और राज खुलने के डर से घबराकर धरती पर उतर आती है मोहब्बत की मारी हुई एक और रात। ऐसे में रजनीगंधा 100.7 FM रेनबो और अनवारुल हसन का साथ, स्वागत है आपका इस सफर में। नमस्कार।

0: दिल में कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी बस जाती हैं, खुली आंखों से भी बस वही दिखाई पड़ती हैं और बंद आंखों में भी कोई ऐसे ही समा जाता है। मेरे दिल में भी तुम्हारी वही तस्वीर साल दर साल हर सांस के साथ हर लम्हे में तुम्हारे नाम की तरह धड़कती है। कभी सोचूं तो दिल कहता है ये मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत है। तुम्हारी हंसी में वो चहक है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन करते हैं। जब तुम करीब हो तो दुनिया का कोई भी गम महसूस नहीं होता। दुनिया की हर आवाज मध्यम हो जाती है, सुनाई भी नहीं पड़ती, सिर्फ तुम्हारी धड़कनें सुनाई पड़ती हैं। और तुमने वो पल दिए हैं जो किसी किस्से में मिलते हैं, कहानियों में सुनाई पड़ते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी ही मोहब्बत और तुम्हारी ही यादों का अक्स है जो अक्सर मेरी आवाज में दूसरों तक पहुंचता है। साल दर साल ये खूबसूरती यूं ही कायम रहे, ये मोहब्बत यूं ही कायम रहे और ये तस्वीर यूं ही बनी रहे, सजती रहे, संवरती रहे।
1: जिस दिन

प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं।

इसी को कहते हैं मोहब्बत की शिद्दत, कि आपको बार बार मिलने के बाद भी जब भी मुलाकात हो तो आपको लगे कि शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, और किसी से पहली बार मिलने के बाद भी लगे कि आपको तो एक लंबे वक्त से जानते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार मिले हैं हम। ऐसा होता है क्योंकि चाहत का जो सफर है इसमें जो रानाइयां हैं, जो मोहब्बत है, जो अंगड़ाइयां हैं प्यार की, वो इसे और भी आसान बना देती है। तुम हो तो हर रास्ता आसान है, और तुम नहीं तो हर रास्ता वीरान है, कुछ ऐसा लगता है। और इसीलिए मेरी जो दुनिया है वो तुम्हारी ही आंखों में बंद है, और तुम्हारा हर ख्वाब मेरे दिल की दुआ है। और इसीलिए तस्वीर तुम्हारी दिल में जब बसती है तो बस लगता है उसे कोई मिटा नहीं पाएगा, और दुआ यही है कि बस जहां भी रहो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, करीब रहो, मोहब्बत के धड़कने सुनाई देती रहे तुम्हें। 10:24 और 7 सेकंड हो चुके हैं। इश्क की खुशबू से गुलजार है रजनीगंधा का आंगन, और खूबसूरत रात के चेहरे से इस समा को नकाब हटा के और भी खूबसूरत बना रहा है जिया आपका दोस्त अनवारुल हसन।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

काम काज और भाग दौड़ से भरी जिंदगी में अक्सर हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिल पाता, और अचानक सपनों के देश से आता है कोई और फिर झंझना उठता है दिल का हर तार, जागता है आंखों में खुमार, और इसी को तो कहते हैं पहला प्यार। ये पहला प्यार जब खूबसूरत आंखों में इतने ख्वाब जमा हो जाते हैं कि उन आंखों में नींद के लिए जगह नहीं बचती, सिर्फ खूबसूरत गुलाब खूबसूरत खूबसूरत से महकते हुए, ऐसे ही महकते हुए वक्त में रजनीगंधा सुन रहे हैं आप अनवारुल हसन के साथ।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। जब तुम सामने होते हो तो दुनिया कुछ कम नजर आती है, या साफ साफ नजर नहीं आती, या दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे हर चीज रुक गई हो, ठहर गई हो, सांसें रोक ली हो मैंने अपनी। तुम्हारी हंसी में मेरे दिन की धूप है, नर्म गुलाबी और मेरे कल पर रोशनी डालने वाली। और इसीलिए तुम्हारे बिना ये सफर अधूरा सा लगता है, जैसे कोई शायरी बिना अल्फाज के रह गई हो। तुम्हारे साथ चलना, तुम्हारी बातें सुनना, बस वही लम्हा चाहिए। ना बहुत कुछ, ना कहीं शोर, और तुम्हारी आवाज और खामोशी। और इसीलिए तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, क्योंकि तुम हो तो सवेरा है, तुम हो तो बसेरा है, जहां हम अपने हर टूटे हुए ख्वाब को भी आराम दे सकते हैं। तुम वो सुकून हो जिसे लंबे वक्त तक ढूंढता रहा। हर

छोटी छोटी बात में तुम बड़ी खुशी बन जाते हो। वैसे ही जैसे चाय की वो गर्म प्याली, बारिश की कुछ बूंदें और उससे भी ज्यादा तुम्हारी आंखों की वो मासूम सी मुस्कुराहट। तो बस ऐसे ही साथ रहो, मौसम कोई भी हो, रातें कैसी भी हो, अंधेरी हो या चांदनी रातें, तुम हो तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। तो नहीं हो तो आ जाओ, इंतजार है तुम्हारा।

0: में।
1: लेकिन कभी कभी मोहब्बत में ऐसा मोड़ भी आता है कि जब मोहब्बत का सहारा भी मिट जाता है और मंजिल का किनारा भी। दर दर भटकते मुसाफिर का फिर क्या हाल होता है? समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। 10:55 हो चुके हैं, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनीगंधा सुन रहे हैं आप अनवारुल हसन के साथ। समाचारों के बाद एक बार फिर लौटेंगे हम।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात के 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। गर्मी के मौसम के पसंदीदा फल आम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने

किसानों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भारतीय आम अब देश भर के गांवों से निकलकर वैश्विक बाजारों में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी आंधी बारिश और तेज हवाओं के बीच अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आज कई जिलों में आंधी बारिश और तूफान की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय तथा संबंधित विभागों को लगातार निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाए जाने के निर्णय के बाद बिजनौर में ग्राम प्रधानों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसी क्रम में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन बिजनौर के तत्वाधान में विकास भवन सभागार में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद भर के ग्राम प्रधानों ने भाग लेकर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। सुल्तानपुर के सभी 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज 255वां आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। मेले का संचालन जनपद के 65 चिकित्सकों एवं 228 पैरा मेडिकल स्टाफ के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। मेले के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए 24 गोल्डन कार्ड एवं 19 आभा कार्ड भी बनाए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

खुद चले आऊं या बुला भेजो, खुद चले आऊं या बुला भेजो, रात अकेले बसर नहीं होती। कोई ख्वाब अचानक से टूट जाता है जब, तो शायद ऐसा ही महसूस होता है। अपने कमरे में इर्द गिर्द एक बार निगाह डालिए, अपने आसपास देखिए, जो बिखरी हुई सी कुछ चमकदार सी चीजें हैं, कहीं आपके टूटे हुए ख्वाबों के किरचे तो नहीं है? और संभल कर पांव रखिएगा, चुभ सकते हैं पैर में। हालांकि किसी की बात दिल में चुभ जाए तो दर्द ज्यादा होता है। वक्त हो रहा है 11:03:49। अपनों की जो दिए हुए दर्द हैं, उन्हीं को सहजने का वक्त है, और बखूबी इस काम को अंजाम दे रहा है रजनीगंधा में आज आपका दर्दमंद दोस्त, जी हाँ, अनवारुल हसन। और कौन,

कोई चला गया है कहीं जिसे पुकारते हैं बार बार, बुलाते हैं, क्योंकि मन से वो बातें जाती नहीं जो वक्त साथ गुजारे थे। लेकिन फिर भी कोई अकेला

कंपन ऐसा तारी हो जाता है कि बात बद्दी नजर नहीं आती और हर जाने वाला लौट कर आता भी तो नहीं। छीन के चैन मेरा तोड़ के पैमाना है दिल, छीन के चैन मेरा तोड़ के पैमाना है दिल, करके बर्बाद मेरे प्यार की रंगी महफिल, अब किसी और की महफिल को सजाने के लिए तूने जुल्फों को संवारा है जमाने के लिए।

कभी कभी ऐसे ही हालात पैदा होते हैं जब जोड़कर रखने की कोशिश करने वाला खुद बिखरने लगता है। बिखराव होता है इसीलिए कि आपको लगता है कि सारे रिश्तों को बचा लें टूटने से, बिखरने से, लेकिन हर किसी को यह पसंद नहीं होता। और फिर कुछ परेशानियां पैदा होती हैं। वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको। पनाह ढूंढ रही है शबे गिरफ्तार दिल, कोई बताओ मेरे घर का रास्ता उसको। गजल में तस्किरा उसका न कर नसीर की, अब भुला चुका वो तुझे, तू भी भूल जा उसको। लेकिन सिर्फ कह देने से चीजें खत्म नहीं होती, कोई भी याद कभी भी खत्म नहीं होती। सच तो ये

हाँ, थोड़ी देर के लिए उनसे बाहर जरूर निकला जा सकता है, और बेहतर भी यही होता है कि जब परेशानियां सताएं, कुछ यादें आपको बेकरार करें, तो उनसे बाहर निकलने की कोशिश की जाए। और दिल को सुकून तब तक नहीं मिलता जब तक हमारे मन में कुछ ऐसा रहता है, बदला ले लेने की एक ललक बनी रहती है। जब तक उसे नहीं छोड़ देते तब तक सुकून नहीं मिलता। तो किसी ने कुछ गलत भी किया है, वक्त उसको उसका जवाब दे देगा। इसका इंतजार अगर हम करें तो शायद थोड़ा सा सुकून पा सके। 11:26 हो चुके हैं, 24 सेकंड भी। रजनीगंधा के इस हिस्से में बेचैन दिलों के ऐसे ही सुकून को ढूंढने की कोशिश कर रहा है आपका दर्दमंद दोस्त, जी हां, अनवारुल हसन। और कौन?

0: मेरा है।
1: बुझा बुझा के वो शम्मे जला रहा होगा, बुझा बुझा के वो शम्मे जला रहा होगा, चले भी आओ कोई दिल जला रहा होगा। जिन उम्मीदों ने छोड़ दिया उन्हें अपने जुनून से जगा लीजिए। हर घुटन, हर दर्द, हर निशान मिट जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। जहां लोग उम्मीदों को खो देंगे, वहां एक मशाल की तरह उन उम्मीदों से भी रोशनी पैदा की जा सकती है। दिल जलाकर रोशनी कर लूंगा वो सिर्फ एहसास नहीं, उन रातों की स्याही है। जितनी बार दबाने की कोशिश की जाती है, उतनी बार अगर हम अपने अंदर की लौ को मजबूत कर लें तो शायद चीजें बेहतर भी हो जाए और हर परेशानी को हम अपने एक मशाल की तरह से जला लें।

दिल से भी रोशनी करें, और अगर सिर्फ परेशानियों को ही हम लेके बैठ जाएंगे तो शायद ये चीज़ें और भी मुश्किल हो जाएंगी, ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें हमारे खिलाफ भी हैं उन चीज़ों को भी अगर हम सब्र से काम लें तो वो हमारे मन मुआफिक भी हो सकती हैं, और अगर नहीं भी हो सकती हैं तो हम उन परेशानियों से बच सकते हैं जो आने वाली वक्त की आहटें कहती हैं। 11:36 हो चुके हैं, रोशनी कर लीजिए अंधेरों में भी अपने ख्यालों से और अपने खूबसूरत विचारों से।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

मर जाना था। गुर्बतें रेत की दीवार हैं, गिर सकती हैं, मुझको खुद अपने ही साए में ठहर जाना था। तू की वो तेज हवा जिसकी तमन्ना बेसूद, मैं की वो खाक जिसे खुद ही बिखर जाना था। और वक्त के साथ अगर चलना है तो बस इजाजत देने का वक्त है। अब 11:56 हो चुके हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। इजाजत दीजिए अनवारुल हसन को। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया है। आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे। जवाब में आरसीबी ने विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी की मदद से 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आए तूफान बारिश के बाद जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में तेज हवाओं, बारिश, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव या पशुधन की हानि हुई है, वहां प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी के निर्धारित राहत सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉ नितिन गौल द्वारा विकासखंड हसनपुर के ग्राम फूलपुर बिजलपुर में गौशाला का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने टीन शेड का एक पिलर क्षतिग्रस्त होने पर खंड विकास अधिकारी को उसे शीघ्रता से ठीक करने के निर्देश दिए।